ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 5 तारीख, तदनुसार 27 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58.40 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज के कार्यक्रमों का प्रसारण आरंभ होता है। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। इस समय प्रातः के 6 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
2: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: इस कार्यबल में आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा

0: करने के लिए यह पहल की गई है। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वॉशिंगटन जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 29 घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लौट के तौर पर हुई। लगभग 24 घंटे तक चले खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। उधर भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अब आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
2: वंदन बार।

Chintan. जिस दिन हमने सोच लिया कि हमने ज्ञान पा लिया है, हमारी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसके बाद अब ना कोई आश्चर्य होगा ना कोई आनंद होगा, इसलिए नया ज्ञान पाने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। ये कथन ओशो का था। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

अब से कुछ ही देर बाद ठीक 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस। 6:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम संगीत सरिता। 7 होगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और 7:30 पर आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

ठीक 9:30 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से कार्यक्रम आज का अखबार। 10:05 पर आज आप सुनेंगे लाइव फोन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। आज के इस प्रोग्राम का विषय है प्रकृति के संरक्षण में अनमोल है हम सबका योगदान।

फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गाने सुहाने आप सुनेंगे दिन में 11 बजे और 11:30 पर आज होगा कार्यक्रम शेरो नगमा। दोपहर में ठीक 12 बजे हिंदी में समाचारों के बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 1:15 पर और 1:30 पर होगा कार्यक्रम सुरीला सफर। दोपहर में 2 आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी और 2:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सखी सहेली कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर में 3 का। शाम 4 पिटारा के अंतर्गत आज सोमवार के दिन आप सुनेंगे कार्यक्रम सेहत नामा। शाम 5:05 पर सुनिएगा फिल्म संगीत और 5:30 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

शाम 6:35 पर आप सुनेंगे कुछ पंजाबी गीत और 7 बजे होगा कार्यक्रम जयमाला। 7:47 पर एक बार फिर आप सुन सकेंगे पंजाबी गीत। हवा महल कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 8 बजे का। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9 बजे और 9:30 पर होगा कार्यक्रम आज के फनकार। रात्रि 10 बजे सुनिएगा कार्यक्रम छाया गीत। रात 10:32 पर आप सुनेंगे पंजाबी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुर सांझ।

0: झरोखा में ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस।
1: रामचरितमानस का भाग 262। आज आप सुनेंगे अरण्यकांड।

श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड के अंतिम चरण में राम कथा का वो प्रसंग आता है जहां श्री राम और लक्ष्मण पंपा नामक सुंदर सरोवर के तीर पर पहुंचते हैं। गहरे सरोवर में रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं जिन पर मधुर स्वर में भौरे गुंजार कर रहे हैं। चक्रवाक, बगुलों तथा जल निवासी पक्षियों

का समूह देखते ही बनता है। इसी सरोवर के आसपास मुनियों के आश्रम हैं, जहां अनेक प्रकार के वृक्षों तथा लताओं ने अद्भुत सुषमा बिखेर रखी है। श्री राम तथा लक्ष्मण ने सरोवर के शीतल जल में स्नान किया और एक घने वृक्ष की छाया में दोनों भाई बैठ गए। वहां देवता तथा मुनियों ने उनकी स्तुति की। सीता हरण के कारण श्री राम के हृदय में विरह वेदना व्याप्त है, ऐसा सोचकर महर्षि नारद के मन में ये विचार उठा कि उन्हीं के शाप को स्वीकार करके श्री राम अनेक प्रकार के दुख उठा रहे हैं। इसी विचार में मग्न नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए प्रभु के सम्मुख उपस्थित हुए।

पूर्वक नमस्कार। आज मैं आपसे बंदिश के माध्यम से राग प्रस्तुति पर बात करने वाला हूँ। पुराने जमाने में संगीत शिक्षा के अंतर्गत राग गायन पर उतना बल नहीं दिया जाता था जितना कि ख्याल गायन अर्थात बंदिशी को गायन को दिया जाता था। बंदिश की तालीम के बाद या तालीम के सिलसिले में शिष्यवृंद को यह पूछने का साहस नहीं होता था कि बंदिश के राग का नाम क्या है। जिन जिन बंदिशों की तालीम गुरुजनों से मिलती थी उन्हें ठीक ठीक जो कि तो याद करना, वारंवार उनको दोहराते रहना, इसके सिवा दूसरा मार्ग उनके पास था ही नहीं। और ध्यान देने की बात यह है कि इसी मार्ग पर चलकर वे संगीत में ऊंचा नाम हासिल कर सके, संगीत के धनी हो सके। इन महान कलाकारों को एक एक राग में अनेक विलंबित ख्याल, छोटे ख्याल तथा विविध अंगों से अलंकृत विपुल सांगीतिक सामग्री हासिल हुई। इससे कोई राग भी हो उसकी अभिव्यक्ति बंदिशों के माध्यम से वे बखूबी किया करते थे। इन उस्तादों का तालीम देने का तरीका ऐसा था कि उनमें नए पुराने का भेदभाव नहीं रहता था। सभी प्रकार के शिष्यों को एक साथ तालीम दी जाती थी। इससे यह लाभ होता था कि जो नए सिर से सीखने वाले थे उन्हें भी किसी न किसी प्रकार पुराने शिष्यों की बराबरी में ठहरने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना पड़ता था। इस प्रयत्न के अंदर पुराने शिष्यों को सिखाए गए ख्यालों को उनसे सीखकर याद करने का सिलसिला रहता था। इस तरीके से सालों साल यह अध्ययन बराबर चलता रहता था। इस जमाने के शिष्यगणों में पारंपरिक आदर प्रेम रहता था जिससे ज्ञान का यह विनिमय बड़े प्रसन्न वातावरण में हुआ करता था। इस फलस्वरूप अपने पास ख्यालों का सर्वाधिक संग्रह रहे इस जीत से हर शिष्य हर प्रकार से कोशिश में लगा रहता था। उसकी विद्या का बड़प्पन उसको याद रहने वाले ख्यालों की संख्या में औंका जाता था। जिसके पास ख्यालों का विविध और विपुल संग्रह रहता था उसे बड़ा गवैया माना जाता था। राग गायन में सौंदर्य को विकसित करने में बंदिशों का आधार किस तरह सहायक हो सकता है ये हम देखेंगे। हम राग यमन से आरंभ करेंगे। इस राग की एक प्रसिद्ध बंदिश लिया जाए, एरी लाल मिले जे रूप सुंदर, ये बहुत ही प्रसिद्ध बंदिश थी और सब पुराने गायक इनको गा लेते थे। तो ये बंदिश मैं आपको गाकर बताता हूँ।

0: संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से हम शुरू कर रहे हैं श्रृंखला ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा। इसके प्रस्तुतकर्ता हैं जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित सी आर व्यास। तो आइए सुने ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा का पहला भाग।
1: संगीत सरिता सुनने वाले मेरे मित्रजनों का मेरा प्रेम।

ऐसे कई ख्याल राग यमन में है। पट तोरे कवन देव तोरा सुर ज्ञान ममद शाह हे चतुर बालमुआ, ये ख्याल है। और कुछ ऐसे भी ख्याल है कि जो तराने सदृश रहते हैं, विलंबित ख्याल रहते हैं। वैसे तो द्रुत ख्याल है, पर जिसको यमन कल्याण ऐसे कहते हैं, इसका एक बंदिश में सुनाता हूं।

0: ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा, इस श्रृंखला की पहली कड़ी अभी आपने सुनी। प्रस्तुतकर्ता थे जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित सी आर व्यास। इनके साथ हारमोनियम पर संगत की पुरुषोत्तम बालावलकर ने और तबले पर साथ दिया मुकुंद राजदेव ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपा।

0: एक ताजमहल, एक लता मंगेशकर, एक विविध भारती। विविध भारती,
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
2: कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
3: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं CID फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है गीता दत्त और मोहम्मद रफी ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल है OP नैयर का संगीत।
2: दिल है।

0: को वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए

0: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
1: ये शाम मस्ताने।
0: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
1: दिल इंसान का एक तरह।
0: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
2: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: सेलुलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम।

0: चार बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आजा तेरी याद आई।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं आलम आरा इस फिल्म का गीत, आवाज आशा भोसले और साथियों की। इस गीत के अल्फाज लिखे हैं शेवान रिजवी ने और संगीत है AR कुरैशी का।

शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया ये गीत अब सुनिए हसरत जयपुरी के बोल, आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम चोरी चोरी।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अब सुनिए तूफान और दिया इस फिल्म का गीत। भरत व्यास ने इस गीत को रचा है और इस गीत का संगीत बनाया है वसंत देसाई ने।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए
5: द्वारकाधीश फिल्म का गीत, सुनिए आशा भोसले और मन्ना डे की आवाजों में।

0: अभी आपने सुना पटरानी फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत। इसी के साथ आज का भूले बिसर गीत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम हम है राही प्यार के, कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। युगल गीतों के इस कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सीता और गीता। इस फिल्म के गीत के साथ जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, आनंद बख्शी की रचना है राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं रखवाला। इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

0: दूर जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
2: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
3: किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वरों में सुनिए तेरे मेरे सपने, इस फिल्म का गीत। नीरज ने इस गीत को रचा है, सचिन देव बर्मन का संगीत।

0: भला अपनों से कैसा शर्माना।
1: संसार फिल्म का ये गीत था आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की। साहिल लुधियानवी ने इसे लिखा था और संगीत चित्रगुप्त का। इसी के साथ आज का हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
3: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह, विकसित गांवों को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। ऋषिकांत सिंह को

0: पुरुषों की 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले में फास्ट ट्रैक अदालतों की गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
2: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि विकसित गांव ही विकसित भारत की मजबूत नींव है और इस लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की सीमावर्ती गांव पहले गांव की सोच के तहत इन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कई गांवों तक सड़क, बिजली और नल से जल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं।
2: हर कठिनाई के बावजूद सीमावर्ती गांवों के लोग देशभक्ति को पल प्रतिपल जीते हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो बॉर्डर के गांवों को अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। इन गांवों में

0: स्कूल, अस्पताल, ऐसी हर बेसिक सुविधाओं का अभाव था और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी सीमावर्ती गांवों के लोगों की देशभक्ति कभी भी कमजोर नहीं पड़ी।
1: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के दूरदर्शी स्वप्न दृष्टा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे।
0: भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से आज उड़ीसा में तेज वर्षा का पूर्वानुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।
2: उड़ीसा में आज मानसून का जोरदार असर दिख रहा है, क्योंकि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य भर में व्यापक बारिश हो रही है। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आज सुबह या दोपहर के समय पारादीप और सागर द्वीप के बीच उत्तरी उड़ीसा पश्चिम बंगाल तट को पार करने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़, केंदुझर और मयूरभंज जिले के लिए रेड वार्निंग जारी की है, जबकि कई उत्तरी, मध्य और तटीय जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की।
3: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए, और इस बार भी मेडल दे तो पाऊंगी। इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेटलिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मेरा थर्ड गोल है और मेरा फोर्थ मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का, इससे और ज्यादा खुशी क्या हो सकता है।
1: इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या अब 4 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश का खाता खोला था। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वेक्टर जनित रोग, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद मुकेश। परीक्षा में सुधार के लिए प्रधानमंत्री के टास्क फोर्स बनाने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पेपर लीक पर प्रहार के लिए टास्क फोर्स बनाई,

0: मोदी का ऐलान, नंदन नीलकणी होंगे अध्यक्ष। परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक पर जोर। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने नीलकणी को सौंपा परीक्षा में सुधार का जिम्मा। अमर उजाला ने इस्तीफे से आगे शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक प्रकरण से पैदा हुए युवाओं के आक्रोश के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक परिस्थितियों की अनिवार्य परिणति माना जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह कदम देश के समग्र परीक्षा तंत्र में सुधार की कोई वास्तविक गारंटी बन सकेगा। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से लिखा है, जेन जी का सबक, रील ने बदली राजनीति, अब आईटी नहीं इंस्टाग्राम सेल, युवा शक्ति ने बदली आंदोलन की तस्वीर, पार्टियां बदलेंगी रणनीति। दैनिक जागरण ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है, पाकिस्तान से अब बातचीत सिर्फ गुलाम जम्मू कश्मीर पर होगी। रक्षा मंत्री ने कहा, सेना को दुश्मन के घर में घुसकर मारने की खुली छूट, करगिल की विजय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जनसत्ता ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है, भारत वैश्विक रक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा, श्री मोदी ने करगिल युद्ध के वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नवभारत टाइम्स के अनुसार 13 दिन के बाद अमेरिका और ईरान ने रोके अपने हमले, सीज फायर पर बात को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज। हिंदुस्तान का शीर्षक है, पिनाक खरीदने के लिए देशों में होड़, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के बाद एक और हथियार प्लेटफॉर्म को भी कई देश खरीदने के इच्छुक। पत्र के अनुसार अगस्त में रफाल विमानों के सौदे पर जवाब सौंपेगा फ्रांस। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मीराबाई चानू ने ग्लासगो में जीता गोल्ड, लहराया तिरंगा, ऋषिकांत को रजत, भारतीय पुरुष 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले टीम भी फाइनल में। दैनिक भास्कर ने खास खबर में लिखा है, दिमाग जीत जल्द भूल जाता है, हार याद रखता है, आत्मविश्वास का खाता बनाइए, खुद पर शक होने लगे तो यह बताइएगा आप हारेंगे नहीं।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अब आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
3: आइए सुने त्रिवेणी।

श्रोताओं नमस्कार। हम यही सोचते हैं कि पिता बड़े कठोर होते हैं, माता बड़ी कोमल हृदय की होती हैं। सच मानिए तो पिता का हृदय बहुत कोमल होता है। ऊपर से वे कठोर दिखते हैं, लेकिन उनको अपने बच्चों की, परिवार की बड़ी चिंता होती है। वे अपने आंसू पी लेते हैं, दर्द छुपा लेते हैं, क्योंकि ये उनका अपना परिवार बनाया हुआ होता है। वे परिवार के वो स्तंभ होते हैं जिनके कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारियों का जिम्मा होता है। वे अपनी खुशी से पहले बच्चों की खुशी के बारे में सोचते हैं, उनके भविष्य को संवारने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। पिता का प्रेम अक्सर शब्दों में कम, कर्तव्यों में अधिक दिखाई देता है। पिता अपनी इच्छाओं का त्याग कर परिवार के लिए समर्पित रहते हैं, जिससे सब खुशी से रहें और होठों पर मुस्कुराहट बिखरती रहे।

दोस्तों, पिता अपने बच्चों की उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। उनकी सुरक्षा, अनुशासन, आत्मविश्वास और जीवन के मूल्यों का आधार बनते हैं। सही गलत का अंतर जीवन की हर समस्या का हल करने वाले होते हैं। उनकी छांव में बच्चे अपने को सुरक्षित पाते हैं। पिता का साथ हिम्मत हौसला देता है। उनके ना रहने पर उनकी कमी का एहसास दिल को झकझोर देता है। पिता विशाल वृक्ष की तरह होते हैं, जिनकी बाहों में शांति, सुकून और स्नेह का आभास होता है। कभी अपने पिता के पास दो घड़ी बैठकर उनके उस प्यार को महसूस कीजिए जिसे कभी उन्होंने आप पर लुटाया था। अपना बचपन अपने बेटी बेटी में जिया था। उनके कंधों पर बैठकर बाजार घूमा, मेला देखा, हर मौसम में वे ढाल बन जाया करते थे।

पिता और संतान का रिश्ता दुनिया के सबसे अनमोल रिश्तों में से एक है। ये रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारियों का नहीं बल्कि गहरे भावनात्मक जुड़ाव का भी होता है। पिता का प्रेम अक्सर शांत नदी की जलधारा की तरह होता है, जो बिना शोर किए अपने बच्चों के जीवन को सींचता रहता है। पिता अपने पुत्र संग दोस्त की तरह रिश्ता रखता है। पिता अपने बेटे में अपने सपनों, संघर्षों और अनुभवों की झलक देखते हैं। बेटी के साथ पिता का रिश्ता बेहद कोमल, स्नेहमय और भावनाओं से भरा होता है। बेटी के लिए पिता उसका पहला नायक, पहला रक्षक और आदर्श होता है। बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए, पिता की नजरों में वो नन्ही सी परी ही रहती है। पिता का प्रेम दोनों के लिए समान होता है।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बहाने खिली तनिया।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आपने ट्यून किया है विविध भारती। ये है देश की सुरीली धड़कन। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है। घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।
1: कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं फाइटर फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है विशाल ददलानी और शेखर राव जियानी ने। कुमार की रचना है विशाल, शेखर का संगीत।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज

चलिए अब आपको सुनवाते हैं अमाल मलिक और अरिजीत सिंह की आवाजों में ये गीत, जिसमें साथ दिया है तुलसी कुमार ने। कुमार की रचना है, अमाल मलिक का संगीत, फिल्म का नाम एयरलिफ्ट।

अब सुनिए बागी फिल्म का गीत। आवाजें हैं अरमान मलिक, श्रद्धा कपूर और अमाल मलिक की। संजीव चतुर्वेदी ने इस गीत को लिखा है अमाल मलिक की धुन।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं सुल्तान फिल्म का गीत। पैपॉन की आवाज में इरशाद कामिल के बोल, विशाल शेखर का संगीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली।

0: कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: विविध भारती से आप सुन रहे हैं इस वक्त चित्रलोक कार्यक्रम और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं बद्रीनाथ की दुल्हनिया। इस फिल्म का गीत आवाजें अखिल सचदेवा और मनशील गुजराल की, गीत संगीत अखिल सचदेवा का।

गुड न्यूज फिल्म का गीत सुनिए, रोचक और लौ अकासा की आवाजों में। गुरप्रीत सैनी, आरी लीफ और माइकल पलॉक ने इसे लिखा है। रोचक कोहली और लौ का संगीत।

ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है चित्रलोक कार्यक्रम में विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनाते हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा। इस फिल्म का गीत आवाजें सोन निगम और श्रेया घोषाल की, गरिमा वहाल और सिद्धार्थ सिंह ने इसे लिखा है, विकी प्रसाद का संगीत।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
2: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
1: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
2: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
3: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।

श्रोताओं, आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम उन्हें आदरपूर्वक स्मरण कर रहे हैं। विज्ञान, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में उनका अतुलनीय योगदान सदैव प्रेरणादायी रहेगा। उन्होंने युवाओं को बड़े सपने देखने, ज्ञान अर्जित करने और देश की प्रगति में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया। उनकी सादगी, कर्मनिष्ठा

और राष्ट्र प्रेम आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। और आइए चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में, साथ दिया है रोचक कोहली ने। कुमार ने इस गीत को लिखा है, संगीत रोचक कोहली का, फिल्म का नाम सोनू के टीटू की स्वीटी।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PMSuryaghar.gov.in पर। हर घर

और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत लुका छुपी इस फिल्म से, आवाज करण चेम्बी की और निर्माण ने इसे लिखा है, संगीत तनिष्क बागची और गोल्ड बॉय का।

0: जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
2: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
3: और आइए अब अगला गीत आपको सुनाते हैं वेद शर्मा की आवाज में मलंग फिल्म से। कुणाल वर्मा और हर्ष लिम्बाचिया का के बोल हैं और वेद शर्मा का संगीत।

0: कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर सुनिए।
4: और आइए अब आपको कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप। इस फिल्म का गीत अखिल सचदेव और मनशील गुजराल की आवाजें, गीत संगीत अखिल सचदेव का।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ले स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
0: इस समय आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी चंडीगढ़ FM 107.2 MHz पर और प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का अखबार।
2: आज का अखबार, आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
3: अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी।
4: सोना आज भी शुद्ध है उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है।
5: आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें, बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें BIS.gov.in पर।
0: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम आज का अखबार में। मैं हूं आज आपके साथ इस प्रोग्राम में आपकी दोस्त शैलजा। दोस्तों, कल शहर में मौसम ने कई रंग दिखाए, सुबह बादल छाए रहे, दोपहर में तेज धूप और उमस से परेशानी के बाद शाम होते होते मानसून ने दस्तक दी और शहर में झमाझम हुई बारिश ने काफी राहत पहुंचाई, लेकिन कुछ सेक्टर्स में तेज बारिश हुई और कुछ में बहुत कम। और मौसम विभाग के अनुसार आज आंशिक बादल छा सकते हैं, बीच बीच में बूंदाबांदी होने के आसार भी बन रहे हैं। आज का मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इनफैक्ट मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए अच्छी बारिश की संभावना जताई है, जबकि 28 और 29 जुलाई के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान जल भराव वाले क्षेत्रों से बचें, बिजली कड़कने के समय खुले स्थानों पर ना रहें और अनावश्यक यात्रा से भी परहेज करें। प्रशासन ने भी निचले इलाकों में जल निकासी व्यवस्था पर नजर रखने की तैयारी शुरू कर दी है। पंजाब के साथ साथ हरियाणा के भी कई जिलों में 28 से 30 जुलाई तक अति भारी वर्षा का अनुमान भी लगाया है मौसम विभाग ने।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज का अखबार। प्रोग्राम में अब बारी है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचारों की। आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकार आज लोकसभा में पेश करेगी लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण। परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर आज दी शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी।

जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग बहाल, श्रद्धालुओं का नया जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा संशोधन विधेयक पर चर्चा में भाग लेने की अपील की। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचारों में, फ्रांस में भीषण हुई जंगल की आग, 2 लाख से अधिक लोग घर छोड़ने को मजबूर।

पाकिस्तान में वर्षा संबंधी दुर्घटनाओं में 11 और लोगों की मौत की खबर, मृतकों की संख्या बढ़कर 97 हुई। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचारों के बाद प्रोग्राम में बारी है म्यूजिकल नंबर की।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

स्कॉटलैंड के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला 48 किलोग्राम भार वर्ग में मीराबाई चानू ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता।

और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रनों से हराकर श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 49 गेंदों में 81 रन बनाए।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: आज का अखबार प्रोग्राम में अब बारी है लोकल हेडलाइंस की। चंडीगढ़ में CTU यात्रियों की सुविधा के लिए बसों का डिजिटल रूट चार्ट तैयार करने जा रहा है। CTU बनाएगा डिजिटल रूट चार्ट, एक क्लिक पर मिलेगी जानकारी। डिजिटल चार्ट में CTU के सभी 67 रूट शामिल होंगे।

चंडीगढ़ में डिजिटल डाटा बताएगा किस सड़क की पहले होगी मरम्मत। चंडीगढ़ की सरकारी जमीनों, सड़कों और भूमिगत नेटवर्क का बनेगा डिजिटल ब्लूप्रिंट। चंडीगढ़ शहर में तय होगी निर्माण क्षेत्र की नई दिशा। आईबीसी की बैठक में 2026-27 का एक्शन प्लान जारी और देश भर में तकनीकी गतिविधियां होंगी तेज़।

चंडीगढ़ में पीयू में एलएलबी माइग्रेशन प्रवेश परीक्षा 105 अभ्यर्थी हुए शामिल। शहर में साइबर क्राइम की कई शिकायतें आईं सामने। रील्स देखते हुए डाउनलोड हुई एपीके फाइल्स के जरिए लाखों रुपए बैंक खातों से ठगे गए। पुलिस ने ऐसी कई शिकायतें दर्ज की और कहा कि साइबर सेल या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। हेडलाइंस के बाद बारी एक म्यूजिकल नंबर की।

0: दोस्तों, इसी दुआ के साथ कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें, अब आज के इस प्रोग्राम से अपनी दोस्त शैलजा को इजाजत दें। नमस्कार।
1: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक थे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
2: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
3: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4-5 घंटे का वक्त लगता है।
4: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट bis.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक, जागो।
0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
6: हमें भविष्य के लिए सोचना है, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
5: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपंडे का, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, IIT मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोड़ी, संरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
7: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
5: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति

0: और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में अहम भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस के अवसर पर सभी जवानों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि असाधारण साहस, अटूट समर्पण तथा उच्चतम मानकों के साथ सीआरपीएफ ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा की रक्षा में अमूल्य योगदान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीआरपीएफ अटूट साहस, असाधारण कर्तव्य निष्ठा और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। श्री शाह ने कहा कि अपने स्थापना के बाद से सीआरपीएफ ने भारत की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर लड़ाई जीतकर गौरव के अनगिनत मील के पत्थर स्थापित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ से अब प्रस्तुत है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।

0: सुप्रभात दोस्तों, स्वागत आपका लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में। आज मैं हूं आपके साथ इस प्रोग्राम में आपकी दोस्त शैलजा। दोस्तों, कल यानी 28 जुलाई को है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, यानी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। ये पहल प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाती है। दोस्तों, छोटे छोटे व्यक्तिगत प्रयास मिलकर प्राकृतिक संरक्षण पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसे में आज प्रोग्राम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है प्रकृति के संरक्षण में अनमोल है सबका योगदान, क्योंकि प्रकृति हमारे जीवन का आधार है और इसके संरक्षण में हम सभी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप आज इस प्रोग्राम में इस विषय पर, कह सकते हैं हमें फ़ोन कॉल के जरिए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड 0172। हेलो
1: हेलो। हाँ जी मैडम, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग जी, स्वागत आपका प्रोग्राम में।
1: मैडम, मैं संदीप बात कर रहा हूँ नंगल से।
0: जी संदीप जी, क्या कहना चाहेंगे आज के विषय पर?
1: मैडम देखिए, जो आज का विषय आपने बहुत अच्छा चूज किया है, इसमें मेरा यही कहना है कि हमें एनवायरनमेंट को बहुत महत्व देना चाहिए। जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग थे तो वो हमारे जो नदियों के नाम भगवान के नाम पे रखे गए हैं, उसका पर्पस यही था कि हम इनको पूरा रिस्पेक्ट दें, सो दैट जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो इसका पूरा, हम उसको कुछ अच्छी चीज आगे दे के जाएं।
0: जी।
1: और आप देखिए कि जैसे हमारे संविधान में भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है कि जो इन चीजों को नहीं करते हैं ठीक, तो उसके लिए भी हमारे संविधान में भी इसका प्रावधान है कि इसको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं।
0: जी।
1: और सेकंड मैडम ये है कि जैसे ये चीजें जो है, हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात आज हम कर

0: वन महोत्सव पे हम लोग पेड़ लगाते हैं
1: जी.
0: बट मेरे को लगता है कि अगर हम ये चीजें अपने स्टूडेंट्स को प्राइमरी एजुकेशन लेवल पे ये बातें उनके अंदर इनकल्केट करें ताकि वो आगे जाकर उनके पूरा ये नहीं कि 20 साल में हम उनको बताएं कि ये कर लो वो कर लो, अगर एक हम शुरुआत से ही ऐसा रखें तो मेरे को लगता है कि हम बहुत बड़ा योगदान दे पाएंगे. क्योंकि जो भारत की जनसंख्या है वो 130 करोड़ से ऊपर है, तो आप देखिए कि कितनी बड़ी हम लोगों के पास यूथ पावर है, और अगर हम इसका सही यूटिलाइजेशन करेंगे तो मेरे को लगता है कि हम एनवायरनमेंट के लिए ऊपर भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं.
1: जी जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि प्रकृति की रक्षा केवल हमारा कर्तव्य नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है.
0: इसीलिए मैडम इसको बोलते हैं कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें. देखिए इसके ऑपोजिट ऐसा भी नहीं है कि हम अपनी डेवलपमेंट भी रोक दें बिल्कुल, तो डेवलपमेंट उतनी होनी चाहिए जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को परमानेंट डैमेज ना हो.
1: बिल्कुल,
0: तो परमानेंट डैमेज को रोकने के लिए अगर हम छोटे छोटे प्रयास करें, हम मिलके कलेक्टिव कम्युनिटी एफर्ट्स करें, तो मेरे को लगता है कि विद द काइंड ऑफ पॉपुलेशन वी हैव तो हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं.
1: जी जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, धन्यवाद आपका प्रोग्राम में कॉल करने के लिए.
0: थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच.
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है. घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स. आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.

0: हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो,
0: हेलो,
1: नमस्कार जी, मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ पंचकुला से।
0: जी नमस्कार मिसेस बेदी, कैसे हैं आप?
1: आप कैसे हैं?
0: बढ़िया जी, बिल्कुल, और आपका स्वागत है
1: बात
0: प्रोग्राम में।
1: सुनिए,
0: जी
1: तब तक ही हम बढ़िया हैं जब तक ये बची खुची एनवायरनमेंट हमारे आसपास है।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने,
1: बिल्कुल खत्म होने को है हमारी पृथ्वी, और हमें जिम्मेवार है इसके।
0: जी
1: हम अपने बच्चों को, आगे की जनरेशन को भूख प्यास गरीबी और जो कहते अकाल वो दे के जाएंगे, परोस के जाएंगे थालियों में। इतने हम लोग निर्दयी हो गए हैं इस ये सोचते हैं कि लोग ऐसे ही बोलते हैं जी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, क्यों ना करें। जब तक हमारी अंतरात्मा नहीं जागेगी ना
0: जी,
1: हम इस पृथ्वी को नहीं बचा सकते।
0: बिल्कुल,
1: आप देखिए कि आगे नदियों को पूजते थे, अब नदियों को में कूड़ा डालते हैं।
0: जी
1: आप हमारे, हम पंचकुला से जब जाते हैं मनसा देवी की तरफ से, इतना बड़ा नाला था सारा कूड़े से भरा हुआ है, जहां देखिए वहां कूड़ा। अच्छा, जंगल तो काट के क्या करते हैं हम लोगों को, फैशन की थोड़ी ज्यादा होड़ है, बड़े से बड़े दरवाजे बनाएंगे और डबल डोर जरूर बनाएंगे, और दीवारों पे मैं किसी के घर गई, लकड़ी के बनाए हुए जैसे एनिमल्स वगैरह लगाए हुए। मैंने कहा कितने पेड़ों की जिंदगी ली है बता दो जरा।
0: जी
1: मेरे जैसों को लोग कहते हैं ये बेवकूफ हैं जो ऐसे बोलते हैं। पानी देखिए, गाड़ियां क्यों रोज धुलनी है?
0: जी
1: या तो खुद साफ करिए, नहीं तो पास खड़े होकर कहिए कि इसको बिना पानी के साफ करो। होती है साफ,
0: बिल्कुल, कम से कम
1: हमारे घर जो गाड़ी है शायद शोरूम की गाड़ी भी इतनी चमकती होगी, कभी आज तक वो धुली नहीं। बरसों हो गए गाड़ियां लेते हुए पर कभी आज तक गाड़ी नहीं धुली। मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ, हमारे घरों में कभी कोई बेड़े धोता ही नहीं था, झाड़ू दिया साफ हो गए। तो अब तो एक होड़ लग गई है, कौन कितना पानी ज्यादा वेस्ट करेगा। मन बहुत दुखी होता है, ये जो आपने टॉपिक करा, मेरा मन बहुत इस टाइम दुखी सा है कि कहाँ ढूंढे हम साफ हवा को, कोई पंछी नहीं मिलता, आवाज नहीं आती। मोबाइल के टावर्स ने सारे पंछी मार दिए हमारे
0: जी।
1: चाहे मेरी बातें सारे नेगेटिविटी में, पर ये असलियत है, ये असलियत को हम खुद ही संभाल सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, पर्यावरण का और प्रकृति का संरक्षण आज एक जन की जिम्मेवारी नहीं है, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।
1: देखिए एक पेड़ लगाने में कोई टाइम नहीं लगता
0: जी,
1: उसको कितने साल लग जाता है ऊपर खड़े होने में
0: जी।
1: हर एक मिनट में आरी चलाते हैं, पेड़ काट के माफिया ले जाते हैं। यहाँ सड़क बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए पेड़ काट दिए जाते हैं, फिर जानवर कहाँ जाए, वो हमारे घरों में घूमेंगे हमें खाएंगे
0: जी,
1: ना
0: जी।
1: थोड़ा आगे का सोचे ना अगर इंसान, तो ये जमीन हमारी पृथ्वी बच सकती है
0: जी।
1: तो, हाँ तो मैं, मेरा मैसेज शायद बहुत अलग सा होगा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग थोड़े जागे, उनकी अंतर आत्मा जागे कि अपने देश को, अपनी जगह को

0: हम नहीं बचा रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल, धन्यवाद मिसेस बेदी आपका प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका प्रोग्राम में।
2: शैलजा जी, मैं आपका नियमित श्रोता धीरज जबारी, गुजरात से।
1: जी धीरज जी, क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर आप?
2: ये जो विषय है बहुत सकारात्मक विषय है और हमारे जीवन में बहुत उसका उपयोगी यानी विषय है। जो पर्यावरण के बारे में सोचता है वो जीवन में आगे बढ़ता है, और देखा जाए पहल हमें से करनी पड़ेगी। कुछ से जब पहल करेंगे तो प्रकृति का बचाव हम कर सकते हैं दीदी
1: जी।
2: जैसे देखा जाए तो पेड़ है, पौधे है, जीव यानी पशु प्राणी यानी पक्षी, उनको बचाना हमारी भगवान ने हमको नैतिक जिम्मेदारी दी है, तो हमें उसे सुपेरे उसको पालन करना है दीदी। और कई ऐसी बातें हैं जो पर्यावरण को नुकसान करती है, उसको हमें धीमे धीमे करके हटानी पड़ेगी, और शुरुआत हम दूसरे को नहीं हमारे से शुरुआत करनी पड़ेगी।
1: बिल्कुल ठीक।
2: तो आपका जो ये कार्यक्रम है हमें बेहद पसंद होता है, और जो भी विषय रहते हैं बहुत उपयोगी विषय होते हैं।
1: जी जी जी, ये विषय इसीलिए रखे जाते हैं कि हम आप सभी को, लोगों को, सुनने वालों को, सभी को अलग अलग विषयों पर जागरूक करा सकें, है ना?
2: इसका मैं ज्यादा रुचि करूँ। अभी मैं परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट बस में बैठ के आपका कार्यक्रम सुनता था, और जब नहीं लगता है तो मन यानी कैब विचलित हो जाता है, क्योंकि ये जो विषय होता है वो बहुत उपयोगी विषय होता है, और उसमें हम जितना भी बोल सके दूसरों को, अगर उसको यानी अपने जीवन में उतारे तो हमारा बोलना सार्थक रहता है दीदी।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने,
2: धन्यवाद दीदी।
1: जी धन्यवाद प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। दोस्तों, छोटे छोटे प्रयास जैसे कपड़े का थैला इस्तेमाल करना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना और कचरे का सही निपटान करना बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकते हैं।

0: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है। घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ले स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। हेलो
2: हेलो
1: जी, स्वागत आपका प्रोग्राम में
2: मैम। गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग।
2: नमस्कार, मैं सूरज बात कर रहा हूँ, तहसील ठियोग डिस्ट्रिक्ट शिमला HP से।
1: जी सूरज जी, क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर?
2: मैं थोड़ा लेट ऑन एयर आया हूँ, तो टॉपिक पता नहीं है।
1: जी, आपको टॉपिक बता देते हैं, आज विषय है प्रकृति के संरक्षण में अनमोल है हम सबका योगदान।
2: देखो मैं तो पता क्या बोलते, मेरा तो ये कहना है, जैसे क्या बोलते हैं लोग अक्सर क्या बोलते हैं, कचरा फेंक देते हैं सड़क पर, बस से, कभी कहीं से। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं बाहर निकला था, मैं बस से कहीं जा रहा था ना, बस रुकी हुई थी साइड में, तो किसी पैसेंजर ने क्या बोलते हैं आइसक्रीम का पैकेट पता नहीं क्या था, उस खिड़की से बाहर सड़क में फेंक दिया। मैंने क्या किया, उसको उठा के अपने बैग में डाल दिया।
1: जी,
2: तो मैम लोगों को थोड़ी बहुत सिविक सेंस तो होनी चाहिए कि भाई अगर मान लो आपके पास डस्टबिन नहीं है ना, तो जो भी आप कुछ भी खा रहे हैं या क्या बोलते हैं अपना, समझ रहे हो ना आप।

0: जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
1: बैग में रख दो और फिर जहाँ बस उतरने के बाद जहाँ भी आपको डस्टबिन,
0: जी बिल्कुल, आप बैग के एक स्पेयर पॉकेट में रख सकते हैं। इनफैक्ट बस में भी एक जगह आपके आगे जगह बनी होती है जहाँ आप रख सकते हैं गार्बेज एक साइड पर लॉक इन करके वहाँ पे, और वहाँ से बाद में उठा लिया जाता है।
1: बस में भी डस्टबिन लगने लग गए हैं, लोग समझते क्यों नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बाहर इस तरह से कचरा फेंकना, और जब बड़े लोग इस तरह से करेंगे तो सामने जो बच्चे हैं साथ में उनके या युवा हैं वो क्या देखेंगे,
1: है ना। और मैम देखो ना मैम, जिस तरह से लोग ये प्लास्टिक की बोतलें और ये कागज वगैरह सड़क पर फेंक रहे हैं ना, ये मैम इसका क्या यूज है, खुद बोलो आप।
0: जी बिल्कुल,
1: क्योंकि मैम अब ये कहीं नदी में जा रहा है, गड्ढे में जा रहा है, नाली में जा रहा है, फिर ये नाली अब लॉक करता है और फिर आपको बताइए फिर क्या होता है।
0: जी बिल्कुल, इसी इन्हीं छोटी छोटी गलत कामों की वजह से ही प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है
1: ना मैम।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने।
1: जी
0: धन्यवाद सूरज जी प्रोग्राम में बात करने के लिए। दोस्तों, युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि युवा ही कल के भविष्य का निर्माण करेंगे। जब युवा प्रकृति की रक्षा का संकल्प लेते हैं तब हरियाली बढ़ती है, प्रदूषण

0: तरह से करेंगे तो सामने जो बच्चे हैं साथ में उनके या युवा हैं वो क्या देखेंगे,
1: है ना? बात है मैम, और मैम देखो ना मैम, जिस तरह से लोग ये प्लास्टिक की बोतलें और ये कागज वगैरह सड़क पर फेंक रहे हैं ना, ये मैम इसका क्या यूज है, खुद बोलो आप।
0: जी बिल्कुल,
1: क्योंकि मैम अब ये कहीं नदी में जा रहा है, गड्ढे में जा रहा है, नाली में जा रहा है, फिर ये नाली अब लॉक करता है और फिर आपको बताइए फिर क्या होता है।
0: जी बिल्कुल, इसी इसी इन्हीं छोटी छोटी गलत कामों की वजह से ही प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है,
1: है ना मैम?
0: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने।
1: जी
0: धन्यवाद सूरज जी प्रोग्राम में बात करने के लिए। दोस्तों युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि युवा ही कल के भविष्य का निर्माण करेंगे। जब युवा प्रकृति की रक्षा का संकल्प लेते हैं तब हरियाली बढ़ती है, प्रदूषण घटता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य का निर्माण होता है।

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, स्वागत आपका प्रोग्राम में।
1: जी, मैं रामवीर गांव खिदमत जिला कुरुक्षेत्र से बोल रहा जी।
0: जी, क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर?
1: देखिए दीदी, जो आज का विषय है वो प्रकृति को बचाने का, संरक्षण करने का
0: जी
1: हमारा क्या योगदान हो सकता है। तो हम मानव जाति ही इस पृथ्वी पर एक बुद्धिमान जीव है जो हर चीज के बारे में सोच सकते हैं दीदी
0: जी, बिल्कुल।
1: तो ऐसे में हमारा कर्तव्य बन जाता है कि क्योंकि हमारी जाति है, जो मानव जाति है, वही विकसित हुई है इस धरती पर
0: जी,
1: और हमें चाहिए कि हम इसकी संरक्षण करें, इसे बचाएं, प्रदूषण से हर तरह से बचाएं
0: जी।
1: तो और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए जो विकृत कर रहे हैं, हम प्रकृति को बिगाड़ रहे हैं, तो हमारा विकास और विज्ञान दोनों जिम्मेदार हैं दीदी। क्योंकि खेती बाड़ी में पहले ऐसे केमिकल वगैरह, दवाइयां वगैरह यूज नहीं की जाती थी
0: जी जी।
1: लेकिन आज विज्ञान के कारण या विकास के कारण हम ऐसी दवाइयां इस्तेमाल करते हैं जो मानव जाति के लिए जहर तो है ही, तो दूसरे जीव जंतु को जैसे पक्षी वगैरह को भी खत्म कर रही है
0: जी, जी।
1: ये हमारे लिए बहुत एक खतरनाक विषय है दीदी
0: जी।
1: हम इन दवाइयों को यूज तो करते हैं लेकिन कुछ वैज्ञानिक या कोई अपना केमिकल वगैरह जो बना रहे हैं वो तो अपने लाभ के लिए बेच रहे हैं
0: जी।
1: लेकिन इसका असर हर एक इंसान पर पड़ रहा है
0: जी,
1: तो
0: बिल्कुल ठीक।
1: उन्होंने तो कोई कसूर नहीं किया और धरती ने कोई कसूर नहीं किया क्योंकि हम इस पर इस तरह के केमिकल डाल रहे हैं जिससे इसकी जो प्राकृतिक गुण है वो ही खत्म हो रहे हैं
0: जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आपने जी, बिल्कुल। ये बिल्कुल सोचने का विषय है कि हम किस तरह से प्रकृति को बचा सकते हैं और किस तरह से यहाँ पर जो उपजाऊ धरती है उसे बचाया जा सकता है।
1: अजी दीदी, जो वैज्ञानिक है इनको भी सोचना चाहिए कि कम से कम जहाँ तक हो सके तो ये जो नुकसानदायक केमिकल है इनको
0: इनका इस्तेमाल ना किया जाए जी,
1: धरती का नुकसान ना हो, जीव जंतु का कोई नुकसान ना हो दीदी।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने।
1: सोचनी चाहिए क्योंकि विकास ही सब कुछ नहीं है, तो विकास का दूसरा नाम विनाश भी हो रहा है
0: जी।
1: हमें एक तरफ तो कह रहे हैं कि विकास, विकास के साथ साथ विनाश भी तो दीदी हो गया, जैसे जंगल कटने से जंगली पशु, चिड़िया, जानवर, जो भी पंछी हैं जो हमारे पृथ्वी पर जहरीला पानी पीते हैं उनके जीव जंतु खत्म हो गए हैं दीदी। चिड़िया दिखाई नहीं देती अब
0: जी, बिल्कुल
1: ठीक। सुबह 4 बजे चिड़िया की चहचहाट हमको एक आनंद देती थी वो आज नहीं है दीदी
0: जी, जी।
1: तो ये कारण सिर्फ वैज्ञानिक कारण ही है इनका जी।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने जी, धन्यवाद आपका प्रोग्राम में कॉल करने के लिए।
1: हाँ धन्यवाद
0: जी।
2: ये नदियाँ जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ से आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़, और आज जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, वो विषय है प्रकृति के संरक्षण में अनमोल है हम सबका योगदान। हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो मैडम, नमस्कार।
1: जी नमस्कार, स्वागत आपका प्रोग्राम में।
2: मैडम मैं प्रदीप बोल रहा हूँ संकट मोचन शिमला से।
1: जी प्रदीप जी, क्या कहना चाहेंगे आज के विषय पर आप?
2: मैडम मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि अगर हमें अपनी पृथ्वी को बचा के रखना है तो हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल,
2: और ये हम सब की नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है कि इसको किस तरह से हम बचाएं।
1: जी,
2: कूड़ा करकट जो है हम नदी नालों में ना फेंक कर उसे उचित स्थान पर रखें जहां पर उसकी जगह बनी हुई है।
1: जी जी,
2: और ये जो है हम पेड़ ये डेवलपमेंट के लिए पेड़ों की कटिंग कर रहे हैं ना, उससे भी बहुत फर्क पड़ गया मैडम।
1: जी बिल्कुल,
2: तो ये ही मेरा कहना है कि आने वाली पीढ़ी को जो है इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है।
1: जी,
2: नहीं तो वो इन सब से जो है वंचित हो जाएगी, जो आज हम इतना आनंद ले रहे हैं प्रकृति का ना।
1: जी,
2: तो ये हमें आने वाली पीढ़ी को ये बताना चाहिए इसके बारे में।
1: जी बिल्कुल, उन्हें बताना चाहिए कि किस तरह से पर्यावरण का संरक्षण करके वो आने वाली पीढ़ियों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, किस तरह से प्लास्टिक को ना यूज़ करके, बिजली को बचा के और पानी का संरक्षण करके किस तरह, बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं ये जानना उनके लिए कि किस तरह से इन सब चीज़ों को बचा कर आगे के आने वाली पीढ़ी के लिए ज़रूरी है इसे बचाना, है ना?
2: जी मैम, बहुत ज़रूरी है ये तो मेरा।
1: जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका प्रोग्राम में कॉल करने के लिए।
2: थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।
1: हेलो चंडीगढ़।
3: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
1: जी गुड मॉर्निंग, स्वागत आपका प्रोग्राम में।
3: धन्यवाद मैडम जी, मैं हिमाचल प्रदेश के सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी।
1: जी नागेंद्र सिंह जी, क्या कहेंगे आज के बारे में आप, आज के विषय के बारे में?
3: बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मैडम जी, और हिमाचल प्रदेश के लिए तो मैं ये कहूंगा कि जल जंगल जमीन जिस तरह से हमारे यहाँ पर भी बर्बाद होना शुरू हो गई है, और इसको बचाने के लिए हम सबको मिलकर के जो है वो, क्योंकि मैडम जी ये जो प्राणी जगत में जो बौद्धिक संपदा के मालिक हैं वो सिर्फ हम इंसान हैं, और हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति, वन संपदा, धरती माता को, इनको सबको बचा करके हमें रखना पड़ेगा जी।
1: जी,
3: क्योंकि हम देख रहे हैं मैडम जी ये जो 100-150 साल के विकास में जो हमने पृथ्वी का, पर्यावरण का, जलवायु का जो नुकसान किया है, वो हमारे जिनको अनपढ़ बुजुर्ग कहते थे उन्होंने संजो के रखा था हजारों साल से।
1: जी जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप,
3: और इसका तो हमारी एक मौलिक कर्तव्य भी है, और धरती पर जीवन के लिए जो है जलवायु का संरक्षण, अभी वक्त मैडम मैं समझता हूँ कि बहुत कम बचा है, अगर निस्वार्थ भाव से पर्यावरण की

0: रक्षा करने के लिए और अगली पीढ़ियों को शुद्ध जलवायु देने के लिए हम आगे नहीं आए तो हमारे विकास का, हमारे उज्जवल भविष्य का कोई मतलब नहीं रहता जी।
1: जी बिल्कुल।
0: और इसके लिए मैडम जी हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और ये जो चाहे वो फैक्ट्रियां हैं, चाहे जहरीली हवा जो है वो गाड़ियों से निकलती है या दूषित जल पानी को करने की जो बात है, ये सारी की सारी बातें जो है वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है अनापत्ति जो सर्टिफिकेट देते हैं उसमें से पूरी तरह से भ्रष्टाचार को अलग किया जाए। एनओसी इस हिसाब से उद्योगपतियों को, किराए कारखानेदारों को दिए जाए और जो हमारे यहाँ पर जो टूरिस्टों की भीड़ आ रही है उनको, उनसे हम ग्रीन टैक्स तो जरूर लेते हैं जी,
1: जी जी,
0: लेकिन लेकिन उसके बदले में हम क्या मतलब कुल्लू मनाली और ये जो शिमला जो हमारे शहर हैं जो टूरिस्ट प्लेसेस बाकी भी गांव गांव में हैं वहां पर हम उसके बदले में क्या कर रहे हैं? हम धरती माता से अमृत रस तो ले रहे हैं लेकिन बदले में उसको जहर दे रहे हैं जी,
1: जी बिल्कुल।
0: और ये जो जैव विविधता है धरती माता जो है वो अपनी रक्षा खुद करना जानती है, छोटे छोटे घावों को खुद भर लेती है लेकिन जो बड़े बड़े घाव जो होते हैं उनको भरने में अक्षम है। और ये जो भूकंप, बादल फटना या भूस्खलन या जो आपदा काल जो है हम खुद न्योता दे रहे हैं, जो बरसात का जो बदलता जो ऋतु चक्र है, जो जैव विविधता में जो पेड़ पौधे और जीव जंतु हमारे बिल्कुल लुप्त प्राय से हो गए हैं, हिमाचल प्रदेश में तो जड़ी बूटियां और जो हम बचपन में देखते थे वो आज दिखाई नहीं देती और बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां और हमारे जानवर ऐसे हैं जिनको कि मतलब ये संरक्षित करने के लिए हमें खर्चा करना पड़ रहा है। मैडम जी ये वैज्ञानिक जो अंधाधुंध जो कटान है, जो अवैध दोहन है, जो शिकार है, जो जंगल में आग लगती है उसको बुझाने के लिए हम ग्रामीण पहले की तरह जो जागरूक नहीं रहे हैं और बहुत सारी जो हमारी जो जानवर हैं जो होते थे जो जैव विविधता को संजो के रखते थे उनका लगभग हम उनको लुप्तप्राय कर चुके हैं
1: जी जी।
0: तो इन सभी बातों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए और इन सब का संरक्षण करने के लिए सरकार के साथ मिलकर के सरकार को भी पहले जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा ताकि ये जो सूक्ष्म जो जीवाणु हैं जैव विविधता के, जो पेड़ पौधे हैं, जो जंगली जानवर हैं, जो पालतू जीव हैं, इन सबको हमें अच्छी तरह से जो है वो संजो कर रखना पड़ेगा क्योंकि ये वादियां, ये घाटियां, ये पहाड़ियां जिनको देखने के लिए लोग जो है वो दूर दूर से आते हैं, देश विदेश से आते हैं, इनका संरक्षण जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ये पर्यटन जो है, तो ये अगली पीढ़ियों के लिए जो वन संपदा है जो इसको सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, तो ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी बनती है और हमें सबको इसमें आगे आना चाहिए।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये कोई एक दिन का अभियान नहीं है बल्कि जीवन भर निभाए जाने वाली जिम्मेदारी है जिसे हमें जिम्मेदारी समझकर ही निभाना होगा।
0: देख तमाशा लकड़ी का।
1: जी जी जी जी बिल्कुल। धन्यवाद आपका प्रोग्राम में कॉल करने के लिए।
0: धन्यवाद। नमस्कार
1: जी। नमस्कार।

0: हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो चंडीगढ़, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोग्राम में।
1: मैं राकेश बोल रहा हूँ कोटखाई से।
0: जी राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे आज के विषय पर?
1: आज के विषय पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे जो प्रकृति को संरक्षण करना हमारा फर्ज भी है, हमें उस पर कदम उठाना भी चाहिए। जैसे कि प्रकृति को संरक्षण करना ये है कि हमें पेड़ भी लगाना है, जलवायु का भी ध्यान रखना है, और हमें इस चीज पे थोड़ा योगदान करना। सिर्फ पेड़ लगाना इस काफी नहीं है, पेड़ की जो है देख रेख भी करनी है जब तक वो बड़ा नहीं होता। कि अगर वो बड़ा हो जाएगा तब हमारी प्रकृति जो है अच्छी रहेगी। और सबसे बड़ी बात है प्रकृति का नुकसान वायु प्रदूषण से होता, तो वायु प्रदूषण हमें करना नहीं चाहिए।
0: जी बिल्कुल।
1: और जैसे कि हम हिमाचल में, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले की जो कोटखाई क्षेत्र है, वहाँ जो है प्रकृति का कहीं ना कहीं हम नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं, पहाड़ों को काट रहे हैं और पेड़ों को भी काट रहे हैं, और तब जाके देखो हिमाचल पहले ऐसा था, पहले कभी आपदा ये नहीं होता, लेकिन आजकल जो है कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही से देखो आप पहाड़ी क्षेत्र में जो है भूस्खलन लैंडस्लाइड ये आ रही, तो क्योंकि हम प्रकृति का जो है नुकसान कर रहे हैं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि पेड़ों को काटा जा रहा है, पहाड़ों को सरकाकर सड़कें बनाई जा रही हैं, है ना? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अगर पेड़ लगाना, जल संरक्षण, प्लास्टिक के कम उपयोग और स्वच्छता अभियान और ऊर्जा की बचत जैसे कार्यों को अगर हम अपनी जीवन शैली का एक हिस्सा बना लें तो पर्यावरण संरक्षण का एक बड़ा अभियान जो है वो जन आंदोलन बन सकता है।
1: जन आंदोलन बन सकता है।
0: जी जी जी, जी, जी। बिल्कुल, धन्यवाद आपका प्रोग्राम में कॉल करने के लिए राकेश जी।
1: जी जी धन्यवाद
0: जी।

0: दोस्तों इसी के साथ आज के लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ से अब अपनी दोस्त शैलजा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: हेलो
2: हेलो,
1: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो चंडीगढ़।

0: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है। घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ले स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गाने सुहाने। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने। फिल्म है मिलन।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना ये गाना चुपके चुपके फिल्म से। संगीत था एसडी बर्मन का और इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने। आइए सुनते हैं ये अगला गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म लोफर से।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: लता मंगेशकर, ईला अरुण और साथियों की आवाजों में आइए सुनते हैं ये अगला गाना लम्हे फिल्म से।

0: गाने में संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। यही थी हमारे आज के प्रोग्राम गाने सुहाने की आखिरी पेशकश। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम से अपनी दोस्त शैलजा को अब इजाजत दीजिए। नमस्कार। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ले स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानु मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानु स्मार्ट एडवाइस, ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।
0: इस समय आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी चंडीगढ़ FM 107.2 MHz पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम शेरो नगमा।

दोस्तों, प्रोग्राम शेर ओ नगमा में आज आपके साथ है आपका साथी अनिल पुंज। कबूल करें मेरा नमस्कार। देखिए, मौसम है बारिशों का, तो जाहिर सी बात है कि उसका असर हम सब पर तारी है। बारिश का जिक्र ना हो, इस मौसम की बात ना हो, इस मौसम से जुड़ी बातें ना हो, कुछ भीगी भीगी यादें ताज़ा ना हो, ये कैसे हो सकता है ना? बारिशों का यह मौसम है, वो अलग बात है कि बादल आते हैं, घिरते हैं, दिल करता है तो बरसते हैं, वरना तरसा जाते हैं। बादल भी दीवाने हुए जाते हैं, और यही दीवानगी तो धीरे धीरे सावन ले आती है। वो कहते हैं कि दीवाने का कोई ठिकाना नहीं होता। अपनी धुन में मस्त जहां देखा बरसा, फिर चल दिया। बरसात का बादल तो दीवाना है, क्या जाने किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है।

अब बारिशों के मौसम में जब पानी बरसता है तो जहां ये कुदरत की हर शय की प्यास बुझाता है, वहीं किसी के प्यार की मीठी यादों को सुलगा भी देता है। कुछ पुरानी बातें, मुलाकातें रह रहकर याद आने लगती हैं। ये बारिश, ये हसीन मौसम और ये हवाएं फिर किसी की याद बरबस ले आए।

दोस्तों, मौसम कोई भी हो, एक जैसा तो नहीं रहता। ढंग रंग मौसम के अलग अलग होते हैं, बदल जाते हैं। और मोहब्बत की दुनिया के मौसम का तो कहना ही क्या, ना जाने कब बदल जाए, कौन जाने। तब्दीली जब भी आती है मौसम की अदाओं में, किसी का यूं बदल जाना बहुत याद आता है। हाँ हाँ।

इस वक्त आप सुन रहे हैं विविध भारती चंडीगढ़ से प्रोग्राम शेरो नगमा FM 107.2 MHz पर अपने साथी अनिल पुंज के साथ। आज बातें बारिश के इस मौसम की जो हर बार किसी की याद दिलाता है। प्यार का मौसम ना जाने कितने ख्वाब सजाता है, ख्वाब कई बार ख्वाब ही रह जाते हैं, चाहकर भी हकीकत नहीं बन पाते। मोहब्बत में हारने

दोस्तों, प्यार भरे भीगे मौसम में प्यार भरे फूल ही खिलें ये जरूरी तो नहीं, प्यार का सिला मनचाहा मिल जाए ये भी तो जरूरी नहीं, क्योंकि प्यार के इस मौसम में कोई पुरानी याद, कोई पुरानी टीस उभर जाती है, क्योंकि फूलों के साथ कांटे भी तो हुआ करते हैं और कभी सिर्फ कांटे ही जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के।

0: दोस्तों, जिंदगी की राहों में ना जाने कितने लोगों से मुलाकात होती है, बात होती है, कुछ याद रह जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक दिल में उतर जाता है, गहरे उतर जाता है, बस वहीं बस जाता है, फिर उस पर हमारा बस नहीं रहता है। लेकिन जब वफा साथ ना दे, फिर दिल टूटता है और शायद यही कहता है, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे।
1: जाने जाना

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर भारोत्तोलकों मीराबाई चानू, चानम्बम ऋषिकांत सिंह, राजा मुथुपांडी और पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को बधाई दी।
1: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम्बम तथा श्री राजा मुथु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।
0: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का

0: मुद्दा उठाया। इस पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य मुद्दे नहीं उठाए जा सकते।
1: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं, ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 267 के तहत इस विषय पर चर्चा की मांग की। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस बीच सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड के प्रावधान वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। इसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकर्णी करेंगे। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यबल में पूर्व सूचना और शिक्षा निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ, IIT चेन्नई के निदेशक वी कामकोटी भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदक की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलेंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने भारोत्तोलन में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
3: यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

ये गीत आप सुन रहे थे, टाइटल सॉन्ग था आप आए बाहर आई फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज़ थी, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में हसरत जयपुरी की रचना आपने सुनी फिल्म अप्रैल फूल से, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन? कौन
0: लाया? विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: पेंटर बाबू, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में। कमर जलाला बादी और मनोज कुमार के बोल थे उत्तम सिंह और जगदीश खन्ना की तर्ज थी। और इस गीत के पहले श्रोता लम्हे फिल्म का गीत आपने सुना, शिवारी की तर्ज थी, आनंद बख्शी के बोल थे, आवाज़ें थी लता मंगेशकर और इला अरुण की और साथियों की भी आवाज़ें थी।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
2: मुकेश के गानों में है सादगी।
3: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
2: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
3: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार,
2: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
3: जाऊं कहां बताए दिल।
2: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
4: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
2: आज की मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
5: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना।

0: बप्पी लाहिड़ी का संगीत था अनजान के बोल, आवाजें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की। नमक हलाल फिल्म का गीत आपने सुना।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फर्ज फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं श्रोताओं। मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर की आवाजों में आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है। जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: कल्याण जानन जी की तर्ज थी हिंदी वर के बोल, मुकेश की आवाज़, फिल्म सफ़र का ये गीत आपने सुना। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम श्रोताओ यहीं संपन्न होता है।
1: नसीर तो ज्यादा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए अब आपको जानकारी देते हैं हमारे आज के बाकी के कार्यक्रमों की।

प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर में 1:05 पर पहले हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में।

1:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सुनिए उमंग शाम 5:30 बजे। दोपहर 2:15 पर आकाशवाणी दिल्ली से समाचार।

शाम 5 बजे, शाम 6 बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। शाम 6:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले हिंदी में, उसके बाद 6:20 पर पंजाबी में। हरियाणा राज्य की समाचार समीक्षा सुनिए शाम 6:30 पर।

पंजाबी गीतों का कार्यक्रम पेश किया जाएगा 6:35 पर। शाम 7:45 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद सुनिए कुछ पंजाबी गाने। रात 10:30 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद सुरसांझ कार्यक्रम में आपके लिए पंजाबी गीत पेश किए जाएंगे।

विविध भारती मुंबई से जो प्रोग्राम रिले किए जाएंगे उन प्रोग्रामों में दोपहर 1:30 पर सुरीला सफर, 2 बजे प्रोग्राम त्रिवेणी, 2:30 बजे सदाबहार नगमे, 3 बजे प्रोग्राम सखी सहेली।

टॉक शो पिटारा में शाम 4 बजे आज सेहतनामा प्रोग्राम में नेत्र विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात करवाएंगे। फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम शाम 7 बजे, रात 8 बजे प्रोग्राम हवा महल में सुनिए एब्स्ट्रैक्ट लव ये झलकी, रात 9:30 बजे आज के फनकार प्रोग्राम अभिनेता अमजद खान पर केंद्रित है। ये थी जानकारी हमारे आज के बाकी के कार्यक्रमों की।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 1:05 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में प्रादेशिक समाचार।

0: आर ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च अधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल जैसे अपराधों पर लगाम कसने के लिए और अधिक कठोर कानूनी व्यवस्था लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि यह करोड़ों युवाओं की मेहनत, उनके सपनों और उनके भविष्य की रक्षा की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भविष्य की आवश्यकताओं और देश के युवाओं के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। युवाओं के हितों की रक्षा करना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसी सोच के साथ सार्वजनिक परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए कानून को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक माफिया, नकल गिरोह तथा युवाओं का भविष्य लूटने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि ईमानदार और मेहनती युवाओं का विश्वास व्यवस्था में बना रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पहले ही बिना पर्ची बिना खर्ची के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए प्रदेश में पारदर्शी, निष्पक्ष और मेरिट आधारित भर्ती व्यवस्था स्थापित की है। आज प्रदेश में योग्य एवं प्रतिभाशाली युवाओं को बिना किसी सिफारिश और बिना किसी भ्रष्टाचार के सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, जो सुशासन और पारदर्शिता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की दो दिवसीय राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन कल संपन्न हो गया, जिसमें संघ के चंडीगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष हरीश गर्ग एवं महासचिव भीमसेन सहित देश के विभिन्न राज्यों से आए 200 से अधिक वरिष्ठ व्यापारी नेताओं ने भाग लिया। सम्मेलन में व्यापार एवं उद्योग से जुड़े अनेक समसामयिक विषयों, व्यापारियों के हितों, देश के आर्थिक विकास में व्यापार जगत की भूमिका आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हर हर तिरंगा हर दुकान तिरंगा अभियान को देश भर के व्यापारियों के माध्यम से व्यापार जन भागीदारी के साथ सफल बनाने का रहा। सम्मेलन से देश के समस्त व्यापारियों से आह्वान किया गया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रत्येक घर, प्रत्येक दुकान और प्रत्येक बाजार तिरंगे की शान से सजे तथा राष्ट्रभक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचे। बैठक में निर्णय लिया गया कि देश भर के बाजारों में बड़े स्तर पर तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। इन यात्राओं में विभिन्न सांस्कृतिक एवं देशभक्ति पर आधारित आकर्षक झांकियां भी निकाली जाएंगी। प्रमुख व्यापारिक बाजारों, व्यावसायिक परिसरों और व्यापारिक संगठनों द्वारा राष्ट्रध्वज से संपूर्ण बाजारों को सजाया जाएगा तथा प्रत्येक व्यापारी अपने प्रतिष्ठान पर गर्व के साथ तिरंगा फहराएगा। हरियाणा में सभी जगह प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम सुना गया। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने गांव किटवाड़ी में पार्टी कार्यकर्ता एवं ग्रामीणों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण देखा। कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री कार्यक्रम में अनेक मुद्दों पर बात करते हैं।
2: इसमें देश के प्रधानमंत्री हमेशा युवाओं ने या इस देश की महिलाओं ने या किसानों ने या देश के इस मेहनत कश वर्ग ने जो भी अच्छा काम किया है उसको मन की बात में लाते हैं। और मन की बात सिर्फ एक कार्यक्रम भर नहीं, देश के युवाओं को आगे अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी के साथ कुछ अच्छा वो करें, इनोवेटिव आइडियाज के साथ क्या करें, कुछ समाज के लिए प्रेरणा का काम करें, कुछ सब बातें इस देश के प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में लाते हैं। और चाहे वो संस्कृति से जुड़ी हो या मिट्टी से जुड़ी हो या खेलों से जुड़ी हुई हो।
0: इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

आनंद बख्शी का लिखा गीत था, उत्तम सिंह के संगीत में, लता मंगेशकर, हरिहरन की आवाजों में। यह फिल्म थी दिल तो पागल है

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।

किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अभी आपने दूसरा आदमी फिल्म से ये गीत सुना। मजरूह के बोल थे राजेश रोशन का संगीत।

अलका याग्निक, मनहर उदास और साथियों का भी आपने सुना। यह फिल्म थी जानवर। यही था अब तक का फिल्म संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।

लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है। घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लई स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: अगला प्रोग्राम सुरीला सफर, इसके लिए हम आपको लिए चलते हैं विविध भारती मुंबई।
2: श्रोताओ, इस गीत के पिक्चराइजेशन में आप देखेंगे कि एक खास फूल है तालाब में, ये कौन सा है?

0: अगला प्रोग्राम सुरीला सफर, इसके लिए हम आपको लिए चलते हैं विविध भारती मुंबई।
1: श्रोताओ, इस गीत के पिक्चराइजेशन में आप देखेंगे कि एक खास फूल है तालाब में, ये कौन सा है?

जो मोती हम पहनते हैं श्रोताओं, वो ये बूंद ही तो हैं। क्या आपको ये मोती पसंद आते हैं? अगर पसंद आते हैं तो क्यों पसंद आते हैं, ये हमें ज़रूर बताइए। अनमोल मोती फिल्म का गीत आपने सुना, और तालाब में कौन सा फूल है ये आपको बताना है। बबीता और जितेंद्र पर फिल्माया गया, महेंद्र कपूर की आवाज़ में राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत आपने सुना। एक श्रोता लिखते हैं कि मौसम भोपाल में तो ज़रूर सुहाना है, लेकिन धूप निकली हुई है और उम्मीद है कि शाम तक बारिश हो। बाकी समय बिताने के लिए विविध भारती ही है। जी हाँ, बारिश तो होनी ही चाहिए, होगी, थोड़ा इंतज़ार तो करना होता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि पपीहा पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बूंद से ही संतुष्ट होता है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि स्कूल में अयोध्या सिंह हरिऔध की कविता पढ़ी थी, एक बूंद। क्या आपने भी कोई कविता लिखी है श्रोताओं, या बूंद पर कोई पैसेज, कोई इबारत, कोई बात आपने लिखी है तो आप ज़रूर हमसे बता सकते हैं, लिख सकते हैं। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि रेन लिली और जीनिया के फूल नज़र आते हैं। जी हाँ, ये वही फूल हैं जिन्हें हम गुलमेहंदी का फूल कहते हैं, और इनकी बहुत सारी वैरायटी होती है, यानी रंग जो होते हैं, कलर बहुत अलग अलग होते हैं। तो ये किन किन कलर्स का होता है आप चाहें तो बता सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि ज्वेल थे फिल्म का गीत था, देवानंद और वैजयंती माला जी पर फिल्माया गया। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की भारत में हमें सबसे अच्छी वो बूंद जो सीप में जाकर मोती बन गई। बूंद को ये नहीं पता कि उसका सफर कहाँ खत्म होगा, फिर भी वो चलती रही, शायद इसीलिए वो मोती बन गई। जिंदगी भी उन्हीं का साथ देती है जो मंजिल से पहले उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ते। और एक और श्रोता ने लिखा है, इसमें बारिश, बूंद, फूल, आसमान, चांद, सितारे, जमीन, मोहब्बत, सीप, मोती, बदरा, आंचल, चेहरा, शीशा, सफर, जिंदगी, रात, पत्थर, दलदल, निर्जन, मिलन और इंतजार जैसे शब्द छुपे हुए हैं।

0: इस फिल्म का नाम आपको बताना है श्रोताओं, और कलाकार भी आप ही को बताने हैं। संगीतकार मैं बता देती हूँ, ओपी नैयर, और गीतकार SH बिहारी, मुकेश और आशा भोसले की आवाजें थी। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि ओस की बूंदों को पत्तों पर छुओ तो पत्ता मखमल सा लगता है। जी हाँ, और बूंदें भी तो गायब हो जाती हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि अनमोल मोती फिल्म का लोकप्रिय गीत जितेंद्र और बबीता जी पर फिल्माया गया। एक श्रोता लिखते हैं कि सफर बूंद का अंजाम मत पूछें, सबके नसीब में सीप नहीं होते।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: ये कहते हैं, एक और श्रोता ने लिखा है कि मीनू मुमताज पर फिल्माया गया गीत था। एक और श्रोता लिखते हैं कि स्वाति के पानी को पपीहरा पक्षी बहुत बेसब्री से इसका इंतजार करता रहता है कि एक बूंद पानी उसके मुंह में चली जाए। एक और श्रोता लिखते हैं कि पपीहा पानी की बूंदों के लिए तरसता है, जो स्वाति नक्षत्र में बरसती बूंदों के लिए चोंच खोले इंतजार करता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मोती दो तरह के होते हैं, एक तो प्राकृतिक और दूसरा कल्चर्ड, जो कि मोती की खेती करने पर मिलता है। चातक पक्षी होता है जो एक पावस की बूंद पानी का इंतजार करता रहता है। एक और श्रोता लिखते हैं, चातक पक्षी की मुख्य विशेषता यह है कि यह केवल वर्षा का जल विशेषकर स्वाति नक्षत्र की बूंदें ही पीता है, ये माना जाता है, और इंद्रधनुष सतरंगी होता है। जी हाँ, सतरंगी तो होता है, लेकिन इसमें कौन कौन से कलर होते हैं ये आपको बताना है। वैसे हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा भी है, इनके बारे में भी हम आपको बाद में बताएंगे। और चातक के बारे में कहा जाता है कि वो बारिश की प्रतीक्षा करता है, मोती किसी नहीं प्रिय है, ऐसा ये लिखते हैं। जी हाँ, मोती बहुत सुंदर। हमने आपसे ये भी पूछा था कि मोती आपको प्रिय तो लगता है, लेकिन इसका कोई रंग तो नहीं होता। तो वैसे कहा जाता है कि काले और सफ़ेद रंग के मोती होते हैं, तो मोती आपको क्यों पसंद आते हैं ये आपको बताना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सात रंग होते हैं, बारिश में हल्की सी झलक आप इंद्रधनुष की देख सकते हैं, और इन्हें देखकर बच्चे बड़े खुश होते हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं कि वो बूंद का ही भाग्य है जो सीप में गिरकर मोती बन जाया करती है।

कानपुर और मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे फिल्म पालकी में, और शकील बदायूं ने लिखा ये गीत था, राजेंद्र कुमार वहीदा रहमान पर फिल्माया गया। एक श्रोता ने लिखा है कि चांद सितारे गगन के साथ, चांद सितारे बिजली का लेकर हाथों में हाथ, बदली की आगोश से छूट कर पानी की बूंदें जब हैं गिरती, एक सा चेहरा पर तरह तरह के काम करती, सूखी प्यासी धरती पर नवगीत जागती, मिट्टी की सौंधी खुशबू बनकर फसलों की हरियाली लाती, कमल के कोमल पत्र पर बनकर मोती, कभी खोलते तवे पर भाप बन जाती, स्वाति नक्षत्र की घड़ी में सागर की सीप में आती, बनकर अनमोल मोती, एक ही जल के रूप अनेक, जैसे संगत वैसा काम, बदली की ये नन्ही बूंदें दे देती हैं जीवन का सच्चा पैगाम। और कुछ गीत भी इन्होंने पसंद के भेजे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि वर्षा केवल प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि सृजन, समर्पण और पुनर्जन्म का शाश्वत उत्सव है। आसमान की असीम गहराइयों से आंचल फैलाए जब नन्ही वर्षा की बूंदें चली तो वो महज पानी का कतरा नहीं बल्कि ख्वाबों का एक समंदर थी। हवा की झोंकों से बातें करती, कभी चांद की चांदनी को सहलाती तो कभी सूरज की किरणों से सतरंगी ख्वाहिशें बुनती। और भी इन्होंने आगे बहुत कुछ लिखा है, आप ये गीत सुनिए श्रोताओ और बताइए किस फिल्म का है।

0: फिल्म मधुमती का ये गीत आप सुन रहे थे जो दिलीप कुमार पर फिल्माया गया। एक अमर शोधा ने लिखा है कि आसमान से गिरी बारिश की बूंदें और धरती का मिलन एक पवित्र प्रेम जैसा है और सीप में पलने वाले मोती का बदन उसके सच्चे प्यार की अनमोल निशानी है। बारिश की बूंदें जब प्यासी धरती पर गिरती हैं तो दोनों एक हो जाते हैं और ये अनमोल और अनोखा मिलन आसमान और जमीन के प्यार को दिखाता है। बारिश की बूंदें और सीप का रिश्ता गहरे भरोसे और सच्ची मोहब्बत का प्रतीक माना गया है, इसलिए सीप उसे अपने दिल में बसा लेती है। सीप अपने दिल का दर्द सहकर भी वो बूंद एक चमकता हुआ सफेद और कठोर मोती बन जाती है, इसलिए बूंदें और सीप का मिलना सच्ची मोहब्बत, समर्पण और अनमोल प्रेम की एक सुंदर निशानी मानी जाती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि लिखती हैं कि वो दिल कहाँ से लाऊं, बूंद जो बन गई मोती फूल आहिस्ता फेंको, और तमाम गीत इन्होंने पसंद किए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सबसे अच्छी वो बूंद है जो सीप में जाकर मोती बन गई, बूंद को नहीं पता था कि उसका सफ़र कहाँ ख़त्म होगा, फिर वो चलती रही, शायद इसलिए वो मोती बन गई। एक और श्रोता ने लिखा है, प्यास लिए मनवा हमारा जो तरसे एक बूंद तेरी दया की, जो बरसे आसमान से आया फरिश्ता।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ले स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा च ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
0: और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं, खेत है, वन है, उपवन, नदी, सागर, झरने, पोखर। क्या आपने बूंदों को ध्यान से देखा है श्रोताओं? तो ये बूंदें जो हैं, कई बार जब हम घूमने जाते हैं सफ़र पर, तो

जो शीशे होते हैं गाड़ी के या ट्रेन के जो शीशे होते हैं, तो इनमें जब ये झरती हैं तो बड़ी सुंदर लगती हैं। आपको कैसी लगती हैं और क्या ऐसा सफ़र आपने किया है बारिशों का, या अब भी आप सफ़र पर हैं? ये कौन हैं कलाकार श्रोताओं जो सफ़र पर निकले हैं?

विश्वजीत और राजश्री पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। सगाई फिल्म से राजेंद्र कृष्ण का लिखा, रवि का संगीत था। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैं अभी नेपाल के बॉर्डर पर हूँ, यहाँ तो बारिश जमकर हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है। तो ये बताइए श्रोताओं, क्या आपको बारिशों का मौसम अच्छा लगता है क्या? एक और श्रोता लिखते हैं, बहुत दिनों बाद ये गाना सुना, शायद मुस्करा दो। जी हाँ, उस गीत के बारे में ये कह रहे हैं, एक बार मुस्करा दो फिल्म का जो था। एक और श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने लिखा है कि एक बार मुस्कुरा दो फिल्म में तनुजा और देव मुखर्जी नज़र आते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। एक और श्रोता लिखते हैं कि FM पर सुन रहे हैं, लोगों के उत्तर हमें मोबाइल ऐप से जो है वो मिल रहे हैं, कुछ ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। और अब इन कलाकार को आप पहचानिए।

एक हमारी श्रोता लिखती है कि मैंने देखी है ओस की बूंदें छत पर, जब मैं पत्तों पर बूंद रहती थी उसके उसे हाथ से छूने पर सड़क कर नीचे गिर जाती, बहुत अच्छा लगता और इसे देखने के लिए बचपन में जल्दी सोकर उठ जाती थी।

0: ठहर और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर और कुछ देर न जा।
1: आखिरी खत फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे राजेश खन्ना और इंद्राणी मुखर्जी पर फिल्माया गया। आपके सभी कमेंट्स के लिए, सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, रहिए विविध भारती के संग।

बड़ी कोमल हृदय की होती हैं। सच मानिए तो पिता का हृदय बहुत कोमल होता है। ऊपर से वे कठोर दिखते हैं, लेकिन उनको अपने बच्चों की, परिवार की बड़ी चिंता होती है। वे अपने आंसू पी लेते हैं, दर्द छुपा लेते हैं, क्योंकि ये उनका अपना परिवार बनाया हुआ होता है। वे परिवार के वो स्तंभ होते हैं जिनके कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारियों का जिम्मा होता है। वे अपनी खुशी से पहले बच्चों की खुशी के बारे में सोचते हैं। उनके भविष्य को संवारने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। पिता का प्रेम अक्सर शब्दों में कम, कर्तव्यों में अधिक दिखाई देता है। पिता अपनी इच्छाओं का त्याग कर परिवार के लिए समर्पित रहते हैं, जिससे सब खुशी से रहें और होठों पर मुस्कुराहट बिखरती रहे।

0: सारा।
1: दोस्तों, पिता अपने बच्चों की उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। उनकी सुरक्षा, अनुशासन, आत्मविश्वास और जीवन के मूल्यों का आधार बनते हैं। सही गलत का अंतर जीवन की हर समस्या का हल करने वाले होते हैं। उनकी छांव में बच्चे अपने को सुरक्षित पाते हैं। पिता का साथ हिम्मत हौसला देता है। उनके ना रहने पर उनकी कमी का एहसास दिल को झकझोर देता है। पिता विशाल वृक्ष की तरह होते हैं, जिनकी बाहों में शांति, सुकून और स्नेह का आभास होता है। कभी अपने पिता के पास दो घड़ी बैठकर उनके उस प्यार को महसूस कीजिए, जिसे कभी उन्होंने आप पर लुटाया था। अपना बचपन अपने बेटी बेटी में जिया था। उनके कंधों पर बैठकर बाजार घूमा, मेला देखा, हर मौसम में वे ढाल बन जाया करते थे।
2: पापा।

पिता और संतान का रिश्ता दुनिया के सबसे अनमोल रिश्तों में से एक है। ये रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारियों का नहीं बल्कि गहरे भावनात्मक जुड़ाव का भी होता है। पिता का प्रेम अक्सर शांत नदी की जलधारा की तरह होता है, जो बिना शोर किए अपने बच्चों के जीवन को सींचता रहता है। पिता अपने पुत्र संग दोस्त की तरह रिश्ता रखता है। पिता अपने बेटे में अपने सपनों, संघर्षों और अनुभवों की झलक देखते हैं। बेटी के साथ पिता का रिश्ता बेहद कोमल, स्नेहमय और भावनाओं से भरा होता है। बेटी के लिए पिता उसका पहला नायक, पहला रक्षक और आदर्श होता है। बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए, पिता की नज़रों में वो नन्ही सी परी ही रहती है। पिता का प्रेम दोनों के लिए समान होता है।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान।

0: ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर को कांस्य पदक। और 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
0: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले देश के भारोत्तोलकों को बधाई दी।
3: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुत्थु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
3: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा जारी रखा। इसके बाद सभापति CP राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
4: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
5: प्रधानमंत्री जी ने विशेषज्ञों की टास्क फोर्स, कानून, विशेष अदालतें, देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो उसके लिए फैसले लिए हैं और निरंतर भारत आगे बढ़े, भारत के नौजवानों के सपने और संकल्प पूरे हों। प्रधानमंत्री मोदी जी संसाधनों को खड़ा करके, सीटों को बढ़ाकर नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं और देश की जेन जी भारत की तरक्की में भागीदार भी बन रही है।

0: पर लगातार प्रयासरत है।
1: उधर टीएमसी की बागी नेता सयानी घोष ने परीक्षा सुधार से जुड़े विधेयक पर संसद में रचनात्मक बहस की मांग की। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा।
2: ह्यूमन इंटरवेंशन कम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है ये तो अभी का होगा, लेकिन परमानेंट ये फुल प्रूफ एग्जाम हो तो जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगी।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 87 सेंट प्रति बैरल पर थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 656 अंक बढ़कर 76,716 जबकि निफ्टी 189 अंक के उछाल के साथ 23,956 पर पहुंच गया। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी पर बने हवा के गहरे दबाव के कारण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और विदर्भ में भी कल तक अत्यधिक वर्षा हो सकती है। इस बीच ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
3: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है, जिससे उड़ीसा के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जगतसिंहपुर, संबलपुर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, पुरी और खुर्धा जिले में बहुत ज्यादा बारिश की खबर है, जिससे जगह जगह पानी भर गया है और आम जनजीवन पर असर पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगे भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है और संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदियो जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उधर नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की

0: प्रेरणा दी।
1: भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2: डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकटतम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बनाया। पूर्व राष्ट्रपति अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास व संचालन के लिए भी जिम्मेदार थे। साथ ही उन्होंने कई संस्थानों को एक साथ जोड़कर महत्वपूर्ण तकनीकों में स्वदेशी क्षमता निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्हें 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने का अनूठा सम्मान मिला था। उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मभूषण, पद्मविभूषण और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचाओ में आयोजित ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिभागी देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में खेल अवसंरचना में सुधार तथा खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर लगातार काम कर रही है।
3: दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए काम कर रही है। मैं आज इस चैंपियनशिप में दिल्ली की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली आप सबके लिए उन सभी फैसिलिटीज को यहाँ पर जरूर उपलब्ध कराएगी जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं।
0: दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों की मेजबानी करना सम्मान की बात है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मच्छर जनित रोग रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 या 2331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, मनु भाकर को कांस्य पदक। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमे। बस थोड़ा सा इंतजार।

0: मुकेश को आपने सुना, शैलेंद्र का लिखा गीत था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे।

0: असली नकली फिल्म का गीत था मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोलों को सुर में ढाला शंकर जयकिशन ने।
1: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
2: ये शाम मस्तानी।
1: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
2: दिल इंसान का एक तरह।
1: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
3: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दुनिया। किशोर कुमार की आवाज में फिल्म रंगोली का गीत आपने सुना। शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं सदाबहार।

हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत आपने सुना शंकर जयकिशन की तर्ज थी मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में छोटी सी मुलाकात फिल्म के इस गीत के साथ ही श्रोताओं आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए इजाज़त संगीता श्रीवास्तव को, रहिए विविध भारती के संग।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को प्यार भरा नमस्कार। और दीपा जी आपको भी नमस्कार।
2: सुनने वाली हमारे सभी सखियों, सखाओं, श्रोता भाइयों और चंचल आपको भी हेल्दी नमस्कार।
1: आप आती हैं तो हेल्दी नमस्कार होता है भाई। हम प्यार भरा नमस्कार करते हैं, हेल्दी नमस्कार करते हैं। दोनों ही चीजें जीवन में बहुत जरूरी हैं।
2: प्रेम जितना और स्वास्थ्य भी।
1: बिल्कुल, स्वास्थ्य जरूरी है। और कुछ जैसे हम कहते हैं ना, जब मौसम की हम बात करते हैं तो भाई गर्मियों का मौसम है तो उसके हिसाब से आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर ठंड बहुत पड़ रही है तो उसके हिसाब से, और अब क्योंकि बारिश का मौसम है
2: जी,
1: यहाँ बार बार थोड़ा ठंडा होता है, कुछ गर्म हो जाता है।
2: गर्म हो जाता है। और बस एक हेल्दी नमस्कार बोलने से अगर कोई एक सुनने वाला भी हमारा श्रोता या हमारी बहन कोई
1: जी
2: अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी भी सजग हो जाती है ना, तो लगता है कि हाँ कहीं कुछ पूर्ण हो गया, कुछ साकार हो गया। तो एक प्रेरणा क्योंकि उनसे मिलती रहती है तो ऐसा लगता है थोड़ा सा हमें भी कुछ तो एक दूसरे को मिलके इंस्पायर करते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा। और हम इसी तरह से एक दूसरे से प्रेरित होते रहते हैं। और हमने जब बात की मौसम की और अब बारिश का मौसम है तो हम बहुत सारी चीजों की बात करते हैं। बारिश में खान पान का कैसे ध्यान रखना है या भाई कपड़े कैसे पहनने हैं। तो एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, जब आप बाहर निकलते हैं तो किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए बारिश के मौसम में, खासतौर पर अपने आप को बचाने के लिए।
2: हाँ,
1: उन चीजों की हम बात करेंगे।
2: ये सब चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन दिनों में बिजली के तार कहीं खुले हैं, कटे हैं, इन सब बातों का भी ध्यान रखना, जिसकी हम विस्तृत से चर्चा
1: बिल्कुल
2: करेंगे।
1: और कई बार बहुत तेज बारिश है और आप घर से बाहर हैं तो उस वक्त आप अपना बचाव से करेंगे। और इन सब चीजों के बारे में हमारे श्रोता भी हमारे साथ अपनी बातें, अपने अनुभव या क्या क्या वो करते हैं, क्या क्या करना चाहिए, सभी बातें साझा कर सकते हैं
2: जी। बिल्कुल। और व्यंजन में हम चलेंगे पंजाब की ओर।
1: बिल्कुल, हम छोले भटूरे तो पहले हम चख चुके हैं, यानी कि रेसिपी उनकी आ चुकी है
2: जी।
1: लेकिन छोले भटूरे जैसे ही है छोले कुलचे, जिसमें छोले अलग होते हैं और भटूरे से बिल्कुल अलग होते हैं कुलचे, तो इसके भी रेसिपीज हमारी जो सखियां हैं जो कि किचन के काम में बड़ी माहिर हैं, वो किस तरह बनाती हैं, अपनी रेसिपी जरूर हमारे साथ साझा करें। और हमारे कुछ श्रोता भाई भी होंगे जो भी अक्सर किचन में जाकर खटर पटर करते हैं और बड़ी कुछ नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं।
2: आपको बताएं चंचल कि कुछ इस तरह के जो मैसेजेस हैं आ चुके हैं।
1: हाँ।
2: और हम साथ में ये भी जानना चाह रहे हैं मक्के की रोटी और सरसों का साग जो कि पंजाब का प्रसिद्ध व्यंजन है और किसे देश में पसंद नहीं होगा, सब जगह इस व्यंजन को बड़े स्वाद के साथ खाया जाता है।
1: बिल्कुल, अभी बस बारिश खत्म होते ही जैसे गुनगुनी ठंड चालू होंगी तो मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, इसकी बहार ही बहार होगी।
2: बिल्कुल सही कहा। और भरोसा करिए, भरोसेमंद रहें।
1: हाँ।
2: इस बारे में ये जीवन का आधार है, विश्वास करना, भरोसा करना। तो इस बारे में भी बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे संदेश भी पढ़े जाएंगे। और हम अपने श्रोताओं से फिर वही अनुरोध करते हैं कि आप के लिए कब भरोसा बहुत ज्यादा बना या कब कहीं टूटा।
1: हाँ।
2: इस बारे में जरूर बताइएगा।
1: बिल्कुल,
2: क्या ऐसा किस्सा हुआ जिसके लिए लेकर के दिल दुखा, या आप इस बात को यहाँ पर सबके सामने शेयर कर सकते हैं, नहीं कर हाँ। सकते हैं, तो अपनी ये दिल की बात हम तक जरूर पहुंचाइएगा।
1: बिल्कुल दीपा, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बड़े भरोसे से किसी व्यक्ति की विशेष की वजह से कोई काम करके बैठ जाते हैं कि भाई भरोसा है उन पर, टूटेगा नहीं
2: जी।
1: लेकिन वहां जब वो भरोसा पूरा नहीं होता तो हमारी उम्मीदें टूटती हैं, हमारा दिल टूटता है, बहुत दुख पहुंचता है। लेकिन ये बात हम खुद पर भी लागू होती है कि हम जब किसी और से भरोसा चाहते हैं तो हमें भी उन दूसरों के लिए भरोसेमंद बनना है।
2: बिल्कुल। और आज सोमवार है तो हमारे सभी जो सखी सहेली परिवार के जो साथी हैं इंतजार करते हैं
1: कहानी का। हाँ। तो आज कौन सी कहानी सुनेंगे?
2: आज हम सुनेंगे अशिक्षित का हृदय। इसकी पहली कड़ी आज हम सुनेंगे। ये विशंबरनाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखी कहानी है, तो इसका वाचन हम इसके बारे में सब मिलकर के सुनेंगे कि कहानी।
1: ये तो हुई आज के पिटारे में हमारे क्या था इसकी बात, तो कहानी सुनेंगे लेकिन पहले एक गीत सुन लेना।

0: अब हम आपको सुनवा रहे हैं कहानी अशिक्षित का हृदय, इसका पहला भाग।
1: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक

0: और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रसिद्ध साहित्यकार विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी
1: कथा सुधा। इस श्रृंखला के अंतर्गत आइए सुनते हैं विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी अशिक्षित का हृदय।
2: सरकार, अभी तो मेरे पास रुपए है नहीं, होते तो दे देता। ऋण का पाप तो देने से ही कटेगा। फिर आपके रुपए को कोई जोखिम तो नहीं है। मेरा नीम का पेड़ गिरवी धरा हुआ है, वो पेड़ कुछ न होगा तो 25-30 रुपए का होगा। इतना पुराना पेड़ गांव भर में दूसरा नहीं है।
3: 1.5 साल का ब्याज मिलाकर कुल 25 रुपए होते हैं। ये रुपया अदा कर दो, नहीं तो हम तुम्हारा पेड़ कटवा लेंगे।
2: अरे सरकार, ऐसा अंधेर ना कीजिएगा, पेड़ ना कटवाइएगा। रुपए मैं दे ही दूंगा, यदि ना भी दे तो पेड़ आपका हो जाएगा, पर मेरे ऊपर इतनी दया कीजिएगा, उसे कटवाइएगा नहीं।
3: मनोहर, तुम सठिया गए हो, तभी तो ऐसी उलझुलूल बातें करते हो। भला जो पेड़ कटवाया ना जाएगा तो हमारे रुपए कैसे निकलेंगे?
2: अन्नदाता, आपके रुपए तो जहां तक होगा मैं दे ही दूंगा।
3: अच्छा, अब ठीक ठीक बताओ कि रुपए कब तक दे दोगे?
2: अब एक सप्ताह में दे दूंगा।
3: अच्छा, स्वीकार है, एक सप्ताह में अवश्य दे देना, नहीं तो पेड़ हमारा हो जाएगा। हमारी जो इच्छा होगी वही करेंगे, चाहे कटवाएंगे चाहे रखेंगे।
2: अब नहीं, और चाहे जो कीजिएगा उसे कटवाइएगा नहीं, इतनी बस इतनी प्रार्थना है आपसे।
3: खैर, हमारा जो जी चाहेगा करेंगे, तुम्हें फिर कुछ कहने का अधिकार न रहेगा। हाँ,
4: मनोहर सिंह की आयु 55 के लगभग है। अपनी जवानी उसने फौज में व्यतीत की थी। इस समय उसके परिवार में कोई नहीं है, वो संसार में अकेला है। गांव में दो एक दूर दूर के रिश्तेदार रहते हैं, उन्हीं के यहाँ अपना भोजन बनवा लेता है। न कहीं आता है न कहीं जाता है, दिन रात अपने टूटे फूटे मकान में पड़ा ईश्वर भजन किया करता है। एक वर्ष पूर्व उसे कुछ खेती कराने की सनक सवार हुई। उसने ठाकुर शिवपाल सिंह की कुछ भूमि लगान पर लेकर खेती कराई भी थी, पर उसके दुर्भाग्य से उस साल अनावृष्टि के कारण पैदावार न हुई, ठाकुर शिवपाल सिंह का लगान न पहुंचा। मनोहर सिंह को जो कुछ पेंशन मिलती थी वो उसके भोजन वस्त्र भर की ही होती थी। अंत में जब ठाकुर साहब को लगान न मिला तो उन्होंने उसका एक नीम का वृक्ष जो उसकी झोपड़ी के द्वार पर लगा था गिरवी रख लिया। ये नीम का वृक्ष बहुत पुराना और उसके पिता के हाथ का लगाया हुआ था। मनोहर सिंह को एक सप्ताह का अवकाश दिया गया। उसने बहुत प्रयास किया, 2-4 आदमियों से कर्ज मांगा, पर किसी ने उसे रुपए न दिए। लोगों ने सोचा वृद्ध आदमी है, न जाने कब ढुलक जाए, ऐसी दशा में रुपया किससे वसूल होगा। मनोहर चारों ओर से हताश होकर बैठ गया और धड़कते हुए हृदय से सप्ताह व्यतीत होने की राह देखने लगा। दोपहर का समय है, मनोहर सिंह एक चारपाई पर नीम के नीचे लेटा हुआ है। नीम की शीतल वायु के झोंकों से उसे बड़ा सुख मिल रहा है। वो पड़ा पड़ा सोच रहा है कि परसों तक यदि रुपए न पहुंचेंगे तो ठाकुर साहब इस पेड़ को कटवा डालेंगे। ये पेड़ मेरे पिता के हाथ का लगाया हुआ है, मुझे और मेरे परिवार को दातुन और छाया देता रहा है, इसको ठाकुर साहब कटवा डालेंगे। ये विचार मनोहर सिंह को ऐसा दुखदायी प्रतीत हुआ कि वो चारपाई से उठकर बैठ गया और वृक्ष की ओर मुंह करके बोला,

0: कभी संसार में किसी ने मेरा साथ दिया है तो तूने, यदि संसार में किसी ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है तो तूने। अब भी मेरी आंखों के आगे वो दृश्य आ जाता है जब मेरे पिता तुझे सींचा करते थे। तू उस समय बिल्कुल बच्चा था, मैं तेरे लिए तालाब से पानी भर भर के लाया करता था। पिताजी कहा करते थे, बेटा मनोहर, ये मेरे हाथ की निशानी है, इससे जब जब तुझे और तेरे बाल बच्चों को सुख पहुंचेगा तब तब मेरी याद आएगी। पिता का देहांत हुए 40 बरस बीत गए हैं, उनके कहने के अनुसार तू सदैव उनकी कीर्ति का स्मरण कराता रहा और जब तक रहेगा उनकी याद दिलाता रहेगा। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब मैं अपने मित्रों के साथ तेरी डालियों पर चढ़कर खेला करता था। इस समय संसार में तू ही एक मेरा पुराना मित्र है, तुझे वो दुष्ट काटना चाहता है। हां, काटेगा क्यों नहीं, पर देखूं कैसे काटता है।
1: उसी समय उधर से एक 15-16 वर्ष का लड़का निकला। वृद्ध मनोहर सिंह को बड़बड़ाते हुए देख उसने पूछा,
2: चाचा किससे बात करते हो, यहां तो कोई है भी नहीं।
0: क्या करूं बेटा तेजा, अपने कर्म से बातें कर रहा हूं। ठाकुर शिवपाल सिंह के मुझ पर कुछ रुपए हैं, तुझे तो बेटा मालूम ही है कि परसाल खेती में एक दाना भी नहीं हुआ। होता तो क्या मैं उनका लगान रख लेता, अब वो कहते हैं लगान के रुपए दो नहीं तो पेड़ कटवा लेंगे, इस पेड़ को कटवा लेंगे जो मेरे बाप के हाथ का लगाया हुआ है। ये बात तो देखो, समय का फेर है जो ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ती है। बेटा मैंने सारी उम्र फौज में बिताई है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां और मैदान देखे हैं, वो बेचारे हैं किस खेत की मूली। आज शरीर में बल होता तो इनकी मजाल थी कि मेरे पेड़ के लिए ऐसा कहते, मुंह नोच लेता। मैंने कभी नाक पर मक्खी नहीं बैठने दी, बड़े बड़े साहब बहादुरों से लड़ पड़ता था। ये बेचारे हैं क्या, बड़े ठाकुर की दुम बने घूमते हैं। मैं सच कहता हूं, अभी इस गांव के पर गोली चलने लगे तो ठाकुर साहब छिपते दिखलाई देंगे। मैंने तो तोप के मुंह पर डटकर बंदूकें चलाई हैं।
2: चाचा जाने भी दो।
0: पर बेटा समय सब कुछ करा लेता है, जिन्होंने कभी तोप की सूरत नहीं देखी वो वीर बने घूमते हैं, हमें आंखें दिखाते हैं कि रुपए दो नहीं पेड़ कटवा देंगे। देखें कैसे पेड़ कटवाते हैं, लाख बूढ़ा हो गया हूं पर अब भी 4-6 के लिए बहुत हूं, जब तलवार लेकर डट जाऊंगा तो भागते दिखलाई देंगे। बेटा 100 बात की एक बात तो यह है कि मुझे तो एक दिन मरना ही है, चल चलाव लग रहा है, मैं बड़ी बड़ी लड़ाइयों से जीता लौटा हूं, यह भी एक लड़ाई ही है, अब इसी लड़ाई में मेरा अंत है। पर इतना समझ रखना कि मेरे जीते जी इस पेड़ की एक डाल भी कोई काटने नहीं पाएगा, उनका रुपया गले बराबर है, भगवान जाने मेरे पास होता तो मैं दे देता, नहीं है तो क्या किया जाए। पर यह भी नहीं हो सकता कि ठाकुर साहब मेरा पेड़ कटवा ले और मैं टुकुर टुकुर देखता रहूं।
2: चाचा जाने भी दो, इन बातों में क्या रखा है, पेड़ कटवाने को कहते हैं काट लेने देना, इस पेड़ में तुम्हारा रखा ही क्या है, पेड़ तो नित्य ही कटा करते हैं।
0: अरे आखिर लड़के ही हो ना। अरे बेटा ये पेड़ ऐसा वैसा नहीं है, ये पेड़ मेरे भाई के बराबर है, मैं इसे अपना सगा भाई समझता हूं, ये मेरे पिता के हाथ का लगाया हुआ है और किसी के हाथ का नहीं। जब मैं तुमसे भी छोटा था तब से इसका मेरा

0: मेरा साथ है, मैं बरसों से इस पर खेला हूं, बरसों इसकी मीठी मीठी निबोलियां खाई हैं, इसकी दातून आज तक करता हूं। गांव में सैकड़ों पेड़ हैं, पर मुझसे कसम ले लो जो मैंने कभी उनकी एक पत्ती तक छुई हो। जब मेरे घर में आप ही इतना बड़ा पेड़ खड़ा हुआ हो, तब मुझे दूसरे पेड़ को हाथ लगाने की क्या पड़ी है। दूसरे मुझे किसी और पेड़ की दातून अच्छी नहीं लगती।
1: चाचा, बिना रुपए दिए तो ये पेड़ बच नहीं सकता।
0: बेटा, ईश्वर जानता है मेरे पास रुपए होते तो मैं आज ही दे देता, पर क्या करूं, लाचार हूं। मेरे घर में ऐसी कोई चीज भी नहीं बची जो बेचकर दे दूं। मुझे आज इस बात का बड़ा दुख है। गांव भर घूम आया, किसी ने उधार न दिया। क्या करूं, क्या करूं बेटा तेजा? सच जानना, जो ये पेड़ कट जाएगा तो मुझे बड़ा दुख होगा, मेरा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। अभी तक मुझे कोई दुख न था, खाता था, ईश्वर भजन करता था, पर अब घोर दुख हो जाएगा।
2: बालक तेजा वृद्ध मनोहर सिंह का कष्ट सुनकर बड़ा दुखी हुआ। तेजा गांव के एक प्रतिष्ठित किसान का बेटा था। उसका पिता 150-200 बीघे भूमि पर खेती करता था और मनोहर सिंह को तेजा चाचा चाचा कहा करता था।
1: चाचा, बापू से ये हाल कहां है?
0: सबसे कह चुका बेटा, तेरा बापू तो अब बड़ा आदमी हो गया है, वो मेरे जैसे गरीबों की बात क्यों सुनने लगा? एक जमाना था जब वो दिन दिन भर मेरे द्वार पर पड़ा रहता था। घर में लड़ाई होती थी तो मेरे ही यहां भाग कर आता था और 2-2, 3-3 दिन तक रहता था। वही तुम्हारा बापू अब सीधे मुंह बात तक नहीं करता। इसी से कहता हूं बेटा, समय की बात है।
1: कितने रुपए देने से पेड़ बच सकता है?
0: 25 रुपए देने पड़ेंगे।
1: 25 रुपए तो बहुत है चाचा।
0: पास नहीं है तो बहुत ही होते हैं, होते तो थोड़े थे।
1: 10-5 रुपए की बात होती तो मैं ही कहीं से ला देता।
0: अरे बेटा, भगवान तुम्हें चिरंजीव रखे। तूने एक बात तो कही, गांव वालों ने तो इतना भी नहीं कहा। खैर, देखा जाएगा, पर इतना तू याद रखना कि मेरे जीते जी इस पेड़ को कोई हाथ नहीं लगाने पाएगा।
3: अशिक्षित कार हृदय, अभी आप सुन रहे थे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी इस कहानी का पहला भाग। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। मनोहर सिंह की भूमिका में थे जयंत पात्रीकर, ठाकुर शिवपाल सिंह जी श्याम, तेजा सिंह सोहिल पात्रीकर, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते।
4: जब कोई कहानी सुनते हैं दीपा, और वो अधूरी सी रहती है ना, तो बड़ी उत्सुकता रहती है मन में कि आगे क्या होने वाला है।
5: बिल्कुल।
4: तो हमारे श्रोताओं के मन में भी ये उत्सुकता जरूर रहेगी। इसके लिए आप जरूर सुनिएगा कहानी का अगला भाग, लेकिन फिलहाल एक गीत सुन लिया जाए।
5: चलिए।

हमें अपने श्रोताओं से लेकिन बहुत प्यार है, और अब कार्यक्रम में हम उनके संदेश पढ़ेंगे, आगे बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: तो भाई भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है दीपा।
1: यही बात हम कर रहे थे श्रोता, अभी हम दोनों सखियाँ यहाँ बैठे, कि अगर जीवन में भरोसा ना हो ना, या यूं कहें कि स्टूडियो में एक दूसरे पे भरोसा ना हो,
0: हाँ
1: तो ये अगला जो जो 1 घंटा

0: साथ हम रहते हैं और आप सबके
1: बिल्कुल.
0: साथ रहते हैं तो पता नहीं क्या हो सकता है, लेकिन हम नकारात्मक बात क्यों करें, हम तो हमेशा यहाँ पे कोशिश होती है अपने इस परिवार की कि अच्छी साफ सुथरी और सकारात्मक बातें हों।
1: और हमें पूरा भरोसा होता है कि जब हम कोई विषय बता रहे हैं तो फेसबुक पर श्रोताओं के संदेश भी बहुत अच्छे आएंगे और वाकई बहुत अच्छे बहुत प्यारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं. और दीपक बताएं तुम्हें कि हम सभी के जीवन में ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जिन पर हम भरोसा बहुत करते हैं,
0: जी
1: लेकिन परिस्थितियाँ कभी कभी ऐसी सामने आ जाती हैं कि भरोसे में दरार

0: है कि हमें किसी प्रकार से दुख ना पहुंचे, तो ये एक बात समझ लेना बहुत जरूरी है चंचल, कि हम सबसे प्रेम करें लेकिन अपेक्षा किसी से ना रखें,
1: बिल्कुल
0: है
1: सही
0: ना।
1: कहा।
0: और सभी रिश्ते, फिर चाहे वो कारोबारी हो या पारिवारिक हो, उनमें स्नेह का हमेशा निवेश बना रहे।
1: हाँ
0: और इस निवेश के बदले रिटर्न्स में जो आपको मिलेगा, वो मिलेगा ना ढेर सारा प्यार।
1: ये तो बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं। विश्वास, भरोसा, यकीन, ट्रस्ट, ये केवल शब्द नहीं होते दीपा, लेकिन जीवन की नींव कह सकते हैं हम इन्हें, और हमारे रिश्तों की पूंजी भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि निजी तौर पर या व्यवसायिक तौर पर, दोनों ही स्तरों पर अगर इसे हम देखें तो शब्द से ज्यादा जोर शायद ही किसी और बात पर दिया जाता होगा। कोई व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर वो किसी का भरोसा नहीं जीत पाता है तो उसकी बातों पर किसी को यकीन ही नहीं होता। और उसके करियर की बात करें या निजी जिंदगी, तो उनमें भी मुश्किलें आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है।
0: बिल्कुल। अब देखो, यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये भी है कि आखिर ये भरोसा आता कहाँ से। हाँ, और किसी पर भरोसा किस तरह किया जा सकता है। तो कोई इसका ठीक ठाक जवाब किसी के पास भी शायद ना मिले, लेकिन इसके जवाब में ये जरूर कहा जा सकता है कि अचानक से किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता।
1: ये तो बात सही है।
0: बल्कि कई बार तो किसी के साथ काफी समय बिताने के बाद भी उस पर भरोसा नहीं आता।
1: और ये हम उस इंसान के व्यवहार से ही जानते हैं कि इतने समय से हैं, लेकिन हर बार हम उनकी ऐसी कोई बात देखते हैं उनके व्यवहार में कि हमने भरोसा किया था कि हाँ शायद ये चीज़ ठीक होगी, लेकिन हमें उसके विपरीत जब चीज़ें मिलती हैं तो वो भरोसा टूटता है।
0: बिल्कुल।
1: कस्में खाना, रस्में निभाना, ये वो चीज़ें नहीं जिनसे भरोसा जीत लेगा लिया लेंगे किसी का, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में कब, कहाँ, कितनी मुश्किलें आई और किस तरह से आप इनसे बाहर निकले थे। और जब आप मुश्किल के समय में थे तो आपके भरोसे का साथ किसने दिया और आपका साथ किसने छोड़ दिया, ये बातें बहुत मायने रखती हैं।
0: बिल्कुल। और क्या कभी हम में से किसी ने भी कभी ये सुना है कि जो अनजान व्यक्ति होते हैं एक दूसरे के शत्रु बन गए?
1: हाँ
0: ऐसा नहीं होता है ना।
1: बिल्कुल नहीं होता।
0: क्योंकि अपरिचित कभी शत्रु होते ही नहीं, शत्रु वो बनते हैं जो पहले कभी मित्र रह चुके हों,
1: बहुत सही बात
0: है
1: कही
0: ना,
1: तुमने।
0: या
1: हाँ
0: फिर उनके साथ किसी तरह का हमारा कोई संबंध जुड़ा हुआ हो।
1: हाँ
0: इसलिए जब आपस के जो दो लोग के बीच में संबंध, चाहे कोई भी हो, उन्हें जोड़ने वाला पुल जो होता है, वो होता है क्या?
1: भरोसा यानी विश्वास, बहुत सही
0: हाँ,
1: बात कही
0: और
1: तुमने।
0: जिसकी देखभाल करना हमें बहुत जरूरी है। अगर ये भरोसे का पुल टूट गया तो दोनों व्यक्ति दो अलग-अलग छोर पर हमेशा के लिए रह जाते हैं।
1: दीपा बहुत सही बात बता रही तुम। भरोसा टूटने की बहुत बड़ी वजह हो ये जरूरी नहीं होता, बहुत छोटी छोटी सी बातों पे ही भरोसे टूट जाते हैं। इसीलिए जितना भरोसा हम दूसरे से चाहते हैं ना, वैसा हमें दूसरों के प्रति रखना भी चाहिए। अपने छोटे छोटे फायदे के लिए किसी रिश्ते को दाव पे लगा देना, किसी का भरोसा तोड़ देना, ये सच में बहुत गलत बात होती है। और केवल एक सॉरी जो शब्द है वो कह देने भर से या माफी मांग लेने से आपको भरोसा वापस मिल जाएगा, माफी मिलेगी, ये भी जरूरी नहीं होता।
0: जी,
1: क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना तो घाव भी बड़े गहरे लगते हैं।
0: ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने चंचल। और हमारे सभी के जीवन में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन पर हमारा भरोसा बहुत पक्का, बहुत गहरा होता है, जिनसे हमें ये उम्मीद कतई नहीं करते कि कभी वो हमारे विश्वास को कभी भी किसी भी जीवन के मोड़ पर तोड़ सकते हैं। लेकिन जब वो ही लोग विश्वास को चोट पहुंचाते हैं, तो आगे चलकर किसी दूसरे व्यक्ति पर भी भरोसा करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। जब विश्वास को चोट पहुंचती है, तब भावनाओं को संभालना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई बार फिर मन में ये संशय या कभी शक जो होते हैं, वो रिश्तों
1: हाँ
0: को
1: आ
0: तोड़
1: जाते हैं।
0: देते हैं।
1: हाँ
0: इसलिए अगर भरोसा करें तो संशय कभी ना करें।
1: बिल्कुल, कई बार तो भरोसा टूटने के लिए जो हम बहुत ज्यादा शक करते हैं ना किसी पर, ये भी वजह बन जाता है।
0: और किसी का विश्वास शायद हम आसानी से जीत भी लें, लेकिन मुश्किल है उस विश्वास को बरकरार रखना, हमेशा उसे निभाना।
1: तो बिल्कुल हमारे जो सुनने वाले हैं उन्हें भी भरोसा है कि हम गीत भी सुनाएंगे, उनके संदेश भी पढ़ेंगे। तो गीत सुन लेते हैं, उसके बाद में हमारे श्रोता इस बारे में क्या कहते हैं ये भी जानेंगे।
0: और ये भरोसा तो हम बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे।
1: हाँ

0: भाई श्रोताओं का भरोसे पर जो उन्होंने लिखा है, बड़े अच्छे अच्छे संदेश हमें मिले हैं। हमारे श्रोता का लिखना है कि भरोसा रिश्तों की सबसे मजबूत नींव है। अपने शब्दों को निभाएं, सच बोलें और मुश्किल समय में साथ दें। याद रखिए, भरोसा बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए ईमानदारी और अच्छे व्यवहार की जरूरत होती है। बहुत सही बात है,
1: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश आया है, ये कहता है कि भरोसा करना और भरोसेमंद बनना किसी भी मजबूत और अच्छे रिश्ते की नींव है, यानी एक सिक्के के दो पहलू जैसा होना। हमेशा सत्य के साथ चलिए, सच का साथ दें, जो बात या वादा किया हो उसे निभाना पड़ेगा। और किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले सोच विचारने का कि समय थोड़ा ले लीजिए और ये जान लीजिए कि वो आपके लिए उचित है या नहीं।
0: और जो इन्होंने लिखा ना कि वादा निभाना चाहिए, तो या तो आप वादा कीजिए ही मत, और अगर आपने कर दिया है तो फिर कोशिश कीजिए कि वो वादा टूटे ना, क्योंकि उम्मीद जब टूट जाती है तो वाकई दुख पहुंचता है।
1: बिल्कुल। और भरोसा जब एक बार टूट जाता है तो वो उसको क्षण भर में भरोसा टूट जाता है, लेकिन बनाने के लिए सारी जिंदगी लग जाती
0: और
1: है।
0: उस व्यक्ति पर दोबारा भरोसा करने के लिए शायद, मैं तो कहूँ कई बार होता ही नहीं है, लेकिन अगर हो भी तो उसके लिए बहुत बहुत बहुत समय लगता है। तो ऐसा काम ही नहीं करें हम कि ऐसी नौबत आ जाए। अगले संदेश में हमारे श्रोता ने एक अच्छी सी बात लिखी है कि अपनों पर भरोसा रखना चाहिए, तो अपने तो आखिर अपने होते ही हैं, अपनों का भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए। और खुद का भी व्यवहार दूसरों से ऐसा होना चाहिए कि वो हमेशा विश्वास पात्र बना रहे।
1: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमें भरोसा है विविध भारती पर, क्योंकि वो बहुत भरोसेमंद है। समय पर उठाता है, सिखाता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है। इसे शब्दों में नहीं बल्कि अपने व्यवहार से कमाया जाता है। भरोसा करिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है भरोसेमंद बनिए। भरोसा दिया भी जा सकता है, लेकिन भरोसेमंद बनने का सम्मान केवल कर्मों से मिलता है।
0: क्या बात है, चलिए भी गीत सुन ले।
1: चलिए

0: हम बात कर रहे थे चंचल
1: भरोसे
0: बहुत
1: की।
0: भरोसे की, और बहुत सारे संदेश आए हैं आगे। उसमें ये लिखा है एक हमारे एक श्रोता ने कि तोड़कर जोड़ लो हर चीज दुनिया की, सब कुछ काबिले मरम्मत है एतबार के सिवा।
1: क्या बात है।
0: और एक और संदेश कुछ ऐसे शायराना अंदाज में है कि रिश्ते दिल टूटने से नहीं, भरोसा टूटने पर बिखेरते हैं।
1: बहुत कहते हैं ना कि छोटे में इन्होंने बहुत बड़ी बात लिखी है।
0: बिल्कुल।
1: और एक और बड़ा अच्छा संदेश है, इसमें लिखा गया है कि कोर्स की किताब में सुदर्शन द्वारा रचित कहानी हार की जीत पड़ी थी, जो हमें सिखाती है धोखाधड़ी से भले ही क्षणिक जीत मिल जाए, लेकिन अंततः इंसान इंसानियत और सच्चाई की ही जीत होती है। कहानी में डाकू खड़ग सिंह बाबा भारती के घोड़े रोजी बनकर हत्या लेता है, तो बाबा भारती कहते हैं कि तुम ये घोड़े को ले जाओ, पर ये बात किसी को बताना मत। लोगों को गरीब बेसहारा लाचारों पर से भरोसा उठ जाएगा और कोई कभी किसी की मदद नहीं करेगा। ये कहानी सबने पढ़ी होगी और वाकई में बहुत अच्छा संदेश देती है ये कहानी।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और हमारा संदेश ये आया है, ये कहता है कि भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होता है। दूसरों पर भरोसा करना जितना आवश्यक है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्वयं को भरोसेमंद बनाना है। जब हम

0: हर परिस्थिति में अपने दायित्व निभाते हैं और लोगों की उम्मीद पर खरे उतरते हैं, तभी लोग निसंकोच हम पर विश्वास करते हैं। और इसलिए कहते हैं कि हम केवल दूसरों से भरोसे की अपेक्षा न करें, बल्कि स्वयं ऐसे इंसान बने जिस पर हर कोई हम पर विश्वास कर सके।
1: इसी तरह से एक और संदेश है, इसने हमारे श्रोता का कहना है कि आज सुबह मेरा रेडियो खराब हो गया था, तो रेडियो सुनना मेरे लिए बड़ा जरूरी था, पर सुबह एक व्यक्ति दुकान पर आया जो रेडियो मरम्मत करना जानता था। वो कोई सामान लेने आया था, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आज मेरा रेडियो नहीं बज रहा है, तो उसने मुझे बड़ा पक्का विश्वास दिलाया कि मैं एक घंटे के बाद आ रहा हूँ और सही कर दूंगा। पर ना तो वो आया और अब उनका फोन भी नहीं लग रहा है। तो मेरा तो उस पर पक्का विश्वास था, लेकिन उसने भरोसा तोड़ दिया। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक उत्सुकता जागी कि इनका अगर रेडियो नहीं बज रहा था तो इन्होंने ये नहीं बताया कि अब किस माध्यम से इन्होंने रेडियो कार्यक्रम सुना और ये संदेश भी लिख पाए।
0: तो ये जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है और हम ये उत्सुकता हमारी अगर पूर्ण हो जाए तो क्या ही बात है।
1: और बरसात की जब बात करते हैं तो हमें खुद पर ये भरोसा रखना होगा कि कोई और मदद करे ना करे, हम अगर अपनी मदद करेंगे तो जो बिजली से होने वाले नुकसान है, खासतौर पर बारिश में बिजली हमें बड़ा नुकसान पहुंचा देती है, उससे हम बच सकते हैं। तो
0: बिल्कुल, एक संदेश में बहुत सारे संदेश आए हैं बिजली को लेकर के। तो ये कहता है एक संदेश कि बिजली में बारिश में बिजली से सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि लगभग ये देखने में आता है कि बिजली या तो किसी पेड़ पर गिरती है या पशुओं पर भी गिर जाया करती है। पहले के समय में यह धारणा रही थी कि कांसे के बर्तनों में ज्यादा गिरती है, पर यह एक पुरानी धारणा है। कुछ लोग आजकल ऐसी एक धारणा रही है कि बरसात होने के समय कई रिश्तेदारों को एक जगह नहीं रहना चाहिए, कुछ इस तरह की बातें बोलते हैं। लेकिन वो सब चीज़ों को अलग छोड़ कर के ये देखना बहुत ज़रूरी कि कहीं कहीं आग के पत्ते कुछ घरों में रखते हैं वर्षा के दिनों में, ताकि बिजली गिरने का बचाव हो सके। लेकिन हमारी ये श्रोता कहती है ये सारी पुरानी बातें हैं। और इसी तरह से हमारे एक और संदेश आया है, ये संदेश कहता है कि बारिश के मौसम में गीले हाथ से स्विच को न छुएं, टूटे हुए तारों से दूर रहें, यदि टूटे हुए तार आपके घर के नज़दीक पाए जाएं तो बिजली विभाग को तुरंत सूचित करें, और बारिश में भारी आंधी तूफान के दौरान संवेदनशील उपकरणों को तुरंत अनस्विच कर दें यानी बंद कर दें, और पालतू जानवर अगर आपके घर में है तो बिजली के खंभों से या स्टे वायर से उनको बांध के ना बांधें। यदि आप रेलवे या मेट्रो में सफर करने जा रहे हैं तो प्लेटफॉर्म पर फिसल न जाए इसका ख्याल रखें, बिजली के खंभे से दूरी बनाकर रखें, कंपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़े खड़े कभी भी सफर ना करें।
1: और घर में जो अर्थिंग के तार होते हैं, कई बार देखते हैं हम तीन तार होते हैं,
0: हाँ बिल्कुल,
1: नेगेटिव पॉजिटिव और एक अर्थिंग का तार होता है, तो अर्थिंग का तार जरूर होना चाहिए आपके घर में, और उन वायर्स को खुला ना छोड़ें ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए। इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दिनों में दीवारें गीली होती हैं और कई बार हम खुद भी भीगे हुए होते हैं, गीली जमीन पर खड़े हैं, स्विच केवल ऑन करने जाते हैं तब भी झटका सा लग जाता है, तो इसलिए थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है। एक संदेश में लिखा है कि बरसात में बिजली से बचने के लिए खुले तारों, खंभों और पानी से रास्तों से दूर रहें, गिरे हुए तारों के पास बिल्कुल ना जाएं, बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर और मेटल या ग्रिल की बैरिकेड को ना छुएं, रास्ते में टूटे हुए तारों को कम से कम 10 से 15 फीट की दूरी पर रहें, जलभराव वाले रास्तों पर ना चलें क्योंकि इनमें करंट आ सकता है। इसी तरह की बहुत सारी बातें हैं, और अब हम एक गीत सुन लेते हैं।
0: चलिए।

0: और हमारे बहुत श्रोताओं के बहुत सारे संदेश आ रहे हैं जिसमें सरसों का साग बनाने की विधि है, तो इसके लिए सामग्री कुछ इस प्रकार बताई गई है। हरी भाजियां, सरसों का साग एक गड्ढी, पालक एक गड्ढी, बथुआ एक गड्ढी, मेथी एक गड्ढी, मूली के पत्ते 4 से 5 टुकड़े लेने हैं। और अन्य सब्जियां भी आप ले सकते हैं, इसमें मूली, छोटा सा शलगम, फूल गोभी के डंठल और कुछ मसाले लेने हैं। इसमें 2 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है, 6-7 लहसुन की कलियां लेनी है, हरी मिर्च 4 से 5 लेनी है, नमक स्वाद अनुसार लेना है, और थोड़ा सा इसको बाइंडिंग के लिए मक्के का आटा डालना है, वो 2 से 3 चम्मच होगा। तड़के के लिए 1 बड़ा चम्मच घी, आधी छोटी चम्मच हींग, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा और सूखी लाल मिर्च 2 से 3, और परोसने के लिए थोड़ा सा सफेद मक्खन। और इसे बनाना कैसे है?
1: सभी भाजियों और सब्जियों को 3-4 बार पानी से अच्छे से धो लें। इसके बाद इन्हें बारीक बारीक काट कर कुकर में इन सबको नमक और थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची डालकर 2-3 सीटी ले लें मध्यम आंच पर, और कुकर का जब प्रेशर खत्म हो जाए तो सब्जियों को ठंडा होने दें। अब मथनी के मदद से आप इसको अच्छी तरह से घोट लें, और घोटे हुए साग में मक्के का आटा मिलाएं। इसे धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक लगातार पकाते रहें ताकि साग अच्छे से गाढ़ा हो जाए, मक्के के आटे का कच्चापन भी दूर हो जाएगा। अब एक कढ़ाई में घी गरम करें, इससे इसमें आप हींग, राई, जीरा, सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाएं, बचा हुआ बारीक कटा अदरक और लहसुन डालकर सुनहरा होने तक तड़के में तैयार किया हुआ साग डालें, और 2 मिनट के लिए और आप भी धीमी आंच में पका लीजिए ताकि मसालों की खुशबू साग में अच्छे से उसमें समा जाए।
0: जी, और बिल्कुल बस इसे गर्मा गर्म परोसिए तो जो खाने वालों का मन है वो भी प्रसन्न हो जाएगा। साथ में मक्के की रोटी भी परोसनी है, उसे बताने का तरीका जो बताया गया है, ये पीले मक्के के आटे से बनी हुई एक चपटी पारंपरिक रोटी है, और इसे थपथपाकर बनाया जाए तो ज्यादा अच्छी बनती है, ऐसा हमारे श्रोता का कहना है। और परोसने के तरीके में इन्होंने लिखा है कि थाली को अध पके गुड़, हरी मिर्च, सिरके वाले प्याज और सफेद मक्खन के साथ गर्मा गर्म परोसा जाता है। और बहुत सारे लोग, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री आटा होता है, तो अब अगर आप गर्म पानी में बनाते हैं तो इसे बेलना बड़ा आसान
1: हो जाता है, और अगर आप बेल ना पाए तो हाथ से छोटी छोटी थपके करके छोटी साइज में भी बनाएंगे तो भी बन जाता है।
0: और छोले भटूरे में हम काबुली चने का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन छोले कुलचे जब बनाते हैं तो सफेद मटर से वो छोले बनाए जाते हैं, जिन्हें छोले कहा जाता है। और पंजाब के बहुत सारे हिस्से में मैदे के जो कुलचे बनाए जाते हैं वो तंदूर में बनाए जाते हैं, लेकिन दिल्ली की तरफ हम जाते हैं तो वो जिस तरह से पिज्जा का बेस हमने देखा है ना, उस तरह के ब्रेड की कुछ शेप में होता है,
1: बिल्कुल
0: उन्हें कुलचे कहा जाता है जो तैयार मिल जाते हैं बाजार में। तो इस तरह से आप छोले कुलचे भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। और अब चलते चलते

0: हम माफी चाहेंगे, आज समय कम होने के कारण ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुना सके हैं। चलते चलते आपसे विदा लेते समय बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। लेते हैं विदा चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी का। नमस्कार।

0: ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: प्रोग्राम पिटारा के प्रायोजक AISSMS पुणे।
2: अपनी सपनों को देनी है सही उड़ान और करियर बनाना है शानदार, तो कदम बढ़ाइए AISSMS पुणे की ओर। 100 वर्षों से अधिक की शैक्षणिक परंपरा के साथ AISSMS साकार कर रहा है देश भर के विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य। इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या फार्मेसी, MBA हो या होटल मैनेजमेंट, साथ ही पॉलिटेक्निक, ITI, BBA या स्कूल एजुकेशन, हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और करियर के बेहतरीन मौके यहाँ मिलते हैं। सावित्रीबाई फूले पुणे विद्यापीठ द्वारा लगातार 3 वर्षों तक बेस्ट कॉलेज अवार्ड से सम्मानित संस्थाएं, प्रैक्टिकल लर्निंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर, आधुनिक लैब्स, मजबूत प्लेसमेंट्स और 3 लाख से अधिक एलुमनाई नेटवर्क के विश्वास से भरा हुआ NAC A+ और MBA मान्यता प्राप्त संस्थाएं और पुणे शहर की मध्य में मेट्रो कनेक्टेड कैंपस। तो देर किस बात की, एडमिशन्स के लिए आज ही 8496045045 नंबर पर संपर्क करें या विजिट करें www.aissms.org।
3: सेहतनामा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत।
4: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष को और आज आंखों के बारे में बहुत विस्तार से हम बात करने वाले हैं और साथ में इन बातों के बीच होंगे कुछ दिलचस्प गाने। स्वागत करते हैं डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष का।
5: नमस्कार।
4: नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है विविध भारती के स्टूडियो में आके, क्योंकि

0: थिएटर और रेडियो का स्टूडियो दो अलग अलग जगह।
1: बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार पहले भी आपके स्टूडियोज में चर्च गेट पे गया था,
0: जी जी
1: काफी साल पहले, वो लाइव रिकॉर्डिंग थी। लेकिन जो आपका यहाँ का स्टूडियो है और जो आपने मुझे चीजें जहाँ पे बताई हैं, गजब है। ऐसे लगता है कि एक पुराने जमाने में हम गए हैं, गुजरे हैं। जो आपने रिकॉर्ड्स बताए हैं, जो लोग यहाँ पे आके गए हैं, जिन्होंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग किए हैं, जो आर्टिस्ट जो हमने अपने मुझे सब बताए, मैं सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ शायद कोई सौभाग्य है पिछले जन्म का जो मैं यहाँ आया हूँ। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद, मुझे संगीत में बहुत ही रुचि है।
0: जी
1: तो अगर मैं ऐसी जगह पे सिर्फ आ जाऊं और
0: जी
1: देखूं तो भी काफी है। अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो इससे और अच्छी शुभ चीज मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता।
0: क्या
1: तो
0: बात है
1: शुक्रिया एक बार
0: जी
1: और।
0: डॉक्टर साहब, ये जो डॉक्टरी का सफर है, ये किस तरह शुरू हुआ था? बचपन से ही आपको दिलचस्पी थी? परिवार में डॉक्टर थे?
1: नहीं, हमारे परिवार में मेरे पिताजी माताजी दोनों पीएचडी थे, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं था। मेरे पिताजी को एक जुनून था मुझे डॉक्टर बनाने के लिए। मुझे एक्चुअली डॉक्टरी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था।
0: ओके
1: मुझे फोटोग्राफी करनी थी एक्चुअली,
0: हाँ
1: और मैंने बीएससी भी लिया था। और 2 साल बीएससी के बाद एक दिन पता चला कि मेरे पिताजी ने मेरी एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवा दी।
0: ओके
1: अच्छा, उस जमाने में ऐसी बात थी कि ऐसे आजकल के जैसे नहीं है कि माता पिता को हम ना बोल सकते थे। दूसरी बात थी, कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो मेडिसिन में एडमिशन हो गई मेरी। लेकिन पहले तो जब मेडिसिन में गया तो यही था कि चलो एक कोर्स है, हमको इसको ख़त्म करना है, वरना ना करे तो 12th स्टैंडर्ड पास हो, आगे आपको नौकरी क्या मिलेगी।
0: बिल्कुल
1: तो यही था कि जब से मेडिसिन में गया, और मैं ऑनेस्टली कहता हूँ पहले साल तो काफ़ी मुश्किल होते हैं सभी डॉक्टर्स के लिए,
0: जी
1: क्योंकि
0: जी
1: एनवायरनमेंट बहुत अलग रहता है। कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता।
0: जी
1: पहले
0: जी
1: साल में जब आप एनाटॉमी में जाते हो और आपको एक साल लिटरली कैडेवर या डेड बॉडी के साथ आपको डिसेक्शन करनी होती है, वो आपको बहुत ही, इट्स अ डिफरेंट ट्रेनिंग, और आपको वो अलग तरह के इंसान बना देता है। क्योंकि आप इंसानों के साथ बाद में, आप उनकी ज़िंदगी के साथ या किसी भी चीज़, उनकी बीमारियों के साथ आप काम करते हैं। एक टाइम अंदर उसके पेशे में गया तो बहुत पसंद आया, और अभी तो क्या कहते हैं, अभी 40 साल के ऊपर हो गए, और आँख का डॉक्टर बनने के बाद तो 35 साल हो गए, खुद की
0: जी
1: प्रैक्टिस 30 साल हो गए, तो ऑब्वियसली बेहद पसंद है, इसीलिए हूँ अभी तक इसके अंदर।
0: जी ये जो आंखों के डॉक्टर होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट।
1: जो टिपिकल टर्म है, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है,
0: जी
1: ऑफ्थेल यानी आई, तो आई सर्जन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एक ही चीज है।
0: जी इस समय में सबसे बड़ी आंख की समस्या क्या चल रही है?
1: मेरे हिसाब से सबसे बड़ी आंख की समस्या जो हम आजकल देख रहे हैं, जो पिछले 10 साल में और पिछले 5 7 8 साल कोविड के बाद सबसे ज्यादा हुई है, वो आंख का स्ट्रेन, आई स्ट्रेन जो हम कहते हैं,
0: जी बिल्कुल
1: जिसे इवन पहले कंप्यूटर विजुअल सिंड्रोम कहते थे, लेकिन अभी बच्चों में भी बहुत ज्यादा देख रहे हैं हम। दूसरी बात है, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज हो गए हैं, आप अगर पूछें कि उनको, बच्चों को आजकल बाहर जाके खेलने के लिए ना जगह है ना खेलते हैं, तो उनकी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है। जब घर आते हैं तो या तो टीवी है या मोबाइल है या पैड है, तो उसके वजह से आंखों की बीमारियां जो है रिलेटेड टू आंख की थकावट या आंख की स्ट्रेन, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरी बात है कि हम छोटे बच्चों में आजकल चश्मे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इसी के वजह से। पहले ज़माने में जब हम बड़े हो रहे थे तो ज़्यादातर बाहर की एक्टिविटी थी, आँख की एक्टिविटी रीडिंग और राइटिंग थी। टेलीविज़न तो शायद 70s 80s के बाद ही अपने देश में प्रचलित हुआ, तो इतना ज़्यादा आँख का काम नहीं था। प्लस लोग टाइम पे सोते थे, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती थी। आजकल सोते भी कम हैं, आँख का काम पूरे टाइम कंप्यूटर्स पे रहता है, या जो कंप्यूटर विजुअल सिंड्रोम कहते हैं या आई स्ट्रेन कहते हैं, आँख की थकावट कहते हैं, ये आजकल में सबसे ज़्यादा। पहले तो हम लोग कहते थे कि हाँ स्ट्रेन है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ ये एक बीमारी की तरह और एक लिटरली एपिडेमिक की तरह फैल रहा है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जो आई स्ट्रेन है इसके भी कई प्रकार होते होंगे। एक जो अमूमन डॉक्टरों के पास जाएं जब चश्मा चेक कराने, तो वो कहते हैं आपकी आंखों में ड्राइनेस हो रही है, क्या
1: जी
0: आप कंप्यूटर पर ज्यादा काम करते
1: जी
0: हैं?
1: जी
0: ड्राइनेस भी उसका एक रूप है?
1: ड्राइनेस रूप है, इसका एक बहुत सिंपल कारण है कि जब कभी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं या किसी जगह पे हम ज़्यादा ध्यान दे के देखते हैं, तो हमारा ब्लिंकिंग कम हो जाता है। जो आँख हम बंद खुली करते हैं वो कम हो जाता है। नॉर्मली अपने आँख में आंसू का एक पर्दा है जो अपनी आँख को गीला रखता है, और

0: हर टाइम जब अपनी पलक बंद होके खुलती है तो एक नया पर्दा तैयार हो जाता है जो अपनी आंख को नॉट ओनली प्रोटेक्शन करता है, उसको सुरक्षित रखता है, लेकिन उसको गीला भी रखता है, क्योंकि आंख का गीला रहना बहुत जरूरी है, स्पेशली सामने की कांच जो है, जो कॉर्निया है जिसकी वजह से हमको दिखाई देता है, जो कीकी है आंख की या खिड़की है, वो उसको गीला रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप देखें कि अगर आप कंप्यूटर के सामने अगर आप कॉन्स्टेंटली आप बैठें और काम करते रहें तो आपका ब्लिंकिंग कम हो जाता है, जो आंख की पलक खोल बंद होनी है वो कम हो जाती है, और उसके वजह से आपके आंख का पर्दा जो है जल्दी टूटता है और आंख में ऐसे लगता है कि कुछ गया है, कचरा है, हम आंख रब करते हैं और उसके बाद फिर वो ड्राइनेस हो जाती है। तो अगर आप मुझे पूछे इसका इलाज यही है, सबसे कहता हूँ कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारी जगह पे अभी लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स हैं, कि आपको बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है।
1: जी
0: जब आप कंप्यूटर पे देखते हैं या लैपटॉप देखते हैं, एटलीस्ट एक 15-20 मिनट के बाद आँख, एक मिनट के लिए आँख बंद कीजिए।
1: वो कोई फॉर्मूला बताया गया ना?
0: 20-20-20 फॉर्मूला है
1: जी,
0: कौन फॉलो करता है भगवान जाने, कोई अपना घड़ी देख के तो 20 मिनट के बाद नहीं करेगा, लेकिन एक जनरल है कि आप एक घंटे में एक टाइम तो एक 2 मिनट तो ब्रेक ले सकते हो ना।
1: ऑफ कोर्स अगर इच्छा है और अपने प्रति सरोकार है तो ये किया जा सकता है।
0: और दूसरी बात हम देख रहे हैं कि अभी सारे स्क्रीन जो है वो LED है, पहले LCD थे
1: जी,
0: कोई साल पहले ऑलमोस्ट 8-10 साल पहले तक LCD स्क्रीन्स थे, अभी LED स्क्रीन्स आए हैं, और LED स्क्रीन्स जो है उनमें हम ज्यादातर लोगों का ये प्रॉब्लम देख रहे हैं,
1: वो ज्यादा चमकीली होती है,
0: ज्यादा चमकीली रहती है, तो उसका जो ब्राइटनेस रहता है, तो ग्लेयर जो आता है उसके वजह से तकलीफ ज्यादा होती है
1: जी।

0: आंखों की ड्राइनेस के अलावा और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आंखों के स्ट्रेन से जुड़ी हुई हैं, ओवर यूज ऑफ स्क्रीन या एक्सपोजर से जुड़ी हैं?
1: सो ड्राइनेस तो एक है ही, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर दर्द
0: जी,
1: क्योंकि आप एक आसान चीज है कि अपनी आंखें जो है वो दिमाग की खिड़की है, अगर आप आंखें बंद कर दें तो दिमाग को कुछ दिखाई नहीं देता। दिमाग जो चीज है वो 24 घंटे काम करता है, जब हम सोते भी हैं तभी भी अपना दिमाग चल रहा है, आंखें बंद है तो दिमाग चाहता है कि 24 घंटे चले लेकिन आंख थक जाती है। तो इसके वजह से थोड़े टाइम बाद आंखों में जब थकावट ज्यादा हो तो उसके बाद सर में दर्द होने शुरू होता है, क्योंकि आंख के जो अंदर के जो स्नायु है, जो मसल्स है, वो थक जाते हैं और वो थकने के बाद फिर वो सर दर्द देने चालू होते हैं। सो सर दर्द भी एक है, और हमारे पास पेशेंट आप विश्वास नहीं करेंगे कि सीटी स्कैन एमआरआई करके आते हैं सर दर्द के लिए।
0: अच्छा।
1: और देखा जाता है कि तो छोटी सी या तो चश्मा है, हम अभी काफी लोगों को प्रोटेक्टिव ग्लासेस देते हैं कंप्यूटर्स के लिए भी, बच्चों में भी देते हैं जिससे आंख के मसल्स थोड़े रिलैक्स हो जाएं।
0: जी,
1: तो यही है कि हेडेक्स जो है वो बहुत कॉमन है, इरिटेशन आंख में, खुजली आते रहती है आंख में, क्योंकि आंख थक जाती है तो खुजली आती है। और हम लोग ये हेडेक्स को भी, जो सर में दर्द है, इसको ज्यादातर 4 PM हेडेक्स कहते हैं। जब हम पेशेंट से पूछते हैं कब सर में दर्द हो रहा है आपको, तो एटलीस्ट 90% बोलेंगे जिनको इसके वजह से तकलीफ है, बोलेंगे 4:35 के आसपास होता है। तो 4 बजे का क्या रहस्य है? क्योंकि सुबह के टाइम हमारी नींद हुई रहती है तो आंखें फ्रेश रहती है, तो शाम तक वो थक जाती हैं।
0: ओके,
1: अब समझे, जैसे अगर आपको चलना हो पूरे दिन, अब शुरुआत तो कर लेंगे, आराम से चलते जाएंगे, लेकिन
0: सस्टेन करना मुश्किल होता
1: है। तो लोग भूल जाते हैं कि आंखें भी शरीर का हिस्सा है, वो भी थक जाती है। जी,
0: क्या बात है। तो ये बहुत जरूरी बात आपने कही कि जब हम स्क्रीन के सामने, क्योंकि अब स्क्रीन के बिना जीवन गुजारना मुश्किल है, हमें ये मान लेना चाहिए कि स्क्रीन से छुटकारा तो अभी नहीं होगा, तो उसके साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। ड्राइनेस ऑफ आई की हमने बात की और आपने कहा कि आंख के स्ट्रेन होती है, सिर दर्द होता है, ये कुछ चीजें आई। एक चीज जो मैंने कुछ लोगों में देखी है वो आंखों में कोई प्रेशर होता है, जिसके लिए कुछ लिखने पढ़ने वाले लोग जो काम करते हैं उनकी आंखों में प्रेशर हो जाता है।
1: नहीं, आंखों में, सभी के आंख में प्रेशर है।
0: जी जी,
1: अगर आपके खुद के आंख को आप हाथ लगाए तो यू विल फील, जो शेप जो रहता है
0: जी,
1: वो आंख के प्रेशर के वजह से ही रहता है। ये आंख के अंदर 3-4 लेयर्स पानी के हैं, बाहर जैसे मैंने कहा आंसू का लेयर है, फिर अंदर का सेकंड लेयर जो रहता है, जो अपने कांच के पीछे रहता है, उसको एक्वियस बोलते हैं।
0: जी जी,
1: वो अपने आंख का प्रेशर मेंटेन करता है, वो एक जगह तैयार होता है और एक जगह से बाहर निकलता है। वो एग्जैक्टली अपने ब्लड प्रेशर जैसे है, जैसे अपना ब्लड प्रेशर यूजुअली 80-120 हम नॉर्मल सोचते हैं, आंखों का वो 12-18 या 20 नॉर्मल रहते हैं। उसके जैसे हम बीपी मेजर करते हैं वैसे आंख का प्रेशर भी मेजर किया जाता है। जिन लोगों का आंख का प्रेशर बढ़ता है वो एक स्पेसिफिक बीमारी में बढ़ता है, जिसको ग्लॉकोमा कहते हैं।
0: जी जी,
1: ग्लॉकोमा या कांच बिंदु जिसको कहा जाता है, काफी प्रकार रहते हैं उसके अंदर, लेकिन वो एक अलग सी बीमारी है।
0: अच्छा,
1: हमारे हिसाब से तो आंख के स्ट्रेन के वजह से आंख के प्रेशर बढ़ने का कोई कनेक्शन नहीं है।
0: जी,
1: वो एक अलग सी बीमारी है, वो इनहेरिटेड बीमारी है, ज्यादातर माँ बाप से आती है। जिस तरह से आपकी आंखें हैं उनका शेप साइज उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, और कोई बीमारी हो जैसे डायबिटीज वगैरह उसके वजह से भी वो हो सकती है। तो वो ज़्यादातर 40 के बाद ही हम देखते हैं पेशेंट में, ऐसे नहीं है, बच्चों में, पैदाइशी बच्चों में भी है, लेकिन वो बहुत रेयर रहता है। ज़्यादातर जो है वो 40 के बाद हम लोग हर पेशेंट का आँख का प्रेशर चेक करते हैं। जैसे आपके डॉक्टर के पास जाइए तो 40 के बाद आपका बीपी भी चेक करेंगे, अब हमारे पास आइए आपका आँख का प्रेशर हम चेक करेंगे।
0: अच्छा अच्छा,
1: क्योंकि उस बीमारी में, वो आँख में सबसे खतरनाक बीमारी है।
0: जी जी,
1: ग्लोकोमा जो है, मैं थोड़ा डाइग्रेस करता हूँ आपके सवाल से, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ग्लोकोमा जो बीमारी है वो आंख में सबसे खतरनाक बीमारी है। उसमें क्या होता है, आंख का प्रेशर बढ़ते जाता है और पेशेंट को पता नहीं चलता। ब्लड प्रेशर में आपको सरदर्द होता है, चक्कर आती है अगर आपका प्रेशर 200 के ऊपर जाए, आंख का प्रेशर जब तक कि 30 के ऊपर नहीं जाता कुछ नहीं पता चलता, लेकिन जो नस है वो धीरे धीरे करके खत्म होती है।
0: ओ गॉड,
1: तो जी, क्योंकि आंख का जो एक सिंपल चीज है, जो अपनी जो नस है वो आंख का हिस्सा नहीं है।

0: दिमाग का हिस्सा है, दिमाग आंख में खुलता है, ऑप्टिक नर्व आती है, फिर वो रेटिना रहता है, तो वहां पे लाइट पड़ती है, वहां से दिमाग तक लाइट जाती है। तो अगर आप सोचे कि आपकी उंगली है, आपने उसको ऐसे कस के पकड़ लिया, तो क्या होगा? धीरे धीरे करके उसका खून बंद हो जाएगा,
1: बिल्कुल,
0: फिर नस सूख जाएगी, फिर जो उंगली है वो खत्म हो जाएगी। ग्लोकोमा एकदम सरल भाषा में यही है,
1: ओके,
0: कि आंख का प्रेशर जो है वो बढ़ते रहता है, पेशेंट को पता नहीं चलता, धीरे धीरे करके पीछे की नस खत्म हो जाती है,
1: सूख जाती है,
0: सूख जाती है, और उसका कोई इलाज नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर पीछे की नस सूख जाए तो उसके लिए कहीं पे भी इलाज नहीं है।
1: तो रोशनी गई,
0: रोशनी गई।
1: एक उम्र के बाद
0: जी,
1: चूंकि पूरे देश और दुनिया में अलग अलग उम्र के अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं
0: जी,
1: ये बहुत जरूरी बात है कि एक उम्र के बाद कैसे और किस तरह की जांच कराएं कि ये स्थिति लोगों के साथ ना आए।
0: अगर एक चीज है कि आपके फैमिली में किसी को ग्लोकोमा है या कांच बिंदु की हिस्ट्री है, तो आप अवश्य इवन 30-35 के बाद जांच कराए।
1: उसका फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होनी चाहिए?
0: साल में एक टाइम
1: जी,
0: बेसिक जो रहते हैं वो टेस्ट हम लोग कर लेते हैं, अगर चेकिंग में ही थोड़ा पता चल जाता है ये शुरुआत हो रही है नहीं। जैसे अगर आप, मैं आपसे उल्टा सवाल पूछता हूँ, आपके माँ बाप को डायबिटीज है तो आप चेक करवाएंगे ना?
1: जी बिल्कुल,
0: ये,
1: बिल्कुल,
0: ये सेम चीज है,
1: कॉमन सेंस,
0: कॉमन सेंस है,
1: 40 हमें दिमाग में बिठा लेना चाहिए।
0: हाँ, 40 के बाद तो करना रेगुलर चेकअप्स में हो ही जाता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि अगर माँ बाप को है तो आपको आनी ही है।
1: हाँ, पर इसकी संभावनाएं हैं,
0: संभावना 50% है, माता के साइड से या पिता के साइड से।
1: जी जी,
0: सेम डायबिटीज में है। अगर आपके माता पिता को डायबिटीज है तो ऐसे नहीं है कि आपको होगा, क्योंकि जेनेटिक्स कहाँ पे काम करती है ये किसी को भी नहीं पता।
1: जी,
0: हमारे पास पेशेंट आके बोलते हैं माता पिता को भी डायबिटीज नहीं, मुझे कहाँ से आ गया? जेनेटिक्स भगवान जाने कहाँ से आ गया।
1: सही बात,
0: कहीं मामा मामी दादा दादी नाना नानी कहीं से भी आ सकते हैं,
1: पूरे फैमिली ट्री।
0: तो बीमारियां जो है वो जो जेनेटिकली आती है, हमको विरासत में बीमारियां तो ज्यादातर आती है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो भी आती हैं अगर उसका जांच किया जाए और इजीली कंट्रोल हो सकती हैं, और उनको हम पहले से अगर पता चले कि पेशेंट है, जिंदगी भर मेंटेन किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने देखे हैं पेशेंट जिनको हम दवाई पे रखे हैं या एक्सट्रीम चीज में जिनकी शस्त्रक्रिया हुई है ग्लोकोमा के लिए, बिल्कुल ठीक है, रेगुलर चेकअप करते हैं, साल में एक टाइम आते हैं, 6 महीने 1 साल, उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन अपनी आंखों के लिए साल में एक टाइम तो एक दो घंटे निकालिए। सिंपल,
1: बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है। तो एक उम्र के बाद सभी लोगों को जिनके माता पिता को ग्लूकोमा की समस्या है वो भी जांच कराएं, और जिनको नहीं है वो भी
0: जांच
1: के बाद जरूरी तौर पर ये साल में एक बार ये जांच करा लें, आंखों का प्रेशर वगैरह, जब भी आप अपने आंखों का नंबर चेक कराने जाते हैं। यहां एक दिलचस्प बात ये है कि आज ही किसी ने कहा, बहुत ही मजेदार बात है, कि वो जो चश्मा बनाता है क्या वो आंखें चेक करता है?
0: बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा
1: जी।
0: देखिए क्या है कि जब से आंखों के डॉक्टर आए हैं उन्होंने खुद से कभी चश्मा नहीं बनाया
1: जी।
0: डॉक्टर जो पहले जो थे वो अपनी दवाई घुट के देते थे, आपको अगर याद रहेगा हमारे जनरेशन में, तो हम भी सीखे हैं कैसे दवाई बना के पूड़ी में पेशेंट को हम लोग देते थे, अभी तो सारे प्रिस्क्रिप्शंस आ गए हैं
1: जी जी।
0: तो जब कभी आप कह सकते हैं जो चश्मे की दुकान है वो केमिस्ट है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आप समझे, जो प्रिस्क्रिप्शन हम देते हैं, ऐसे नहीं है कि उनको ट्रेनिंग नहीं है
1: जी,
0: लेकिन हम जो डॉक्टर आपको जो चेक करके प्रिस्क्रिप्शन देता है वो प्रिस्क्रिप्शन आप वहां पे लेके जा रहे हैं चश्मा बनवाने के लिए
1: जी।
0: अभी काफी टाइम हम देखते हैं कि मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन दी है पेशेंट को
1: जी,
0: पेशेंट चश्मा बनवाने गया है और प्रिस्क्रिप्शन बदली होके पेशेंट मेरे पास दोबारा आया है और मुझसे कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने वहां पे गया चश्मे वाले की दुकान में, कहा हम मुफ्त का आपके आंख का चेकअप कर रहे हैं नंबर का, और उसके बाद उन्होंने मेरी प्रिस्क्रिप्शन चेंज कर दी, अभी मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे दिखाई नहीं देता। अब मुझे बताइए इसमें गलती किसकी है?
1: पेशेंट की, बाकायदा कि वो एक टेक्नीशियन से डॉक्टर का काम ले रहा है।
0: एक बात, मैं एक सरल प्रश्न हर पेशेंट से पूछना हूं कि अगर मैंने आपको सपोज एक दवाई लिख के दी, सिंपल चीज है, कोई आपको बुखार आ गया और मैंने एक एंटीबायोटिक आपको लिख के दिया और आप केमिस्ट के पास गए, उसने कहा नहीं नहीं ये नहीं है, ये गलत है, मैं आपको दूसरी देता हूं, क्या आप वो वाली एंटीबायोटिक एक्सेप्ट करेंगे उस केमिस्ट से?
1: नहीं, बल्कि डॉक्टर को अगर किसी तरह का संशय है तो फोन करेंगे।
0: एग्जैक्टली
1: ये दे रहा है, मैं लूं कि नहीं लूं।
0: एग्जैक्टली, तो अगर ये ऐसे है तो आंख के बारे में

0: भी वही है, आजकल इतने जो चेन्स वगैरह जो निकले हैं,
1: जी
0: मुझे कोई विपत्ति नहीं है उसके अंदर। हाँ, वो काफी, वो वहां पे जो काम करते हैं वो भी ट्रेंड है, लेकिन
1: डॉक्टर नहीं है।
0: डॉक्टर नहीं है जी। ऑप्टोमेट्री एक अलग कोर्स है। हाँ, वो पैरामेडिकल कोर्स है, आई एम नॉट बिलिटलिंग इट। वो बराबर से उनको पढ़ाया जाता है, मैंने खुद ऑप्टोमेट्री कॉलेज में सिखाया है काफी साल पहले, लेकिन वो डॉक्टरी नहीं है। जब हम आपके आपका जो चेकअप करते हैं उसके अंदर सिर्फ चश्मा नहीं देते, आँख की पूरी जांच होती है, आगे से पीछे तक पूरी जांच होती है। चश्मा उसका एक सिर्फ भाग है,
1: जी
0: लेकिन अभी शॉर्टकट की दुनिया है, सब चलता है। पहले भी ठीक था, लेकिन आजकल जिस तरह आंखों का उपयोग और दुरुपयोग हो गया है, थोड़ी तो जांच पड़ताल करना और थोड़ा केयरफुल रहना बहुत ये है। अगर आपका नंबर है, आप भी चश्मा पहनते हैं, मैं भी पहनता हूँ, ओके, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, अगर आपको गलत प्रिस्क्रिप्शन मिले और अगर आप आपका काम बराबर कर ना पाए, तो उसके अंदर तकलीफ आपको भी होगी और जहाँ पे आप काम करते हैं उनको भी होगी।
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: मेरे हिसाब से तो आँख का नंबर, जो चश्मे का नंबर है, वो परफेक्ट होने चाहिए।
1: बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये जो एक सामान्य विचार है ना कि डॉक्टर के पास जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी, इस सबसे बचत कर लेते हैं, चश्मे वाले से ही चेक करा लेते हैं।
0: जी
1: ये जो है ये मुसीबत की जड़ है,
0: जी
1: इससे
0: जी जी
1: बचना चाहिए।
0: नहीं, टू ईच देयर ओन। हम सिर्फ कह सकते हैं कि हमें जो सही लगता है वो हम कह सकते हैं, उसके आगे चश्मे में होता है, लेकिन बाकी चीजें तो ऑफकोर्स, बाकी कोई भी आंख की समस्या हो तो आंख के डॉक्टर के पास तो जरूरी आना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, क्योंकि
0: जी
1: जब भी आंखों की जांच कराने जाते हैं, बल्कि ये कहें कि चश्मे की जांच कराने जाते हैं, तो डॉक्टर सिर्फ नंबर चेक नहीं करता,
0: जी
1: और दूसरी तरह की भी जांच होती है। वो दवा डाल के कहते हैं कि प्रेशर चेक कर रहे हैं,
0: हाँ,
1: वो बिठाया जाता है बहुत देर
0: देखिए,
1: तक।
0: ये एक साइंस है
1: जी
0: जो आँख का नंबर चेक करते हैं। दूसरी बात है कि जब कभी पेशेंट आता है तो उसे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं कि आप,
1: जी
0: और स्पेशली आजकल, पहले मैं कहता था जब मैंने शुरू किया था तो शायद ये सवाल भी नहीं पूछते थे इतना। ज़्यादातर लोग आते थे, दूर का चश्मा नहीं है, या दूर का दिखाई नहीं देता, आप चश्मा दो, या तो रीडिंग के लिए 40 के बाद जो आता है वो चश्मा। अभी वैसे नहीं है, अभी पूछना बहुत ज़रूरी है कि आप काम क्या करते हैं, कोई भी हो। बच्चों में तो हम जानते हैं स्कूल की वजह से, लेकिन 20 के ऊपर अभी सारे बच्चे काम कर रहे हैं, 20 से
1: बिल्कुल
0: लेके 80 तक लोग काम कर रहे हैं अभी। तो जब कभी हमारे पास आते हैं तो सवाल पहले मेरा होता है कि आप काम क्या कर रहे हैं, उसके मुताबिक भी चश्मे का नंबर जो हम लोग काफ़ी टाइम एडजस्ट करके देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप मुझे पूछे नॉर्मल विजन 6x6 या 20x20 है, किसको चाहिए आजकल? आप खेती में काम कर रहे हैं क्या?
1: नहीं
0: शहर में किसको 20x20 परफेक्ट विजन चाहिए, आप बताइए।
1: जी जी बिल्कुल
0: वो पुराना कंसेप्ट है, वो 100 साल पहले का या 50 साल पहले का कंसेप्ट है,
1: जी जी
0: लेकिन
1: जी
0: अभी भी उसी पे अड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि वी हैव टू ऑल्सो इवॉल्व विद टाइम। हम
1: यस
0: चाहते हैं कि स्पेशली आजकल इतना फर्क, जो आपके पहला ही सवाल जो आपने मैंने पूछा था आई स्ट्रेन की वजह से, कि जो भी हमारे पास आ रहे हैं, मेरा पहला प्रश्न यही होता है कि आप काम क्या कर रहे हैं,
1: जी
0: उसके मुताबिक। और अगर हमसे काफी टाइम पूछा जाते हैं, कोई लोग कहते हैं ना, स्पेशली लेडीज कहते हैं हम पे घर पे हैं, तो मैं उनसे वो भी पूछता हूँ घर पे करते क्या है। काफी लेडीज घर पे भी बहुत काम कर रहे हैं, जो यू नो वर्क फ्रॉम होम तो होता ही है, लेकिन कोई सिलाई काम कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, पार्ट टाइम काम कर रहा है। तो ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ गृहिणी, और गृहिणी की भी बहुत
1: जिम्मेदारियां होती हैं।
0: जिम्मेदारी और काम रहते हैं उनका भी। तो क्लियर दृष्टि तो सभी को चाहिए ना, ऐसे नहीं
1: बिल्कुल
0: बोल सकते कि आप घर बैठ रहे तो आपकी क्लियर दृष्टि नहीं होनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: सही है। और डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, उसके
0: जरूर
1: बाद आगे बढ़ते हैं।
0: जरूर,
1: चूंकि बातें आंखों की हो रही हैं, तो गाने भी आंखों के होने
0: अच्छा ओके श्योर
1: चाहिए तो यहाँ गाना सुनते हैं,
0: ओके
1: है
0: जरूर,
1: ना।
0: थैंक यू।
1: आंखों में क्या जी, फिल्म का नाम है
0: अरे वाह,
1: 9-2-11।
0: 9-2-11, बहुत बढ़िया।

0: डॉक्टर साहब, इस समय जब हम बातें कर रहे हैं और बातों का सिलसिला आंखों के स्ट्रेन से शुरू हुआ, हम ग्लूकोमा तक गए और ये बात आई कि कई लोग आंखों का चश्मा बनवाने वाले लोगों से आंखों का चेकअप करा लेते हैं, जो कि गलत है। यहां तक हम आ चुके हैं अलग अलग बातें करते हुए। आपने इस इंटरव्यू की शुरुआत में ये कहा था कि अब छोटे बच्चों में भी बहुत सारी समस्याएं होने लगी हैं, जिसमें स्ट्रेन भी शामिल है। वो बच्चे जो खुद नहीं समझ सकते कि उनको आंखों की समस्या हो रही है, पेरेंट्स को किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए?
1: प्रोग्राम पिटारा के प्रायोजक थे AISSMS पुणे।
2: क्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

उसके वजह से जो बच्चे हमारे पास चेकिंग के लिए आते हैं, स्पेशली शहरों में, और आजकल छोटे छोटे गांव में भी इट हैज़, वो बहुत रेयर हो गया है कि बच्चे को नंबर है और चश्मा नहीं दे रहे हैं. लेकिन एक सीधी चीज़ है, देखिए, देखने के लिए

अगर बच्चा घर में भी टीवी देखना हो, कुछ नज़दीक आ रहा है बहुत, आप उसको बोले नहीं पीछे जाके भाई, तो लेकिन तो भी बच्चा आगे आ रहा है देखने के लिए, तो इसका ये हो सकता है कि उसको पीछे से दिखाई नहीं दे रहा स्पष्ट, या तो जब कभी वो किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा है, किताब बहुत नज़दीक लेके पढ़ रहा है, तो ये एक चीज़ होती है कि उसको जो नॉर्मल जितना अंतर रखने चाहिए वो अंतर पे वो दिखाई नहीं दे रहा बच्चे को, तो बच्चा ज़्यादा नज़दीक ले रहा है। ये दूसरी चीज़ है टीवी के नज़दीक जाना या तो बहुत नज़दीक से लेके पढ़ना। तीसरी चीज़ है काफ़ी टाइम आप देख सकेंगे कि बच्चे की एक आंख थोड़ी देखते टाइम टेढ़ी होने चालू हो जाती है, क्योंकि ये ज़्यादातर होता है अगर दोनों आंख में नंबर में फ़र्क हो तो हमको देखने के लिए दोनों आंख चाहिए, 360 डिग्रीज जो हम कहते हैं इमेज आने के लिए। तो अगर दोनों आंख में नंबर का फर्क हो तो जो दिमाग है उसको वो इमेज उसका स्प्लिट हो जाता है, दो हो जाता है, तो उसको सीधे करने के लिए दिमाग जो है वो एक आंख को अंदर ले लेता है, तो जो हम आंख के टेढ़ापन या स्क्विंट कहते हैं वो है। और अगर नंबर बहुत ज़्यादा हो तो दिमाग कहता है ठीक है।

0: जो नॉर्मल जितना अंतर रखने चाहिए वो अंतर पे वो दिखाई नहीं दे रहा बच्चे को, तो बच्चा ज़्यादा नज़दीक ले रहा है। ये दूसरी चीज़ है, टीवी के नज़दीक जाना या तो बहुत नज़दीक से लेके पढ़ना। तीसरी चीज़ है, काफ़ी टाइम आप देख सकेंगे कि बच्चे की एक आंख थोड़ी देखते टाइम टेढ़ी होने चालू हो जाती है, क्योंकि ये ज़्यादातर होता है अगर दोनों आँख में नंबर में फ़र्क हो तो हमको देखने के लिए दोनों आँख चाहिए, 360 डिग्रीज जो हम कहते हैं इमेज आने के लिए। तो अगर दोनों आँख में नंबर का फ़र्क हो तो जो दिमाग है उसको वो इमेज उसका स्प्लिट हो जाता है, दो हो जाता है, तो उसको सीधे करने के लिए दिमाग जो है वो एक आँख को अंदर ले लेता है, तो जो हम आँख के टेढ़ापन या स्क्विंट कहते हैं वो है। और अगर नंबर बहुत ज़्यादा हो तो दिमाग कहता है ठीक है, इस आँख से देखने में मुझे दिक्कत हो रही है, मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ, तो आँख बाहर निकल जाती है। आपने दोनों देखा रहेगा, बच्चों में एक आंख अंदर आते हुए या एक आंख बाहर जाते हुए।
1: जी।
0: तो ये जो है, अगर माँ बाप को ये दिखाई पड़े तो उनको किसी भी आंख के डॉक्टर को जाके बच्चे का चेकअप करना बहुत ज़रूरी है।
1: जी। और इसके अलावा क्या आंखों की कोई विरूपता होती है जिस पर नजर रखना चाहिए, पैदाइशी कोई दिक्कत है?
0: पैदाइशी दोबारा आजकल चेकअप हो ही जाता है
1: जी।
0: मैटरनिटी के बाद, लेकिन अगर बच्चा फोकस नहीं कर रहा या तो बच्चे की जो प्यूपल रहती है जो कि बीच की किकी रहती है उसमें कोई सफ़ेदी वगैरह उनको दिखाई दे तो पता चले कि आँख में कोई ज़रूर प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो तुरंत उनको जरा भी रुकने नहीं चाहिए।
1: जी, कई बार तिरछी आंखें होती हैं तो उन्हें किस तरह से ठीक किया जा सकता है?
0: वही कह रहा हूँ, तिरछी आंखें जो है जिसको स्क्विंट कहते हैं, जो आपको मैं कह रहा था,
1: जी
0: तिरछी आंखें नंबर के वजह से ही होती है ज़्यादातर, कमज़ोरी के वजह से भी होती है। अगर दोनों आँख में से किसी आँख के मसल्स कमज़ोर हो तो वो आँख बाहर घूम जाती है, तो जिसको हम लोग तिरछी आंखें या स्क्विंट कहते हैं। शुरुआत उसकी चेकिंग से होती है, अगर नंबर हो तो नंबर दिया जाता है, नंबर से करेक्शन होता है, अगर नंबर से भी उसके साथ भी आजकल काफ़ी नए नए ट्रीटमेंट्स आए हैं, ऑनलाइन ट्रीटमेंट्स भी आए हैं जिसके वजह से हम बच्चों को फोकस करने के लिए सिखाते हैं, जैसे कि गेम्स की तरह रहते हैं लेकिन उनको फोकस करने के लिए सिखाते हैं। अगर उससे भी ना हो तो फिर ऑपरेशन करके वो टेढ़ी आँख को सीधी की जा सकती है,
1: जी
0: जो स्क्विंट सर्जरी कहते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, चूंकि बच्चों की बातें चल रही हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, हमने ये तो देखा कि आंखों पर दबाव और स्क्रीन का जो असर है वो ना पड़े उसके लिए हमको किस तरह से थोड़े थोड़े देर में ब्रेक लेते रहना
0: जी
1: चाहिए और वो तमाम चीज़ें हैं, पर पोषण से जुड़ी चीज़ें कौन सी हैं जो खास तौर पर बढ़ती उम्र के बच्चों या हम अडल्ट की भी इसमें बात कर लें कि जिससे उनकी आंखों की सेहत बेहतर है?
0: मेरे हिसाब से पेट को और आंखों का कोई कनेक्शन नहीं है मैं आपको ऑनेस्टली कहता
1: जी
0: हूं, वरना हर रोज खाना खाने के बाद हमारा नंबर बदली हो जाता है। एक नॉर्मल पोषण बहुत ज़रूरी है जो हम
1: जी
0: करते हैं, और अगर हम देखें अपने देश में किसी भी देश के कंपैरिजन में जो खाना है वो सबसे बढ़िया है, जिसको
1: जी
0: संतुलित आहार कहते हैं। आप
1: बिल्कुल
0: कोई भी घर में जाइए, आप कोई भी कम्युनिटी में जाइए, कोई भी कास्ट में जाइए, कोई भी रिलीजन में जाइए, अगर आप देखें तो अपने पूरे देश में खाना बेसिकली वही है,
1: बिल्कुल
0: जिसके
1: बिल्कुल
0: अंदर बेसिक चपाती है, राइस है, दाल है और सब्जी है। अभी आपके लिए इसके लिए आपको डायटिशियन या साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही एक सबसे बढ़िया संतुलित आहार है।
1: जी
0: तो टाइम पे खाना बहुत ज़रूरी है जो आजकल नहीं होता, और दूसरी बात है पानी पीना बहुत ज़रूरी है। आज देख रहे हैं कि वापस उसकी वजह से थकावट हो जाती है, डिहाइड्रेशन होता है, सभी बाहर जाइए बम्बई जैसे जगह पे धूप है, अंदर आइए एसी है, डिहाइड्रेशन तो होना है आपको, तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी के साइड इफ़ेक्ट्स कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बाथरूम जाने पड़ेगा, बढ़िया है, आपका उतना ब्रेक हो जाएगा बीच बीच में।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो मेरे हिसाब से खाने का संतुलित आहार जो नॉर्मल है आजकल, मैं देख रहा हूँ क्योंकि ज्ञान बहुत बढ़ रहा है आजकल, आप भी देखते हैं व्हाट्सएप पे सारे PhDs आते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और
1: विद्वान
0: सभी
1: लोग हैं
0: बहुत ही हमसे बड़े PhD हैं सारे।
1: जी।
0: अब बीच में ही मैंने कहाँ पे एक पोस्ट देखी थी जहाँ पे किसी ने कहा कि आप आपकी उंगलियाँ ऐसे रगड़ो तो आपके आँख का नंबर चले जाएगा, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे एक पेशेंट ने आके पूछा कि
1: ओके
0: डॉक्टर साहब अगर हम आपके ऐसी, मैंने वो पोस्ट देखे मतलब कर लगे रहो, बोला कितना टाइम, बोला लगे रहो आप ही, आप मुझे आके बताओ। तो मजाक की बात हुई, लेकिन बहुत ही हो रहा है कि आप ये आर लो तो ये होगा, ये ना लो तो वो होगा। एक बहुत ही

0: दुर्भाग्य की बात है अपने देश में कि सारी सिस्टम अपनी अमेरिकनाइज बहुत हो गई है, कि वेस्ट का ही जो है वही सही है, यही डाइट सही है, जीएम डाइट हो या ये डाइट हो, नहीं, अपना देश का डाइट सबसे अच्छा है,
1: बिल्कुल
0: उसे संतुलित आहार कहते हैं। दोबारा सोच लीजिए जो मैं कह रहा हूँ, आपको और कोई डाइट की ज़रूरत नहीं है, डाइट मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा कचौरी खाए, बड़ा पाव खाए, पाव भाजी खाए, जलेबी खाए, तकलीफ तो होनी, इंस्टेड ऑफ
1: बिल्कुल
0: हैविंग इट एज अ चॉइस, अगर आप रेगुलर ले, प्रॉब्लम तो होना ही है आंखों पे इतना ज्यादा। हाँ, डायबिटिक्स में आप जो कहते हैं,
1: जी
0: जब उनकी शुगर बढ़ती है तो ऑब्वियसली आंखों पे असर होता ही है,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल,
0: वो
1: उसके
0: तो
1: लिए अलग तरह की सावधानियां।
0: उसकी अलग तरह की सावधानी है।
1: जी डॉक्टर साहब, चश्मा बनाते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कई लोग आजकल बहुत ज्यादा फैशनेबल होते हैं, अलग अलग रंग के टिंट लगवा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल।
0: अच्छा, इसके बारे में आपको एक और एकदम सरल कंपैरिजन देता हूँ। आप जब जूते खरीदते हैं तो आप क्या देखते हैं उसमें?
1: कंफर्ट,
0: जो चश्मा आपके नाक के ऊपर और कान के ऊपर अच्छी तरह से बैठे, जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, लुक ज़रूरी है, सभी को लुक पसंद है। और एक
1: जी
0: चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत अच्छी तरह से क्लियर करके। माँ बाप हमको पूछते हैं चश्मा का नंबर आया कहाँ से।
1: जी जी जी
0: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है, और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, तो पहले
1: जी
0: तो देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई है। ऐसे
1: हाँ
0: नहीं है, एक बात और गलती डॉक्टर की है, ये भी हमारे के ऊपर के, आप कैसे कह सकते हैं इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं है, ऐसे नहीं है। जैसे मैंने कहा, जेनेटिक्स बहुत बड़ा काम करता है।
1: बिल्कुल
0: दूसरी बात ऑल्सो, जैसे मैंने कहा, आजकल का एनवायरनमेंट बहुत बड़ा काम करता है। और तीसरी बात है, आँख का नंबर आँख के शेज और शेप और साइज के ऊपर आता है, वो
1: जी
0: आपकी हाइट या जूते के नंबर की तरह है। अब आप मुझे बताइए, अगर आपके जूते का नंबर जब आप बचपन में बढ़ रहा था, तो माँ बाप ने जाके वहां पे दुकान वाले से झगड़ा तो नहीं किया इसका 6 नंबर 7 कैसे हो गया?
1: हाँ बिल्कुल, तो
0: आप
1: फिर
0: समझे?
1: आप
0: तो
1: इसमें
0: ये
1: भी
0: इस
1: सवाल नहीं उठा सकते।
0: नहीं, सवाल नहीं, समझना जरूरी है। सवाल तो जरूर उठाइए।
1: जी जी
0: हमारे देश में सबसे बड़ी आप समस्या जानते हैं कौन सी है, जो मैं सारे मेरे पेशेंट को कहता हूँ, पेशेंट सवाल नहीं पूछते और डॉक्टर जवाब नहीं देते।
1: ओके बिल्कुल बिल्कुल
0: सवाल पूछिए, सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन समझना जरूरी है। यह कोई बीमारी नहीं है, इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं,
1: जी
0: और ये उल्टा साइंस है। जो आंख के नंबर कम पड़ रहा है, हम चश्मे से उसको बाहर दे रहे हैं, उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उसको हम जीरो कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ही जो इमेज है, कोई भी इमेज हो,
1: वो क्लियर
0: वो
1: बनेगी।
0: क्लियर दिमाग तक जाएगी। दिमाग को क्लैरिटी चाहिए शेप
1: बिल्कुल
0: और साइज में। ये हमारे 9th स्टैंडर्ड का फिजिक्स है, हम सब पढ़े हैं, कॉन्वेक्स
1: बिल्कुल
0: और कॉनकेव मिरर्स, दोबारा देख
1: यस
0: लीजिए जो मैं कह रहा हूँ, आराम से आपको समझ जाएगा। तो ये नहीं है। और फिर पूछते हैं इनका नंबर कितना बढ़ेगा, मेरा दूसरा सवाल होता है इनकी हाइट कितनी बढ़ेगी, मुझे नहीं पता। सवाल नंबर अलग चीज़ है, नज़र अलग चीज़ है।
1: जी
0: जब मेरे पास कोई बच्चा आता है या कोई पेशेंट आता है, मेरा ध्यान सिर्फ नज़र पे है, नंबर पे नहीं है। समझ लीजिए, सिर्फ अंधे को नंबर नहीं है, अच्छी तरह से समझ लीजिए, सिर्फ अंधे जो हैं बेचारे, उनको नंबर नहीं है, हमको और आपको सबको नंबर है, इसलिए दिखा जाता है। ये
1: जी
0: रिफ्रैक्टिव सिस्टम है आँख की,
1: जी जी जी
0: जो हमारे को 8th और 9th में पढ़ाई गई है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर्स की। तो ये रिफ्रैक्टिव सिस्टम में अगर ये ना हो तो किसी को दिखाई नहीं देगा।
1: बिल्कुल
0: उम्र के साथ इसमें बदलाव आता है, पहले अगर दूर का नंबर हो, 40 के बाद रीडिंग नंबर आता है, क्योंकि आंख के अंदर के मसल्स में, लेंस में, सब में चेंज आते हैं। ये सारे उम्र की वजह से होने वाले बदलाव हैं, इसके साथ हम झगड़ा नहीं कर सकते, इसके साथ लड़ नहीं सकते। जो भी नंबर हो, काफ़ी टाइम होता है, माँ बाप बोलते हैं आजकल बहुत कम हो रहा है, बिकॉज लोग काफ़ी अभी समझ रहे हैं ये प्रॉब्लम क्या है, और ये मुझे 15 साल 20 साल पहले ज़्यादा दिखाई देता था। अच्छा, किसी ने कहा चश्मा मत पहनो, देखते हैं, ये सबसे खतरनाक चीज़ है। देखते क्या है, बच्चे को दिख नहीं रहे, देखते क्या है, बच्चे को दिखाना है तो चश्मा पहनो। मैं तो
1: बिल्कुल
0: ऑलवेज कह रहा हूँ, इट्स योर बेस्ट फ्रेंड, सुबह लगाओगे, रात को निकालोगे सोते टाइम, और क्या, आपको स्पष्ट दिखाई देगा, और क्या चाहिए? दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज क्या है? दृष्टि।
1: बिल्कुल
0: अगर दृष्टि नहीं चाहिए तो तकलीफ आपको होनी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो इस मामले में कतई लापरवाही नहीं करनी चाहिए।
0: जी,
1: अगर बच्चे को चश्मे का नंबर आया तो फौरन उसे चश्मा बनवा कर देना
0: और
1: चाहिए।
0: 6 महीने और हर साल में चेकअप करवाते रहिए, क्योंकि
1: जी
0: बच्चों के आंख की शेप और साइज बदली होते रहता है। लड़कों में ज्यादातर 18 और 20 तक सेटल होता है, लड़कियों में 20 और 22 तक सेटल होता है,
1: जी
0: ये ग्रोथ,
1: जी
0: जो फुल ग्रोथ जो हम लोग कहते हैं, तो वो तब तक के नंबर में बदलाव आने की संभावना है।
1: जी
0: और जो भी नंबर हो, वो नंबर मत देखिए, आप बच्चे की नजर देखिए।
1: बिल्कुल।

0: डॉक्टर साहब, एक चीज जो देखी जाती है, कई छोटी उम्र के बच्चे होते हैं जिनको बहुत मोटे मोटे चश्मे लग
1: जी
0: जाते हैं, बड़े
1: जी
0: नंबर वाले चश्मे लग जाते हैं।
1: जी
0: वो क्या समस्या है और क्या ये लाइफ टाइम होती है या लेजर के जरिए जो हम सुनते हैं कि
1: जी
0: चश्मा हटाया जा सकता
1: जी
0: है?
1: जी तो ये जो है वो जैसे मैंने कहा आंख के शेप और साइज के ऊपर आता है।
0: जी
1: काफी बच्चों में जिसको हम लोग पैथोलॉजिकल मायोपिया कहते हैं, मायोपिया ने माइनस नंबर जो रहता है
0: जी
1: उनके 1 मिलीमीटर में 3 नंबर का फर्क पड़ता है। अगर आपका -3 है तो आपके जो लेंथ है आंख की वो 1 मिलीमीटर से ज्यादा है। इन बच्चों में काफी छोटे उम्र में भी नंबर आते हैं, कोई और कमजोरी

0: वो कोई और बीमारी हो उसके वजह से, उसके लिए चश्मा मेन ट्रीटमेंट है एक उम्र तक, और वो उम्र रहेगी 20 तक, क्योंकि जब तक के आँख का नंबर 2 साल तक स्टडी ना हो, लेज़र या लेजिक करना सही नहीं है। सपोज़ कोई बच्चा आए हमारे पास और हमने उसकी 16 की उम्र में की या 20-18 की, और उसके बाद उसके आँख का साइज़ चेंज हो गया, नंबर वापस आ गया, दोबारा दोबारा तो नहीं कर सकते ना? क्योंकि लेजिक क्या है या लेजर जो क्या है, उसके अंदर जो आंख का जो नंबर आंख की गोलाई के ऊपर है, जो सामने की कांच की गोलाई है, तो अगर नंबर कम करना है तो गोलाई कम करनी है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? पीछे से तो काट नहीं सकते, तो आगे से लेजर से जो सामने की कांच है उसका शेप चेंज किया जाता है,
1: अच्छा
0: उसका एक कैलकुलेशन है। और उसके वजह से फिर जो है, जैसे दोबारा मैं आता हूँ 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स से, ओके, जो फोकल लेंथ है वो चेंज करके जो इमेज है उसको पीछे शिफ्ट की जाती है, तो नंबर कम हो जाता है या निकल जाता है। तो एक सरल भाषा में ये लेजिक्स या लेज़र है। दूसरी बात है, इसके लिए भी काफ़ी जांच पड़ताल करना ज़रूरी है। उसके अंदर जैसे मैंने कहा, 2 साल तक नंबर स्टडी रहना बहुत ज़रूरी है, एक बात। दूसरी बात, आजकल जो चेकअप्स हैं जिसके अंदर सामने की जो कांच है उसका मोटापा जांचा जाता है,
1: अच्छा
0: क्योंकि अगर आपका लेज़र कर रहे हैं किस हद तक कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, अगर सामने की कांच पतली हो
1: तो
0: और
1: नहीं कर
0: लेज़र
1: सकते।
0: हो जाए, होता भी है, अगर हो जाए तो सामने की कांच में नुकसान हो जाता है और वो भयानक चीज़ है, आगे आँख की दृष्टि में परिणाम आ सकता है।
1: ओहो
0: आप समझे कि नहीं? देखिए, देखने के लिए सामने की कांच मेन है, इसके लिए वो
1: जी
0: जो आपने कहा आंसू वगैरह उसी को प्रोटेक्शन देता है ना वो,
1: करेक्ट
0: तो वो भी जांच करना ज़रूरी है कि सामने की जो कीकी है या कांच है उसका मोटापा सही है क्या नहीं, पीछे का पर्दा सही है क्या नहीं। ये सब चीज़ें होने के बाद ही फिर हम लोग पेशेंट को लेजिक्स या लेज़र के लिए कहते हैं। और उसके अंदर भी एक चीज़ बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, ये परमानेंट नहीं है, एक उम्र के साथ आपके आँख में बदलाव आएगा ही, 45 के बाद नज़दीक का नंबर आएगा, तो आप चश्मे से शायद 25 साल मुक्त हों अगर 20 पे आपने करवा लिया तो,
1: जी
0: लेकिन 45-50 तक आपको रीडिंग ग्लासेस आएंगे। काफ़ी टाइम लेज़र होने के बाद कोई पेशेंट में हमने रिग्रेशन भी देखा है, यानी नंबर दोबारा आता है। ह्यूमन बॉडी है, 100% गारंटी कोई चीज़ की नहीं है, ये भी हमने देखा हुआ है। फिर चश्मा पहनना ज़रूरी होता है, कई लोगों का पूरा नंबर नहीं निकलता, अगर ज़्यादा नंबर हो, काफ़ी कम हो जाता है लेकिन थोड़ा नंबर चलता है।
1: जी
0: और जो भी उम्र के वजह से या कोई और कारणवश आंख की बीमारियां होनी है वो तो होनी है, भले वो ग्लोकोमा हो, कैटरैक्ट हो, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो या और कोई चीज हो, वो तो आप लेजर से, हम बायोनिक आए तो नहीं बिठा रहे वहां पे,
1: जी
0: आंख
1: जी
0: जो है तो वही है।
1: बिल्कुल
0: हाँ,
1: सर, उसका शेप चेंज हो रहा
0: उसका
1: है।
0: सिर्फ सामने का कांच का शेप चेंज हो रहा है,
1: जी
0: उसका फोकल लेंथ चेंज करने के लिए, उसका जो इमेज है उसको शिफ्ट करने के लिए।
1: पर यह हमेशा के लिए किया गया उपाय नहीं है।
0: जी नहीं, ये हमेशा के लिए हो ही नहीं सकता।
1: कई बार बुजुर्ग लोग भी अपने चश्मे से छुटकारा पाने के लिए ये करते हैं।
0: वो देखिए, अभी एक नई चीज आई है पिछले 7-8 साल में, जिनके बहुत ज्यादा नंबर है बुजुर्ग लोगों के, और ज्यादातर मोतिया होने के बाद ही ऑपरेशंस किए जाते हैं,
1: जी जी
0: लेकिन काफी पेशेंट में आजकल जो एडवांस लेंसेज आए हैं, जिनको हम ट्राईफोकल लेंसेज या स्पाइरल लेंसेज जो आए हैं, वो ऑपरेट करके जो क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन बोलते हैं कि जिसमें मोतिया नहीं है, लेकिन उसको निकाल के वो आर्टिफिशियल लेंस बिठाई जाती है, जिसकी वजह से उनका चश्मा जो है वो हट जाता है,
1: जी जी
0: तो वो परमानेंट रहता है, लेकिन वो जिंदगी भर तक फिर बाद में वहाँ पे कुछ नहीं होता, लेकिन वो भी इतना सरल नहीं है, उसके पहले काफ़ी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आप सूटेबल इसके लिए हो या नहीं।
1: जी बिल्कुल
0: पेशेंट का काउंसलिंग करना बहुत, जैसे लेजिक में करते हैं वैसे ही इसके अंदर भी करना बहुत ज़रूरी है, कि जब अभी आपको मोतिया नहीं है तो भी आप ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन में प्रॉब्लम तो हो सकता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आप समझे कि नहीं? ये ऑपरेशन
1: जी
0: है, तो
1: जी
0: आप अपनी तरफ से आप समझ के जा रहे हैं कि ये ऑपरेशन है, इसके अंदर गड़बड़ भी हो सकती है, हम
1: बिल्कुल
0: चाहते हैं कि किसी पेशेंट की आंख में गड़बड़ ना हो, भगवान ना करे कि किसी के भी दृष्टि में प्रॉब्लम हो, लेकिन तो भी ये समझना बहुत जरूरी है, आप समझे कि अगर ये ऐसे ही नहीं है कि आप आओ करो, आंख के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, दैट इज माय बॉटम लाइन टू एवरीबॉडी, जब जरूरत हो तो जरूर कीजिए, लेकिन जितना हो आप सोच समझ के कीजिए। काफी टाइम हमने देखा है कि मेरे फ्रेंड ने किया सर तो मैंने करवा लिया।
1: जी जी बिल्कुल ये बहुत बड़ी समस्या है।
0: हाँ, और सबकी आंखें सेम नहीं है, एक आंख से दूसरी आंख भी सेम नहीं है,
1: जी
0: और हम कितनी भी

0: कोशिश करें तो जैसे मैंने कहा, अभी इतने साल हो गए प्रैक्टिस में, इतने सर्जरीज हो गए, लाखों पेशेंट्स भी हो गए, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर एक पेशेंट का आँख आज ऑपरेट हो, उसका दूसरा आँख अगले हफ्ते ऑपरेट हो, तो भी एज डॉक्टर्स हम जानते हैं कि इसमें चार आना यहाँ वहाँ है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है,
1: बिल्कुल
0: पेशेंट को दिख रहा है सब कुछ ठीक है, लेकिन हम जानते हैं
1: जी
0: बिकॉज इट इज़ नॉट अ, अनफॉर्चुनेटली इट इज़ इतनी स्पेशलाइज सिस्टम है आँख की, कोई डुप्लीकेट करने जाए तो भी ह्यूमन बॉडी को डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे हैं आप, छोड़िए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही
0: तो
1: कहा
0: आँख
1: आपने।
0: तो, और आँख को तो सबसे इम्पोर्टेंस दिया हुआ है भगवान ने, क्योंकि दिमाग चलता है तो आदमी चलता है, और दिमाग को दिखेगा कैसे, आँखों के थ्रू ही दिखेगा।
1: परफेक्ट बात है। यहां एक गाना सुनते हैं
0: जरूर।
1: और वो गाना है आंखों में हमने आपकी
0: अरे
1: सपने
0: वाह।
1: सजाए।

0: दोस्तों, आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग। इसका दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: सेहतनामा।
2: अभी एक छोटा सा अंतराल।

FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। शाम के 5 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक पेश किए जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
1: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
0: श्री बिरला ने सदस्यों से सहयोग और सार्थक चर्चा की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर शुरू हुआ तो उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। श्री हरिवंश ने विरोध कर रहे सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच उन्होंने सदन को शाम 5:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
2: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए

0: और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त दान राशि के गबन के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने एसआईटी को जांच के संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितम्बर को निर्धारित की है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचो में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपिक पदक विजेता मनु ने कांस्य पदक जीता। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शानदार प्रदर्शन के लिए ईशा सिंह और मनु भाकर को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: श्रोताओं लीजिए, अब पेश है फिल्म संगीत।

सबसे पहले हम आपको साथिया फिल्म से गीत सुनवा रहे हैं, साधना सरगम और मुर्तजा खान की आवाज़ों में गुलजार की रचना को संगीत से सवारा ए आर रहमान ने।

साधना सरगम और मुर्तजा खान की आवाजों में गीत था साथिया फिल्म से। अगले गीत की ओर रुख कर रहे हैं। जावेद अख्तर की रचना है, अनु मलिक की तर्ज में। बॉर्डर फिल्म के गीत को गाया है सोनू निगम और अलका याग्निक ने।

आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अब हमने चुना है कुमार सानू की आवाज में ये गीत। नदीम श्रवण का संगीत है, आनंद बख्शी का लिखा गीत, परदेस फिल्म से।

पार्थिव गोहिल का गाया गीत था सावरिया फिल्म से। आप सुन रहे थे फिल्म संकेत। यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अब पेश है स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

0: सबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है, घबराए नहीं। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर मदन महल के पीछे अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं, दिनांक 6/7/2026 को प्रसारित किया गया उमंग प्रोग्राम का श्रोता संवाद मुझे बेहद पसंद आया, जिसमें प्रोफेसर विनोद जी द्वारा परीक्षा के दौरान बच्चों पर होने वाले तनाव को कैसे कम करें इस विषय पर जानकारी दी गई है।
2: ये हमें बेहद पसंद आई और दिनांक 7 जुलाई 2026 से 10 जुलाई 2026 का उमंग प्रोग्राम भी बेहद पसंद आया, जिसमें आपने ये भी जानिए कि अंतर्गत पेड़ों के बारे में जानकारी दी। हमें बेहद अच्छी लगी। इतनी अच्छी जानकारी के लिए पूरी उमंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश कारिया जी। अगला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी, इन दिनों पेड़ों के बारे में हमारे ज्ञान में बहुत वृद्धि हो रही है। बहुत ही शिक्षाप्रद और रोचक जानकारी हमें सुनने को मिल रही है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति चल रही है। इन दिनों सचमुच मजा आ रहा है। धन्यवाद जी।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का। लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। 9 जुलाई दिन गुरुवार को आपने 5000 साल तक जीने वाले पेड़ के बारे में जानकारी दी। ये हमें बहुत अच्छी लगी। इतनी रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए धन्यवाद। विमलेश जी और अजीत जी को हमारा नमस्कार।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। और साथ साथ
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
3: जय गुरुदेव, उमंग टीम को जय जोहार, पल पल बंदगी। 29 जून 2026 को उमंग में आदिवासी परिवार की कहानी बुधनी गई है जंगल कार्यक्रम सुनाया, जो हमें बहुत पसंद आया और पर्यावरण को बचाने की सीख भी हमें मिली। आपका उमंग कार्यक्रम स्वर्ग की तरह सुंदर है। सभी सुनने वालों को स्वर्ग की तरह अनुभूति

0: कराता है, जीवन को खुशनुमा बना देता है। विमलेश मैडम जी और अजीत साहब जी को जय जोहार बंदगी करते हैं, धन्यवाद साहब
1: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जोहरी, पूजा और पायल कुमारी,
0: और गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का आप सबको धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था।
1: इसका उत्तर है साथियों, मोबाइल या सेल फोन का आविष्कार अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर ने 1973 में किया।

0: है। इस मेले में आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली से लेन देन होता है।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने पूछा था आपसे कि मोरुंग किसे कहते हैं।
0: इसका उत्तर है, मोरुंग नागालैंड का पारंपरिक युवा आवास है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। यहाँ युवाओं को संस्कृति, आखेट, कला और युद्ध की शिक्षा दी जाती है।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था श्रोताओं की बहा उत्सव में कौन कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं।
0: संथाल जनजाति के इस उत्सव में साल यानी सखुआ और महुआ के फूल चढ़ाए जाते हैं।
1: जी, और सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमने पूछा था कैल पौध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैल पौध शब्द का क्या अर्थ है।
0: इसका उत्तर है साथियों, कैल का मतलब हथियार या उपकरण होता है और पौध का अर्थ होता है उत्सव, यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। ये कर्नाटक की कोडावा जनजाति द्वारा मनाया जाता है।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब बारी है आज का प्रश्न सुनने की। हमारा आज का प्रश्न है, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान या पुरस्कार क्या है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान क्या है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी आपको मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
0: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: जी, तो श्रोताओं अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो पहला कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आए हैं, उसका शीर्षक है चेतक की वीरता।
0: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कविता की संगीतमय प्रस्तुति है, जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध में महायोद्धा वीर महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की चपलता, स्वामी भक्ति और वीरता का बखान किया गया है। कविता के द्वारा बच्चों के मन में जीव जगत के प्रति प्रेम और करुणा का भाव भी जागृत करने का प्रयास किया गया है।

0: देखो देखिए चारो मुझे छोड़ दो, घास वाले कहने भी उतारो, मुझे छोड़ दो।
1: मेरी अंगूठी ले ले,
0: मुझे छोड़ दो।
2: वो उन्हें मार डालता था, वो उनकी अंगुलियों की माला बनाता था, उस माला को गले में पहनता था, इसीलिए लोग उसे अंगुली माल कहते थे। सभी लोग उससे बहुत डरते थे और जंगल में नहीं जाते थे। एक बार महात्मा बुद्ध वहां आ गए। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया, उन्हें जंगल में जाने से रोका। लोगों ने महात्मा बुद्ध को अंगुली माल के बारे में सब कुछ बताया।
3: नाथ,
4: महात्मा,
3: प्रभु, प्रभु,
4: महात्मा,
3: प्रभु,
4: प्रभु, अब जंगल में मत जाएं।
3: वहाँ अंगुली माल है।
4: हाँ प्रभु।
3: वो बहुत बड़ा डाकू है।
5: हाँ प्रभु, आप वहाँ ना जाएं।
3: जाए।
6: हाँ प्रभु, वो डाकू लोगों को मार देता है।
4: ना जाए प्रभु।
7: डरने की कोई बात नहीं है, आप धैर्य रखें।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चेतक की वीरता। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है अंगुलीमाल।
1: ये कार्यक्रम महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि महात्मा बुद्ध के मृदु भाव और विनम्रता से किस प्रकार उस समय के दुर्दांत डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हो गया और वो महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया।
2: एक जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वो बहुत निर्दयी था। वो जंगल से आने जाने वालों को पकड़कर बहुत सताता था।
3: ए, जो कुछ है रख दो यहाँ।

0: महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए जंगल में चले गए। जब अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध के आने का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया।
1: कौन कौन है वहां?
0: वो गुस्से से भरा महात्मा बुद्ध के पास आया। महात्मा बुद्ध ने धैर्यपूर्वक मुस्कुराकर उसका स्वागत किया।
2: स्वागत है बंधु, आपका इस जंगल में परम स्वागत है।
3: अरे मेरा स्वागत।
0: इस प्रकार बिना डरे मुस्कुराकर स्वागत करना अंगुलीमाल के लिए नई बात थी। सब लोग तो उससे डरते थे और उससे घृणा करते थे। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा,
2: भाई गुस्सा छोड़ो और सामने वाले पेड़ से चार पत्ते तो तोड़ लो।
1: हाँ ठीक है।

0: तुमको जहां से तोड़ लाए हो फिर से वहीं लगाओ।
1: ये कैसे हो सकता है? जो पत्ता एक बार पेड़ से टूट गया वो फिर कैसे जुड़ सकता है?
0: तो तुम जानते हो कि जो एक बार टूट गया वो दोबारा जुड़ता नहीं।
1: जी जी महात्मा।
0: तो तुम तोड़ने का काम क्यों करते हो जब तुम फिर से जोड़ नहीं सकते?
1: जी।

0: मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। क्षमा करे, क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे।
1: कल्याण हो, आयुष्मान भव।

अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की बात समझ गया। वो उनकी शरण में आ गया और उनका शिष्य बन गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम अंगुलीमाल। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
2: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
3: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
4: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
3: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
4: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
3: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
2: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
3: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
2: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
3: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
5: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
3: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
5: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे।

0: मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
1: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
2: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
1: सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
2: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
0: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
0: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
0: जी अवश्य।
1: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी।
4: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
0: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
4: जी।
1: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
2: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
1: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुलके ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
0: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
5: आइए आइए फादर बुलके। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
0: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
5: जी जी,
0: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
5: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
0: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
5: जी,
0: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन

0: केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
1: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर पुलके।
0: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
1: जी, उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
0: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
2: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
1: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुलके को जानने लगी।
2: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुलके का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
0: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
2: फादर कामिल बुलके ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सन 1949 में राम कथा पर डी फिल करने के बाद तुलसीदास के रामचरितमानस का और गहन अध्ययन किया। उन्होंने राम कथा की उत्पत्ति और विकास पर पीएचडी की।
1: डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा कहते हैं,
3: इस शोध ग्रंथ को वास्तव में राम कथा संबंधी समस्त सामग्री का विश्वकोश कहा जा सकता है। हिंदी क्या किसी भी यूरोपीय अथवा भारतीय भाषा में इस प्रकार का कोई दूसरा अध्ययन उपलब्ध नहीं है।
2: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
1: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुलके ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
2: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुलके बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। कामिल बुलके की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
1: 36 साल बाद

0: वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
1: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
2: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और फैजान के साथ फिमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग। FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। शाम दे 6 बजन वाले ने हुण तक जी पना जसी आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तों हिंदी विच समाचार रिले करांगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर जांच की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
1: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर शुरू हुआ तो उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। श्री हरिवंश ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
2: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करे। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित

0: किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाली विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को निर्धारित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचो में आयोजित आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस शानदार प्रदर्शन के लिए ईशा सिंह और मनु भाकर को बधाई दी है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 MHz ਤੇ।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: श्रोते हुने भक्ति गीत असी तुहानू सुनवा रहे हैं जुबीन नौटियाल दी आवाज़

0: FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ 6:10 ਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6:20 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। विपक्ष के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नरवाना उपमंडल के गांव उझाना के विकास के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए देने और स्कूल में विज्ञान संकाय शुरू करवाने की घोषणा की। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कुसली कुरुक्षेत्र में लगभग 5.19 करोड़ रुपए की विभिन्न जनहितकारी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। और मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कल और परसों बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं पर और अधिक प्रभावी रोक लगाना और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को और मजबूत बनाना है। आज पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से सहयोग और विधेयक पर सार्थक चर्चा की अपील की, किंतु हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब सदन फिर से शुरू हुआ तो विधानसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधेयक पर चर्चा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में यह विधेयक महत्वपूर्ण कदम है।
2: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
1: उन्होंने कहा कि इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, सभी दलों को अपनी राय रखनी चाहिए। अध्यक्ष की बार बार अपील के बावजूद विपक्ष के सदस्य विरोध करते रहे, जिसके कारण सदन की कार्यवाही शाम तक स्थगित कर दी गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
3: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
1: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह

0: सैनी ने आज नरवाना उपमंडल के गांव उझाना के विकास के लिए 1,51,00,000 रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री आज गांव उझाना में श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा खाकनाथ श्री महाराज जी के नवनिर्मित समाधि स्थल पर आयोजित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग के अनुरूप गांव में सड़क निर्माण, कुंड तालाब का जीर्णोद्वार, पानी निकासी का स्थायी समाधान तथा गांव के स्कूल में विज्ञान संकाय शुरू करवाने की घोषणा की।
1: मेरे से कुछ मांगे या आप दी गई है उनको पूरा कराने का काम करेंगे। जाना की फिरनी से रोंदी माइनर तक सड़क का निर्माण मार्केट कमेटी के माध्यम से कराया जाएगा। जितना भी पैसा लगेगा इसको पर खर्च किया जाएगा। अमृत सरोवर योजना के तहत कुंड तालाब का जीर्णोद्धार पॉन्ड अथॉरिटी के माध्यम से करवाया जाएगा। कम्युनिटी सेंटर भी उजाना गाँव में बनेगा। इसके लिए मैं 1,00,00,000 रूपया उजाना गाँव को दे करके जाता हूँ। अगर इसके ऊपर और कोई खर्च करने की आवश्यकता हुई तो हम और खर्च भी करेंगे।
0: इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि संत महापुरुषों का जीवन समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। उनके आदर्श मानवता, सेवा, समरसता और राष्ट्र निर्माण का संदेश देते हैं। वर्तमान पीढ़ी को उनके जीवन मूल्यों से जोड़ना समय की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। उन्होंने पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान किया। इस अवसर पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिठा और विभिन्न मठों के महंत मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के खेल एवं कानून राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल शहर के कुसलीपुर क्षेत्र में लगभग 5,19,00,000 रुपए की लागत से निर्मित की जाने वाली विभिन्न जनहितकारी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। खेल राज्य मंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र में सड़क एवं नाली निर्माण, वीपीएल कॉलोनी के आसपास आधारभूत सुविधाओं का विकास, विभिन्न गलियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग सामुदायिक केंद्र का निर्माण कराया जाएगा।
2: 5.5 करोड़ की लागत से सड़कें द्वार का निर्माण हो रहा है। कल भी हमने करोड़ों रुपए के उद्घाटन किए। हमने तय किया है कि पलवल के अंदर एक भी दिन कंस्ट्रक्शन रुकेगा नहीं। किसी न किसी रूप में कहीं रोड बनते हुए दिखाई देंगे, कहीं हॉस्पिटल्स, कहीं चौक चौराहे, कहीं खेल स्टेडियम। हम पलवल की विकास की गति को और तेज कर रहे हैं।
0: हरियाणा विधानसभा सचिवालय में आज केंद्र सरकार की राष्ट्रीय भाषा प्रौद्योगिकी पहल भाषिणी के उपयोग एवं एआई आधारित इंटरप्रिटेशन, ट्रांसक्रिप्शन, अनुवाद तकनीकों पर एक दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रकाशन, अनुवाद तथा नेवा शाखा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भाषिणी प्लेटफॉर्म की विभिन्न सेवाओं तथा उनके व्यावहारिक उपयोग की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि हरियाणा विधानसभा में क्षमता संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है और यह कार्यशाला उसी निरंतर प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप उभरती हुई डिजिटल एवं तकनीकी नवाचारों को अपनाना समय की आवश्यकता है। मौसम विभाग की चंडीगढ़ केंद्र ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कल और परसों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट और आज व 30 जुलाई से 2 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हरियाणा और चंडीगढ़ में कल और परसों ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि 30 से 31 तारीख तक कई जगहों पर और आज और कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। विभाग के अनुसार हरियाणा में आज से 2 अगस्त के बीच कुछ जगहों पर भारी और भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान कुछ जगहों पर आंधी तूफान चलने, बिजली गिरने व 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। फरीदाबाद के मेवला महाराजपुर स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए हरियाणा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को ओपीडी, आईपीडी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सहित अनेक विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा मरीजों को 24 घंटे सातों दिन लेबर रूम की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। केंद्र की वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. मीनाक्षी ने बताया कि अस्पताल को अब मॉडल अस्पताल के रूप में भी चयनित किया गया है। अमरीका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने

के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। ईरान ने संकेत दिया है कि अगर अमरीका सैन्य अभियान रोक देता है तो वह आगे और हमले नहीं करेगा। इसके बाद कीमतों में यह गिरावट आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला छावनी स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का नाम बदलकर आचार्य रघुवीर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। आचार्य रघुवीर एक प्रख्यात शिक्षाविद, भाषाविद, संस्कृत एवं भारतीय संस्कृति के महान विद्वान तथा राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रबल समर्थक थे। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के महान शिक्षाविदों एवं राष्ट्र निर्माण के योगदान को सम्मान देने की दिशा में यह निर्णय लेते हुए वर्तमान नीति में आवश्यक छूट देने के निर्देश दिए हैं। मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। विपक्ष के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नरवाना उपमंडल के गांव उझाना के विकास के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए देने और स्कूल में विज्ञान संकाय शुरू करवाने की घोषणा की। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कुसली कुरुक्षेत्र में लगभग 5.19 करोड़ रुपए की विभिन्न जनहितकारी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

इसमें शामिल होने वाले लोगों की सराहना की और सभी देशवासियों से बारिश के पानी के बचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज बारिश की बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी पूंजी है। इस अभियान को लेकर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा भी जल संचयन में कई योजनाओं को लागू कर चुका है। हरियाणा में इस मुहिम को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इस अभियान के छठे संस्करण की आधिकारिक शुरुआत 22 मार्च 2025 को विश्व जल दिवस के अवसर पर हरियाणा के पंचकुला जिले से की गई थी। हरियाणा जल संसाधन संरक्षण विनियमन और प्रबंधन

0: संस्करण की आधिकारिक शुरुआत 22 मार्च 2025 को विश्व जल दिवस के अवसर पर हरियाणा के पंचकुला जिले से की गई थी। हरियाणा जल संसाधन संरक्षण विनियमन और प्रबंधन प्राधिकरण जल और सतही जल के संरक्षण नियमन और उचित प्रबंधन के लिए काम करता है। हरियाणा सरकार का मानना है कि जल संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। यदि आज हम पानी बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा। जलवायु परिवर्तन और भूजल स्तर में लगातार आ रही गिरावट को देखते हुए वर्षा जल संचयन को जन आंदोलन का रूप देना आवश्यक है। राज्य सरकार ने हाल ही में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। नए भवनों, सोसाइटियों, बड़े औद्योगिक संस्थानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया है। सिस्टम खराब होने पर भवन मालिक को नोटिस जारी किया जाता है। समय पर सुधार नहीं होने पर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट रद्द हो सकता है। हरियाणा के 14 जिलों में भूमिगत जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। राज्य के कई ब्लॉक तथा गांव ऐसे हैं जो रेड जोन में आ चुके हैं। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में कुल 19,290 तालाबों का डेटाबेस तैयार किया गया है, जिनमें से अब तक 6,777 से अधिक तालाबों व जोहड़ों की सफाई और पुनर्जीवन का कार्य पूरा किया जा चुका है। हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से शेष सभी प्रदूषित और अनुपयोगी तालाबों का चरणबद्ध तरीके से नवीनीकरण व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने राज्य के तालाबों और जोहड़ों के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया है। अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य प्रदान करना है तो अभी से पानी की बचत और संरक्षण की दिशा में ठोस प्रयास करने होंगे। वर्तमान में किए गए संयुक्त प्रयास ही भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। इसी के साथ ही समाचार समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।
1: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ। ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਸ਼ ਬਰਾੜ ਦਾ ਗਾਇਆ ਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਆਗਾਜ਼।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: श्रोतियों, आकाशवाणी चंडीगढ़ तो तुसी पंजाबी गीतां दा इस वेले आनंद मान रहे हो। वारी दीप तमकोटिया दी रचना दी, ब्रावो दा संगीत है गायक कलाकार ने मन्नत नूर।

0: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है। घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन लई स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्ता लागू।
1: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
2: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
1: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
2: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
3: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।

0: आशा भोसले और साथियों की आवाजों में अभी आपने फिल्म भाई बहन का ये देशभक्ति गीत सुना। इसे लिखा था राजा मेहदी अली खान ने और धुन बनाई थी एन दत्ता ने। और आइए अब सुनते हैं ये गीत भारतीय सेना। गीतकार, संगीतकार और मुख्य स्वर है कैलाश खेर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

भारतीय सेना। अभी आप सुन रहे थे ये गीत, गीतकार संगीतकार और मुख्य स्वर था कैलाश खेर का। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आवाजें शैलेंद्र सिंह और साथियों की फिल्म अर्जुन के लिए, गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

0: शैलेंद्र सिंह और साथियों की आवाजों में अभी आपने फिल्म अर्जुन का ये गीत सुना।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

यह आवाजें थी आशा भोसले, शैलेंद्र सिंह की। फिल्म का नाम था मंजिल मंजिल। गीत को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था और संगीत में ढाला था राहुल देव बर्मन ने।

रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे हसरत जयपुरी का लिखा गीत, आवाजी लता मंगेशकर और सखियों की थी, फिल्म का नाम था राम तेरी गंगा मैली। और इस गीत के बाद अब हम लेते हैं इस कार्यक्रम में एक अंतराल।

इस अंतराल के बाद आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं फिल्म जीवा का दुगाना, स्वर आशा भोंसले और अमित कुमार की, बोल गुलजार साहब की और संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
1: ये शाम मस्तानी।
0: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
1: दिल इंसान का एक तरह।
0: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
2: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जयमाला कार्यक्रम का आखिरी गीत, फिल्म का नाम है गुलामी, आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की। इसे गुलजार साहब ने लिखा है और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: house.
1: श्रोते ज्योति नूरा दी आवाज से मिक्सिंग दी तर्स तुसी सुन रहे सी 94 पंजाबी गीत।
2: आवाज जो दिल से दिल तक पहुंची, आवाज जो वक्त के पार पहुंची,
3: यादें जो हर पीढ़ी में जिंदा रहीं। साल था 1936 जब भारत में पहली बार गूंजा
2: ये आकाशवाणी है।
3: तभी से शुरू हुआ एक सुनहरा सफर, सूचना, संस्कृति, खेल और संगीत का अद्भुत संगम।
2: 90 वर्षों से आकाशवाणी है भारत की आवाज।
3: कभी किसान का साथी तो कभी सैनिक की प्रेरणा,
2: कभी घर की सुबह की शुरुआत तो कभी देर रात का साथी।
3: आज जब डिजिटल दुनिया है, आकाशवाणी अब भी दिलों को छू रहा है अपनी सादगी, अपनी गरिमा और अपनी परंपरा से।
2: आइए मिलकर मनाएं आकाशवाणी के सुनहरे 90 वर्षों का सफर, क्योंकि ये है भारत की आत्मा।
3: 90 वर्षों के आगे भी सफर जारी है, नई आवाजों, नई कहानियों के साथ।
2: ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी है।

0: हवा महल में आज प्रस्तुत है श्री धीरेंद्र वर्मा का लिखा प्रहसन एब्स्ट्रैक्ट लव।
1: प्रशांत, अरे भाई प्रशांत, अरे यहाँ आओ, बस में देर है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ।
2: पर क्या आप, मेरा मतलब है मैंने आपको पहचाना नहीं।
1: आप तशरीफ रखिए। हाँ तो मैं हूँ आपका परम मित्र प्रीतम पांडे।
2: अच्छा तो प्रीतम तुम हो, पर ये दाढ़ी, ये टोपी और ये लवादा ये क्या है?
1: ये दाढ़ी गुप्ता जी मेकअप मैंने फ्रांस से मेरे लिए मंगवाई है।
2: अच्छा अच्छा।
1: और ये लवादा और टोपी भी विदेशी है। दरअसल बात ये प्रशांत कि इस समय मैं भी विदेशी हूँ।
2: अच्छा।
1: अर्थात मिस्टर लवमैन डोगरे ऑफ द ग्रेट आइलैंड टोकरे, समझे?
2: ये क्या तमाशा है प्रीतम।
1: हम लेडीज मॉडर्न कॉलेज चल रहे हैं, वहाँ एक सभा में मेरा भाषण है।
2: अच्छा।
1: और तुम हो मेरे दुभाषीय यानी इंटरप्रेटर।
2: ये क्या बकवास है यार प्रीतम, मैं दुभाषीय और तुम विदेशी?
1: विदेशी कलाकार यानी आर्टिस्ट ऑफ द ग्रेट आइलैंड पोखरे।
2: अच्छा?
1: उत्तरी ध्रुव के एक विशाल टापू का रहने वाला।
2: अरे वाह, तो मैं कुछ समझ नहीं पाया यार।
1: तुम रहे ना पूरे अंगड़ प्रशांत। देखो उस मिस मधु मधुमालती को तो जानते हो?
2: हाँ।
1: उनसे जान पहचान का यही रास्ता था।
2: अरे वाह।
1: मिस मधु गर्ल्स मॉडर्न कॉलेज की सोशल सेक्रेटरी है।
2: हाँ।
1: उसे मॉडर्न आर्ट से इश्क है और विदेशी कलाकारों पर वो जान देती है।
2: अरे वाह। अरे पर ये तो अंधेर है प्रीतम, और विदेशी भाषा न तुम जानते हो और न ही मैं जानता हूँ।
1: मैं प्रशांत तुम रहे पूरे चिंच पोकली। देखो मैं अनाप शनाप बोलूंगा क्योंकि पोखरे की भाषा तुम और मैं क्या खुदा भी नहीं जानते। ऐसा करना, अपनी बुद्धि से मेरी भाषा का सरल हिंदी में अनुवाद करते जाना।
2: भाई ये मुझसे नहीं हो सकेगा प्रीतम।
1: अब चुप रहो यार। अच्छा बताओ वो कॉलेज आ गया।
2: हाँ।
1: और देखो मधु मालती अपनी सखियों के साथ हमारा सारा तुमने खड़ी है।
2: हाँ।
1: अपना पार्ट समझ गए ना?
2: समझ गए। चलो
3: अब मैं श्रीमान लवमैन डोगरे ऑफ द ग्रेट आइलैंड पोखरे से प्रार्थना करूंगी कि वे हमारे बीच अपनी बातें रखें।
4: जरफराने करतूश, हरफराने पुरतूश, मी लवमैन डोगरे ऑफ द ग्रेट आइलैंड पोखरे, तरफराने मंबूश, चिंच पोकली बंबू काट दो टम गम की हिंदी तक की पिंगी।
2: महिलाओं और सज्जनों, मैं लवमैन डोगरे जो उत्तरी ध्रुव के विशाल टापू पोखरे के रहने वाला हूँ, आपकी भाषा हिंदी समझ तो लेता हूँ पर बोल नहीं पा रहा हूँ, इसी से मैं अपनी मातृभाषा पिंगी में बातें कर रहा हूँ।
4: तोड़ करदम फोड़ बगदम मॉडर्न और ततार जकीने पार रोगन तार, मगर मैं फूल हमदम मनी माला बताव तूल, खटर टम टम मगर आड़ू धड़ा धम बम।
2: ये कह रहे हैं, मेरा मतलब है कि मॉडर्न आर्ट के नाम पर जो कुछ बतलाया जा रहा है
4: बक्तूश,
2: वो सब बकवास है। और उनके देश पोखरे में वास्तव में आधुनिक कला में जो उन्नति की है वो बेमिसाल है।
4: बड़दम भारत गिनर दूम अखारे आर्ट बूम लघु स्तंभू आर्ट पट्टा टाम खंडू खट्टे घट्टू डटा डट मगा घट मटा ड्रगड़ू झगड़ू बगड़ू झगड़ू लगड़ू।
2: प्रीतम जी ये कह रहे हैं कर ये अपने को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, पोखरे की कला की दुनिया पर इन विचारों का विशेष प्रभाव पड़ा और दुनिया में उठती हुई युद्ध की भयंकर आवाजें।

0: बमों के गिरने के भयंकर स्वरों से इनके देश ने अपना मुख मोड़कर सत्य और अहिंसा, प्रेम और दया के मार्ग को अपनाया। और आज इनके यहाँ सभी कलाकार इन्हीं मानवीय भावनाओं का चित्रण कर रहे हैं।
1: वाह वाह वाह वाह।
2: वाह वाह, बहुत खूब। मुझे आपसे मिलकर बहुत ही प्रसन्नता हुई मिस्टर लवमेन। क्या मुझे आपकी कलाकृतियां देखने का अवसर मिल सकता है?
3: शेखर चीनी आर्ट पीसर्स, मगर प्लेन पोखर द आइलैंड फॉर तूश बत्तूश करावटी बम बट्टी डम होटल मरीना मैदान काफी
2: रूम।
0: ये कह रहे हैं कि इन्हें आपको अपनी कलाकृतियां दिखाकर बड़ी खुशी होगी। ये सैकड़ों मित्र अपने साथ पोखरे से हवाई जहाज पर लाए हैं। आप कल इन्हें शाम को होटल मरीना में कॉफी रूम में मिलिए।
2: अच्छी, मैं अवश्य मिलूंगी, पर आप अपनी कलाकृतियों को अवश्य लाइएगा। मैं उनमें से कुछ के चित्र खींचूंगी ताकि यादगार रहे।
3: तमशी तुम पुराट कर द पॉपकॉर्न विटोरी तमशी किरा मजूर।
2: क्या कह रहे हैं?
0: ये कह रहे हैं कि कला के बारे में ये कल ही बातें करेंगे, इस समय जरा ये जल्दी में है। नमस्ते
2: जी। नमस्ते।
4: आप अच्छे खासे गधे हैं मिस्टर प्रशांत।
0: थैंक यू।
4: मैंने कब कहा था कि कला के सैकड़ों नमूने हवाई जहाज से लाया हूँ? मैंने तो कहा था कि पोखरे टापू बहुत दूर है और एरोप्लेन से कुछ भी लाना कठिन होता है।
0: अच्छा,
4: अब कहाँ से लाऊंगा कला के नमूने? अब ये बताओ कि सैकड़ों पेंटिंग्स हैं कहाँ?
0: मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग चाहिए
4: और क्या। अगर खरीदोगे तो कोई कलाकार 1000-1200 रुपए में मुश्किल से 10-20 चित्र देगा।
0: बिल्कुल, लेकिन एक तरकीब है यार।
4: जल्दी बताओ।
0: देखो प्रीतम, कनॉट प्लेस से हम लोग पेंटिंग के कैनवास और रंग ले चले, रात में तस्वीरें बना डालेंगे।
4: क्या बात है, क्या बात है? मैं और पेंटिंग बनाऊंगा, वो भी 200। क्या दिमाग तो ठीक है तुम्हारा।
0: अरे 200 केवल हम लोग ही नहीं बनाएंगे, मुन्नी गुड्डू।

0: मुन्ना गप्पू और झब्बू सभी भतीजे भतीजियां जुड़ जाएंगे। सबको ब्रश और रंग दे दिए जाएंगे और जैसे मर्जी होना चलाइए, यानी अंधा धुन ब्रश चलेंगे, उल्टे सीधे रंग लगाए जाएंगे और यह परवाह नहीं की जाएगी कि क्या बन रहा है। समझे आप? आधुनिक कला के नमूने मैंने देखे हैं, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। बस जब लीप पोत के सभी कैनवास भर जाएंगे तो सुबह उन पर शीर्षक डाल दिए जाएंगे, यानी कि टाइटल्स।
1: यार तरीका तो कुछ जंच रहा है। हाँ? और कोई रास्ता भी तो नहीं है?
0: कोई रास्ता नहीं है।
1: इस चित्र का शीर्षक रखा जाए तूफान के बाद, यानी ये कला का तूफान है और नीले पीले हरे लाल रंगों के छींटे उसके बाद का प्रभाव है, यानी निराशा रूपी तूफान के बाद आशा रूपी भविष्य इन सुहाने रंगों में छा रहा है।
0: वाह। और ये चित्र अमूर्त प्रेम यानी एब्स्ट्रैक्ट लव कहलाएगा।
1: वाह।
0: समझे? क्योंकि इस कैनवास पर मुन्ना ने लाल रंग उढ़ेल दिया था और फिर इस पर गुड्डी ने पीले रंग के छींटे दिए हैं।
1: वंडरफुल शांत, वंडरफुल। और ये चित्र जीवन का संघर्ष
0: अच्छा
1: लाएगा।
0: अच्छा अच्छा।
1: इसमें गप्पू ने लाल रंग से जोड़ घटाने गुणा और भाग के चिन्ह बड़ी मेहनत से सारे कैनवस पर बनाए हैं। और सच भी है भाई, जीवन का संघर्ष आज के आर्थिक युग में इन्हीं गणित के चिन्हों की तरह है।
0: बराबर। लो भाई, सभी चित्रों के शीर्षक बन गए।
1: वाह।
0: ये कुल 30 चित्र हैं। अब चलो, क्योंकि मिस मधुमालती के पहुंचने का समय हो ही रहा है।
1: हाँ भाई, चलो चलो।
0: कहाँ?
1: होटल मरीना।

0: शांत, मेरी दाढ़ी ठीक है ना?
1: अरे हाँ हाँ ठीक है, तुम घबराओ मत। देखो यहाँ सभी लोगों की नजर तुम्हारे ऊपर है।
2: हेलो, गुड इवनिंग मिस्टर लमन डोगरे।
3: ओ चिकी चिकी,
2: क्या आप अपने चित्र लाए हैं?
3: खर्तून धड़क धप टोप डम डम।
2: क्या कह रहे हैं?
1: ये कह रहे हैं कि भला आप कहें और ये भूल जाए, तस्वीरें यहाँ लाउंज में रखी हैं।
2: तो चलिए उन्हें देखूंगी। मेरे पास फ्लैश कैमरा भी है, उससे मैं आपकी कलाकृतियों की फोटो लूंगी।
3: बखनाए कॉफी यशकी चिराग तीन बदस्तूर पोखरे कस्त्रो पलीज कंट्रीज पंचमली।
1: ये कह रहे हैं कि पोखरे एक अंतरराष्ट्रीय देश है और वहाँ की भाषा अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर आधारित है।
3: पंचमली है।
2: तब तो आपका देश बड़ा सुंदर है।
3: पेंटिंग्स मैडम खरीने पार शंबम।
1: ये कह रहे हैं कि ये पेंटिंग्स इनकी रद्दी पेंटिंगों में से हैं।
3: शंबम शंबम।
2: लवली वंडरफुल एक्सीलेंट मार्वेलस, आपने कमाल कर दिया। मिस्टर डोगरी, अगर आपकी ये रद्दी कलाकृतियां हैं तो अच्छी वाली तो विश्व की सबसे बहुमूल्य कला होगी।
1: बहुमूल्य
2: जीवन का संघर्ष सब कर दिया आपने मिस्टर डोगरी। और ये अमूर्त प्रेम
1: एब्स्ट्रैक्ट लव,
2: क्या कहने हैं, ब्रश तोड़ दिया आपने तो। ओह वंडरफुल। तो मैं कला संगम की ओर से मानव जीवन में परसों यानी संडे को आपके चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन कर रही हूँ, जिनके पोस्टर लगवा दूंगी और कला मंत्री जी से उद्घाटन करवाऊंगी। मंजूर?
3: फंतूश चिंच पुकले हुलूट।
1: ये कह रहे हैं कि आपकी बातें सिरा खो पर।
2: ठीक है, तो मैं चलती हूँ प्रदर्शनी का आयोजन करने। गुड बाय।
1: गुड बाय।
0: गुड बाय। आप निहायत पाजी किस्म के आदमी है मिस्टर प्रशांत।
1: अच्छा जी, अब मतलब निकल गया तो मैं पाजी हो गया। बड़े ही एहसान फरामोश है आप।
0: फाड़ में जाए आपके एहसान, अब क्या होगा? शहर के खास लोगों के बीच इस सॉन्ग को बनाकर जाने में खतरा है, ये आपने सोचा है?
1: कुछ नहीं होगा,
0: कहीं दाढ़ी निकल गई तो जूते पड़ेंगे और फिर ये चील बिल्लाए पेंटिंग्स।
1: अरे तुम घबराओ मत, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा।
0: तुम्हारा सर ठीक हो जाएगा।
2: देखा मिस्टर डोगरे, आपके चित्रों की बिक्री 3,000 तक पहुंच गई है। अब हम अतिथियों को धन्यवाद देंगे। आइए ना, आप भी बोलिए।
1: ये कुछ नहीं बोलेंगे।
2: ये कैसे हो सकता है, बोलना तो होगा ही। आइए, सब लोग हम लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग वास्तव में कला के पारखी हैं। अब मैं आप सब लोगों को चौंकाने वाली हूँ। ये सारे चित्र जो आपने देखे वास्तव में किसी विदेशी कलाकार के नहीं है। ये मिस्टर डोगरे वास्तव में कुछ और हैं और इनकी ये दाढ़ी नकली है।

0: ये वास्तव में संपूर्ण कलाकार हैं तथा जीवन में भी कला का पुट इन्होंने दे रखा है। इनका वास्तविक नाम श्रीमान प्रीतम पांडे है।
1: अरे ये मधुमाती क्या कह रही है?
0: ये हमारे देश का गौरव है कि यहाँ प्रीतम पांडे जैसे कलाकार ने जन्म लिया। आज हम सभी गर्व से फूले नहीं समा रहे हैं कि श्री लव एंड डोगरे ग्रेट आइलैंड पोखरे के नहीं बल्कि भारतीय हैं। आज भारतीय कलाकारों की श्रेणी में एक और महान कलाकार आ पहुंचा है, श्री प्रीतम पांडे। हमें आशा ही नहीं वरन विश्वास है कि श्री पांडे जी के चित्रों की प्रदर्शनी राजधानी में अक्सर हुआ करेगी।
1: मिस मधुमालती, आशा है आप मुझे क्षमा करेंगी, पर आपको कैसे पता चला कि मिलाव में डोगरे नहीं?
2: श्रीमान जी, ये तो मुझे तभी मालूम हो गया था जब आप कॉलेज आए थे। क्योंकि आपने अपने मेकअप मैन से जो दाढ़ी लगाई है ना, वो गुप्ता जी मेकअप मैन है और उन्होंने स्वयं तैयार किया था इसे। और गुप्ता जी मेरे चाचा जी है, हमारे घर में ही रहते हैं।
1: मैं समझा कि ये प्रशांत की बदमाशी है, तो मधुमालती जी आपने तभी क्यों नहीं बता दिया?
2: वास्तव में मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि आप मेरी कला के प्रति रुचि का मजाक उड़ा रहे हैं, और मैं होटल मैरीना में आपको फटकारने के लिए ही पहुंची थी। पर वहां आपकी कलाकृतियों को देखकर मेरी तो आंखें खुल गईं और आपकी कला पर मैं न्योछावर हो गई। आप वास्तव में एक महान कलाकार हैं मिस्टर प्रीतम पांडे। एंड योर एब्स्ट्रैक्ट लव, आई एम रियली मैड आफ्टर इट।
1: जी, ये तो वक्त ही बताएगा, पर आज की प्रदर्शनी ने मुझे कलाकार बना ही डाला। फिर अगर आपको मेरी कला पसंद है तो मैं आपकी आशा अवश्य पूरी करूंगा। थैंक यू चुन्नी, थैंक यू मुन्नी, थैंक यू गुड्डा, थैंक यू मुन्ना, गप्पू, थैंक यू
2: जब्बू, थैंक यू मुन्ना। क्या कह रहे हैं आप?
1: जी कुछ नहीं, ये मेरे गुरुओं के नाम हैं, एब्स्ट्रैक्ट गुरु। आपको बाद में बताऊंगा मुन्ना जी।
2: चलिए चलिए।
3: एब्स्ट्रैक्ट लव, हवा महल के अंतर्गत अभी आपने श्री धीरेंद्र वर्मा का लिखा प्रहसन सुना। प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दारवेकर।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विशाल भारद्वाज के संगीत निर्देशन में गुलजार साहब की रचना, आवाजी रेखा भारद्वाज और साथियों की, फिल्म का नाम है रंगून।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग

0: करते हैं, जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया. अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है. तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है.
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन.
2: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है.
1: तो सुनिए विविधा में

0: सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: फिल्म वनवास का गीत सुनिए। गाने वाले कलाकार विशाल मिश्रा और पलक मुछाल। इस गीत को सईद कादरी ने लिखा है और धुन मिथुन की है।

0: आंखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आंखें।
0: आंखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आंखों की आंखों में इशारा हो गया।
0: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
4: ये शाम मस्तानी।
0: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
5: दिल इंसान का एक
0: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
6: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: सेलिब्रेट के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है। घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ले स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: विविध भारती से, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

0: रेखा भारद्वाज और साथियों की आवाजों में ये था फिल्म ओमकारा का गीत। गीतकार गुलजार साहब थे और संगीत विशाल भारद्वाज का था।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम

ये है इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। A.R. रहमान का संगीत, जावेद अख्तर के बोल, ऋचा शर्मा और साथियों की आवाजें, फिल्म का नाम मंगल पांडे।

0: रहे हैं। मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश, पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। सदन के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। एक रिपोर्ट।
2: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते।
3: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर से कहते हैं कि आप बोलिए।
2: हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मानसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिस कर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाले विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर

0: विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत एमवी ओमार्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, यह अस्वीकार्य हैं और इनसे बचना चाहिए। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जाने गई हैं। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार अगले महीने की पहली तारीख से फिर शुरू हो जाएगा। इससे COVID-19 महामारी के कारण 2020 से निलंबित व्यापार फिर शुरू होगा। व्यापार की पुनः शुरुआत से सीमा पार व्यापार को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एयरोस्पेस के पवन चन्ना और नागा भरत डाका से बात की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। असम में भीषण बाढ़ के मद्देनजर इजराइल ने असम और भारत के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। भारत स्थित इजरायली दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के साथ उनकी गहरी संवेदना है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकतर इलाकों में बाढ़ का पानी अब कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में बनाए गए 109 राहत कैंपों में भी 37,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हेमंत बिस्व शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार बारिश जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जल भराव से फसलों और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है।
1: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे डिप्रेशन के कारण उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में फिर से बाढ़ आ गई है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने मयूरभंज, केंदुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सुवर्णपुर, बौद्ध, नुआपड़ा और बलांगीर जिलों में इस महीने की 30 तारीख तक भारी बारिश होने की अनुमान जताया है। वासुदेवपुर में फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि सुवर्णपुर में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी जिला प्रशासनों को राहत और बचाव कार्य तेजी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बारिश की संभावना व्यक्त की है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना

बीते इस बारिश का अनुमान है। 2 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश की संभावना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र अपने वीर जवानों के शौर्य, उनके बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अटूट निष्ठा को सलाम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की रक्षा से लेकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नागरिकों की सेवा तक सीआरपीएफ कर्मियों ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हैविट को शिकस्त दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने प्रतियोगिता में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि उनकी ये सफलता देश के युवाओं को प्रेरित करेगी। नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने आज पुरुष और महिला टीम स्पर्धाओं में 3-0 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। भारतीय पुरुष टीम ने जिम्बाब्वे को और वहीं महिला टीम ने मालदीव को शिकस्त दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में वेक्टर जनित रोगों, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा का प्रसारण करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉ. अक्षय धालीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ. पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का समापन अनुष्ठान वार्षिक नीलाद्री बीजे आज पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में मनाया जा रहा है। लाखों श्रद्धालु इस दिव्य वापसी के साक्षी बनने के लिए पुरी में एकत्रित हुए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीक मुद्दे पर, विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को मिले चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था जुर्माना। गीत रचना आनंद बख्शी की थी और धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने। किशोर कुमार की आवाज में फिल्म महबूबा का गीत सुनिए। गीतकार आनंद बख्शी हैं और संगीत राहुल देव बर्मन का ही है।

कार्यक्रम का अगला गीत हेमलता की आवाज में फिल्म का नाम है सुनैना। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

फिल्म बहु बेगम का गीत अभी आप सुन रहे थे। स्वर लता मंगेशकर, आशा भोंसले और साथियों के थे। इसे साहिर लुधियानवी ने लिखा था और धुन रोशन की थी।

आशा भोसले की आवाज में अभी आपने फिल्म सलाखे का गीत सुना। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। इस कार्यक्रम का ये है आखिरी गीत। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के स्वर, फिल्म का नाम प्यार का मौसम, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और धुन राहुल देव बर्मन की।

0: आप सुन रही हैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: किसने कहा यशोदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोलो रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार।
1: आओ आओ अब आयो आत्मे। अरे ओ सांबा, उठा तो जरा बंदूक।
0: ये आवाज सुनकर आपने अनायास ही अंदाजा लगा लिया होगा कि आज किसकी बातें हो रही हैं। अगर आपने ये सोचा है कि इस फिल्म के निर्देशक की बातें हो रही हैं, तो आपका अंदाजा गलत है। अगर आपने ये सोचा है कि इस फिल्म के लेखकों की बातें हो रही हैं, तो भी आपका अंदाजा गलत है। पर अगर आपने ये सोचा है कि बातें उनकी हो रही हैं जिन्होंने फिल्म शोले में गब्बर सिंह का किरदार निभाया था, तो आप एकदम सही हैं।
1: क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों, यहां से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा।
0: अमजद खान आज के फनकार।

अमजद खान एक बेमिसाल अभिनेता थे। वो नाटकों में अभिनय करते थे। उसी समय रमेश सिप्पी ने अमजद खान को स्टेज पर देखा और उन्हें ये लगा कि गब्बर के रोल के लिए ये लड़का एकदम फिट बैठेगा। उन्होंने अमजद खान से दाढ़ी बढ़ाने को कहा, उन्हें गब्बर जैसे कपड़े पहनाए जो चोर बाजार से खरीदे गए थे और फिल्म शोले की पूरी शूटिंग के दौरान इन कपड़ों को धोया नहीं गया था। इसके बाद तस्वीरें ली गईं, लुक टेस्ट देखकर लगा कि बिल्कुल सही अभिनेता का चुनाव किया गया है और इस तरह से अमजद खान बने गब्बर सिंह।

0: हिंदी सिनेमा का एक ऐसा विलेन जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। जब जब शोले की बात होगी, अमजद खान के बिना इस फिल्म की कोई बात पूरी नहीं हो पाएगी।
1: अच्छा, तो ये है ठाकुर का फौजी। सांभा, कालिया तो कहता था कि दो हैं, ये दूसरा कहां है? कहां है रे दूसरा?

0: मार दूं गोली तेरे जोड़ीदार को।
1: ठहरो।
2: आओ आओ अब आयो हाथ में आओ आओ सब्बास।
3: आपको बता दें कि अमजद खान का जन्म 12 नवंबर 1940 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता जयंत हिंदी सिनेमा के एक चर्चित अभिनेता थे। अमजद खान ने बांद्रा के एक स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और बाद में नेशनल कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई में जुट गए। कॉलेज के दिनों में वो अपनी स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी चुने गए और चूंकि उनकी छवि एक बहुत दबंग लड़के की थी इसलिए उनके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट उन्हें दादा कहकर पुकारा करते थे। वैसे आपको बता दें कि स्टेज के जरिए अमजद खान का फिल्मों में पदार्पण भले हुआ हो पर बहुत पहले ही वो फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करने लगे थे। सन 1957 में आई फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं में उन्होंने बतौर बाल कलाकार एक्टिंग की थी। कहा तो ये भी जाता है कि सन 1965 में अमजद खान को उनके पिता जयंत बतौर हीरो लॉन्च करने वाले थे और स्क्रीन के लिए उनका नाम रखा गया था नीरज। ये फिल्म थी पत्थर के सनम। अनेक कारणों से ये फिल्म बन नहीं पाई। इसका निर्माण अमजद खान के पिता जयंत कर रहे थे और निर्देशन कर रहे थे अमजद खान के भाई इम्तियाज खान। ये फिल्म अटक गई और अमजद खान की बतौर हीरो लॉन्चिंग भी हमेशा के लिए अटक गई। पर फिल्म शोले में जब अभिनेता डैनी ने गब्बर का रोल निभाने से इनकार कर दिया और इसकी वजह यह थी कि उन्होंने फिरोज खान की फिल्म साइन कर रखी थी और उसकी शूटिंग के लिए उन्हें अफगानिस्तान जाना था। जाहिर है कि डैनी एक ही वक्त पर दो देशों में कैसे हो सकते थे। मजबूरी में उन्होंने फिल्म शोले छोड़ दी और इस तरह से किस्मत चमक गई अमजद खान की और शोले में उनके हाथ आया गब्बर सिंह का रोल। सन 1975 से अमजद खान हिंदी सिनेमा के पर्दे पर चमकते चले गए। शोले के बाद अमजद खान ने कई बेमिसाल फिल्में की। उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के रोल किए और उन रोल्स में लोगों की बहुत प्रशंसा बटोरी।
4: अरे काले

0: वैसे आपको बता दें, अमिताभ बच्चन और अमजद खान की जोड़ी कई फिल्मों में नजर आई, जैसे मुकद्दर का सिकंदर, सत्ते पे सत्ता, मिस्टर नटवरलाल, नास्तिक, लावारिस, बरसात की एक रात, कालिया, राम बलराम, कस्मे वादे, खून पसीना, परवरिश, देशप्रेमी वगैरह। फिल्म बरसात की एक रात का ये संवाद सुनिए।
1: कौन? कौन?
2: डर गए क्या? कसम भैरव की मैं कोई भाग या भालू नहीं हूँ, काली राम हूँ, काली राम।
1: यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं?
2: अरे तुम्हारे घर आए हैं, बैठने के लिए बोलो, दो मीठी बातें करो। तुम पूछती हो किस लिए आए हो, क्यों आए हो? मैं यहाँ बकवास करने के लिए नहीं आया रजनी, मैं बड़े जरूरी काम से आया।
1: यहाँ पे कोई काम नहीं
2: है, है काम है। देखो ना, तुम्हारे लिए एक अंग्रेजी साड़ी लाया हूँ, बहुत सुंदर।
1: आपको लाने के लिए मेहरबानी करके वापस ले जाइए, जाइए।
3: क्या हुआ बेटी?
1: बाबा,
3: क्या हुआ?
1: देखो,
3: काली बाबू, आप
2: यहाँ? मैं यहाँ बहुत जरूरी काम से आया था, लेकिन कुछ बोलने से पहले इन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या है कि पिताजी ने पूजा के मौके पर इनके लिए एक विलायती साड़ी और आपके लिए कुछ नगदी मिठाई खाने के लिए भेजी थी।
4: साहू जी को मेरा नमस्ते कहिएगा, लेकिन इन चीजों की मुझे कोई जरूरत नहीं, ले जाइए सब।
2: वाह, बाप बेटी दोनों एक ही सुर में बात करते। कसम भैरों की, बड़े बाबू 2000 रुपए पूरे ले लीजिए, और बिल पास करने के बाद
4: रिश्वत देना

0: चाहते हैं आप?
1: पैसे के जोर पर आप हमारा ईमान और धर्म खरीदना चाहते हैं?
0: बस बस बात हो गया बड़े बाबू, इस लड़की को मना कीजिए, समझा दीजिए कि जबान को लगाम दे वरना। तू जरा चुप रह बेटी। काली बाबू, ऑफिस की बात ऑफिस में कीजिएगा, मेहरबानी करके अब आप चले जाइए यहाँ से। मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया था। आप पैसे लेंगे काम करेंगे, नहीं लेंगे नहीं करेंगे। आंखें दिखाने की कोई खास जरूरत नहीं है। कसम भैरव की, कालीराम किसी की बकवास सुनने का आदि नहीं।
2: यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अमजद खान ने हमेशा नेगेटिव भूमिकाएं ही नहीं निभाई, उन्होंने काफी पॉजिटिव भूमिकाएं भी निभाई हैं। जैसे फिल्म याराना में वो अमिताभ बच्चन के दोस्त बने थे।
0: तू सीखेगा मेरे दोस्त, तू मेरा ख्वाब पूरा करेगा दोस्त।
3: आप घर में हैं?
0: मैं
3: आदाबन से विशन साहब।
0: आइए आइए सेठ जी, आइए।
4: नमस्ते सेठ जी।
0: नमस्कार। दरअसल मुझे कुछ और पैसे चाहिए। हाँ, मैं अपने एक अजीज दोस्त को सिंगर बनाना चाहता हूँ, बहुत बड़ा सिंगर, और मैं चाहता हूँ कि उसका पहला प्रोग्राम, उसका इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम जो है वो नेताजी सुभाष स्टेडियम में हो।
3: इतने बड़े स्टेडियम में, और वो भी पहली बार, लाखों का खर्चा है।
4: और अगर प्रोग्राम खराब हो गया बिशन बाबू तो लाखों का नुकसान हो जाएगा।
0: ऐसे नहीं होगा सेठ जी, कभी नहीं होगा। मैं अपने दोस्त को जानता हूँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। एक बार ही प्रोग्राम हो जाने दीजिए, उसके बाद वो सारी दुनिया में मशहूर हो जाएगा सेठ जी।

0: क्या आपको पता है कि अमजद खान ने बहुत सारी आर्ट हाउस सिनेमा की फिल्में भी की हैं। यहाँ आपको ये बता दिया जाए कि सत्यजीत रे ने मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर एक फिल्म बनाई थी सन 1977 में। इस फिल्म में अमजद खान और संजीव कुमार एक साथ नजर आए थे। अमजद खान ने इस फिल्म में नवाब वाजिद अली शाह की भूमिका निभाई थी।
1: आप सब ने हमें धोखा दिया है, आप सब ने। हमने अपने रिश्तेदारों से ज्यादा आप सब पर भरोसा किया। हुकूमत की तमाम जिम्मेदारियां आप सबको सौंप दी, और आप लोगों ने क्या किया सिवाय अपनी जेबें भरने के? क्या किया है आपने? कुछ नहीं। सलीमन साहब ने कहा भी था, इन सब लोगों से होशियार रहना। हमने सुनी अनसुनी कर दी, लेकिन आज हमें एहसास हुआ कि वो सच कहते थे।
0: इसी तरह से सन 1979 में आई गुलजार की फिल्म मीरा, इसमें अमजद खान ने बादशाह अकबर की भूमिका निभाई थी। सन 1984 में आई फिल्म उत्सव में अमजद खान वात्स्यायन बने थे। यहाँ ये भी बता दें कि फिल्म लेकिन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अमजद खान ने। और जब बात आर्ट हाउस सिनेमा की हो रही है तो हम फिल्म रूदाली को कैसे भूल सकते हैं। एक यादगार रोल था अमजद खान का फिल्म रूदाली में।

वैसे आपको बता दें कि अमजद खान ने मर्चेंट आइवरी की फिल्म द परफेक्ट मर्डर में भी काम किया था। सन 1981 में जब अभिनेता संजय दत्त ने रुपहले पर्दे पर कदम रखा तो उनकी फिल्म रॉकी में अमजद खान भी नजर आए। अमजद खान ने अपने करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। सन 1972 में उन्होंने शीला खान से शादी की थी। उनके बेटे शादाब खान ने कुछ फिल्मों में एक्टिंग की है। अमजद खान के फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में आपको बता दें, उन्हें फिल्म दादा के लिए मिला था सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार।

फिल्म याराना के लिए भी उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था, जबकि फिल्म मां कसम के लिए उन्होंने जीता था सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार। याराना का ये गाना सुनिए।

वैसे आपको बता दें कि अमजद खान ने एक समय में कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया था, जैसे उन्होंने फिल्म चोर पुलिस बनाई थी जो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इसके अलावा अमीर आदमी गरीब आदमी, इस फिल्म का निर्देशन भी उन्होंने किया था। उन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर एक फिल्म की योजना बनाई थी जिसका नाम था लंबाई चौड़ाई, पर यह फिल्म पूरी नहीं हो पाई। फिल्म रुदाली अमजद खान के आखिरी रोल्स में से एक बन गई। सन 1986 में अमजद खान का मुंबई गोवा रोड पर एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट के बाद से ही अमजद खान का वजन बहुत बढ़ने लगा था। वैसे भी वो चाय के बहुत शौकीन थे और दिन भर में कई कप चाय वो पी जाते थे। इसका भी उनके वजन पर गहरा असर पड़ा। सन 1992 में दिल का दौरा पड़ने से अमजद खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। एक सशक्त अभिनेता इस संसार से चला गया। रह गई उसकी फिल्में, उसकी आवाज में उसके संवाद और उसकी यादें।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता अमजद खान पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: धरती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका

0: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, छाया गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

अपना के हर किसी को बेगाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में

इस दिल की मंजिल तो तय है, जहां दिलदार का हसीन साया है। तेरे जलवों में गुम हैं आंखें, तुझे देखें या जमाने को, दिल इसी में भरमाया है।

दिन रात इसी सोच में डूबा है दिल कि कैसे मिले और कब मिले उनसे, और मिलने पर बस यही सोचने लग जाता है

बड़े खूबसूरत हो, हसीन हो, हमने तो कह दिया जहां से, ए यार करते रहेंगे तेरी तारीफें, हैं जब तक ये सांसें।

गूंज रहे हैं तेरे मेरे उल्फत के अफसाने। खुश हैं ये जमीन और ये आसमान, लगे हैं मुस्कुराने।

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: छाया गीत का आज का सफर आपने तय किया जयंत के साथ, अब इजाजत दीजिए।
2: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
3: वीको टर्मरिक

त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, वीको टर्मल क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

0: एक पेड़ मां के नाम मुहिम तहत पौधा ला के वातावरण सुरक्षा का संदेश दिता। आज हरियाणा विधानसभा सकत्रित विखे केंद्र सरकार की राष्ट्रीय भाषा तकनोलॉजी पहल भाषणी ते एआई आधारित व्याख्या ट्रांसक्रिप्शन ते अनुवाद तकनीका की वरतों ते एक रोजा समर्था निर्माण वर्कशॉप का आयोजन किया गया। हरियाणा के खेड राज मंत्री गौरव गौतम ने कुसलीपुर खेतर विच लगभग 5,19,00,000 रुपए के वख-वख लोक भलाई विकास प्रोजेक्टा का नींह पत्थर रख्या। फरीदाबाद के मवाला महाराजपुर विखे शहरी प्रायमरी सेहत केंद्र ने सेहत सेवावां दे खेतर विच शानदार प्रदर्शन करके हरियाणा विच पहला स्थान हासिल किया। अमरीका ते ईरान वल्लों हफ्ते के अंत विच फौजी हमले रोकण तों बाद अज विश्व पद्धर ते कच्चे तेल दीआं कीमतां विच लगभग 6% की गिरावट वेखी गई है। मौसम विभाग ने कल ते परसों पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच वर्खा लई ओरेंज अलर्ट जारी किया है। ए सन मुख प्रदेशक खबरां।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लई स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हुन पेश है प्रोग्राम सुरसांझ। नमस्कार श्रोतियों, सुरसांझ प्रोग्राम विच असी पंजाबी गीत लैके हाजर हाँ। शुरुआत करांगे प्रोग्राम दी हशमत सुल्ताना दे गाए गीत नाल। रचना जानी दी है, तर्ज है बी प्राग दी।

0: ਅਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੁਰਸਾਂਝ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੀ ਇਸ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: श्रोतो ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो थोड़ा स्वागत है। हुन सतिंदर सरताज दे गीत दानंद माणू, जिसनों संगीत ना सजाया शाश्वत सचदेव ने।

वारिया मिस पूजा ते मिलिंद गाबा दे गाए इस गीत संगीतकार ने मिलिंद गाबा।

0: श्रोते मिस पूजा ते मिलिन गाबा दी आवाजां चे गीत सी। इस तनाली प्रोग्राम सुरसांझ हुन समाप्त हुंदा है।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
0: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਦ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਹੀ ਲੈ ਕਰਾਂਗੇ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट।
1: मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से

0: और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। उन्होंने कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विपक्षी दलों के व्यवहार की निंदा की। हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मानसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर उनसे चर्चा की। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जान चली गई है। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। अमेरिका और ईरान संघर्ष के दौरान सप्ताहांत में सैन्य हमले रोक दिए जाने के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज लगभग 7% की गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 7.2% गिरकर 89 अमरीकी डॉलर और 74 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम डेविड को शिकस्त दी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार वर्षा जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जलभराव से फसलों तथा बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 2400 घंटे अलर्ट पर रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। रात दे 11:05 होए ने। हुण साडे केंद्र तो अज दे प्रोग्रामां दा प्रसारण समाप्त हुंदा है। कल सवेरे 5:55 ते तुहाडी सेवा विच फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई सानूं इजाजत दिओ। जय हिंद।